0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

मुझको न जानने वाले बुद्धिहीन इंसान समझते हैं कि मैंने ये रूप और व्यक्तित्व धारण किया है। अपने अल्पज्ञान के कारण वो मेरे परम उत्तम अविनाशी स्वरूप को नहीं जानते। मुझे हर जन्म में मां की जरूरत पड़ती है और तुम उसी मां से मेरे जाति के सूत्र जोड़ने लगते हो, विवादों में पड़कर परिभाषाएं रचने लगते हो कि मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, सिख, ईसाई, बौद्ध अथवा जैनी हूं। नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ मानव हूं। मानवता मेरा धर्म है, तुम्हारा कल्याण मेरा कर्म है। मैं गीता का ज्ञान हूं, कुरान की तालीम हूं, बाइबल की शिक्षा, गुरु ग्रंथ साहब का आदर्श हूं। जो मुझे जैसे भजता है मैं उसे वैसे ही प्राप्त हो जाता हूं, क्योंकि मैं संपूर्ण जीवों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं इस संपूर्ण सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूं, और तुम्हारे लिए मैं एक फकीर साईं बाबा हूं। मैं तो तब भी था जब तुम नहीं थे, तब भी हूं जब तुम हो, और तब भी रहूंगा जब तुम नहीं रहोगे। एक बार जो भी जबान से मुझे नाम लेकर पुकारता है, मैं माया मोह, पाप दोष, कष्ट, लोभ, अहंकार से उसकी रक्षा करने के लिए सक्रिय हो जाता हूं, क्योंकि मैं साईं हूं, साईं बाबा, अल्लाह मालिक।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: सुप्रभात श्रोताओं, घड़ी मिला लीजिए, समय सुबह की ठीक 6 बजे हैं। आइए जुड़ते हैं सुबह के पहले संक्षिप्त समाचारों के साथ।
2: सभी सुनने वालों को नमस्कार। संवैधानिक विशेषज्ञ परवेज दुखी का कहना है कि मॉरिशस में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए इलेक्टोरल कॉलेज प्रणाली अपनाने से राजनीतिक संप्रदायवाद कम हो सकता है। उनके अनुसार इस मंडल में सांसद, मेयर, जिला परिषद अध्यक्ष और रोड्रिक्स के चीफ कमिश्नर शामिल हो सकते हैं। उन्होंने फ्रांस की तरह दो चरणों वाले चुनाव का भी समर्थन किया ताकि राष्ट्रपति को 50% से अधिक मत मिल सके। वहीं उन्होंने देश की राजनीतिक और चुनावी परिपक्वता को अब भी बड़ी चुनौती बताया। MFDC के CEO केविन गति का उद्देश्य मॉरिशस को हिंद महासागर का एक प्रमुख सिनेमैटिक हब बनाना है। इसी लक्ष्य के तहत उन्होंने मई में आयोजित विश्व सिनेमा के प्रतिष्ठित आयोजनों में भाग लेकर अफ्रीका, अमेरिका, भारत और यूरोप के कई फिल्म पेशेवरों और निवेशकों से रणनीतिक बैठकें की। ये चर्चाएं अभी भी जारी हैं और जून में

0: कई स्टेक होल्डर्स के मौजूदानी की उम्मीद है। देश के जलाशयों में पानी का स्तर चिंता का विषय बना हुआ है। 25 मई तक कुल जलभराव लगभग 76% दर्ज किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10% से अधिक कम है। कम बारिश के कारण कई जलाशयों में जलस्तर घटा है। स्थिति से निपटने के लिए अधिकारियों ने पानी की आपूर्ति बनाए रखने हेतु कई कदम उठाए हैं। समाज सुरक्षा मंत्री अशोक सुभोन ने लाभार्थियों की फाइलों के डिजिटलाइजेशन को मंत्रालय की सेवाओं के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। रोजहिल कार्यालय में शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 18 महीनों में लगभग 10.5 मिलियन दस्तावेज डिजिटल किए जाएंगे, ताकि प्रशासनिक प्रक्रियाएं तेज और अधिक प्रभावी बन सकें। आज 10 ज़िलहिज्जा को मौशस का मुस्लिम कौम ईद उल अदा मना रहा है। ये रोज़ हसरत इब्राहिम की सुन्नत के हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल है। आज का दिन रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों के साथ गुजारा जाता है। और विदेश में अमरीकी सेना ने ईरान पर नए हमले किए हैं, जिसमें रणनीतिक बंदरगाह शहर बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया गया है। और आखिर में चले जाते हैं स्थानीय मौसम का हाल। मस्करिन्स के दक्षिण से दूर एक जोरदार एंटीसाइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर सामान्य हवा की लहर बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान है कि आज सुबह ऊंचाइयों पर कुछ छींटे पड़ने के बाद दिन के दौरान आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 23 से 25, तटवर्ती इलाकों पर 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज रात बादल घिरे रहेंगे और पूर्व दक्षिण तथा सेंट्रल प्लेटों पर रह रहकर बारिश होगी। देश के ऊंचे इलाकों पर कोहरे भी छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 17 से 19, अन्य इलाकों पर 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाल रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और दक्षिण के समुद्र में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। आज सुबह 6:36 पर सूर्योदय और शाम 5:38 पर सूरज ढल जाएगा। तो मौसम के हाल के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपसे मुलाकात होगी 6:30, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: Radio Mauritius.
2: L'habitude, ils avaient tout sansé. Mouti time avec Farmland.
3: Madame Sheila, mais petit déjeuner.
2: Asté, et nos céréales à boire Farmland Family Céréales. Tac, tac, tac, nos petits déjeuners ne paraît.
3: Ah, ben oui, Madame Sheila, ou tous ou bien smot.
2: Mais non, mal. Et quand vous sortez du travail, une appli réconfortant qui retrouve la famille autour d'une bonne préparation avec Farmland.
3: Mmh, ou fais-moi faire.
2: Asté avec Farmland Hot Chocolate, l'avion complice ta mame.
3: Si à tout qui s'agose pour les
2: encore plus simple, encore plus préparation et encore plus gourmand.
3: Astea et Formlen, nous gagnons encore beaucoup plus.
2: Formlen, ça même nous smart choice.
4: Eat into the Mauritian Kilo, the Mauritian Kilo. This is Radio Mauritius.

इमाम बुखारी अलैहि रहमतुल बारी ने अपनी सहीह में सैयदना फारूक आज़म उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह अन्हु से रवायत किया कि एक यहूदी ने इनसे कहा कि तुम्हारी किताब में एक आयत है जिसको तुम पढ़ते हो, अगर वो हम यहूदियों पर नाजिल होती तो हम उसके

आयत उतरती उतरती जिस दिन वो आयत उतरी उसको ईद मनाते हैं। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ने पूछा कि वो कौन सी आयत है, तो उसने जवाब दिया अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। फारूक आज़म ने फरमाया कद आरफ़ना ज़ालिकल मकान यौम वल मकान अल्लज़ी नज़लत फ़ीही अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा क़ाइमुन बिअरफ़ यौम जुमा। फरमाया हमें वो दिन और जगह अच्छी तरह मालूम है जहाँ ये आयत हुज़ूर सलाम पर उतरी। अरफा का दिन था अरफात में और जुम्मतुल मुबारक का दिन था। इन दिनों की फजीलत का एक रीज़न ये भी है कि इनका आखिरी दिन यौमुन नहर है, यानी बकर ईद का पहला दिन। हुज़ूर ने फरमाया अफ़दल अय्याम इंदल्लाह यौमुन नहर व यौमुल बकर। फरमाया कि दिनों में बेहतरीन दिन वो यौमुन नहर है। सो हुज़ूर सलाम के इस इरशाद ने उसको बेहतरीन बना दिया। ये बड़ा अजीम दिन है यौमुल कर, सॉरी अफ़दलुल अय्याम इंदल्लाह यौमुन नहर व यौमुल कर। क़ुरबानी का दिन है और कर के माने ठहरने का दिन। इससे मुराद ग्यारहवीं ज़िलहिज्जा है क्योंकि हुज्जाज इस दिन मिना में ठहरते हैं। इसमें वाज़े तौर पर हुज़ूर सलाम ने यौम नहर की फजीलत इरशाद फरमाई। और ज़ाहिर है कि जो पिछले दिन हैं वो इसी दिन से जुड़े हुए हैं, तो ये भी मुमकिन है कि इस फजीलत वाले दिन की वजह से अल्लाह ने सब दिनों को फजीलत अता की हो। इसमें भी नौजवान नस्ल के लिए, नई नस्ल के लिए और हम सब के लिए एक पैगाम है, वो ये है कि हमें अच्छों से जुड़ना चाहिए, अच्छों से कनेक्ट होना चाहिए, उनसे कनेक्ट होना चाहिए जो फजीलत वाले हैं, जो शान वाले हैं। उनके कनेक्शन से अल्लाह हमें भी फजीलत वाला, शान वाला बना देगा, हमें भी मुकाम अता करेगा, हमें भी दुनिया की और आखिरत की ज़िंदगी अता करेगा। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़ाहिर है कि अल्लाह के जलील क़द्र अंबिया हैं, बड़े फजीलत वाले हैं, बड़े मुकाम वाले हैं, बड़े स्टेटस वाले हैं। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुप्रीम स्टेटस, आपका यूनिक स्टेटस, वो तो सब पर रोज़े रोशन की तरह आया है। फिर सहाबा हुए, अहले बैत हुए, औलिया उलमा, सही अकीदा उलमा हुए, तो अगर नई नस्ल इनसे कनेक्ट होगी तो अल्लाह उनको भी फजीलत वाला बना देगा, जैसा कि अल्लाह पाक ने ज़िलहज के दसवें दिन की बरकत से जो उस पिछले नौ दिन हैं फ़कत उससे जुड़ जाने और पेबस्त होने की वजह से अच्छा बना दिया है, फजीलत वाला बना दिया है। बड़ी अहमियत का दिन है और ये दिन बड़े मुबारक दिन हैं। इनकी ताज़ीम करें, एहतराम करें, इबादत करें, दुरूद सलाम पढ़ें, क़ुरान की तिलावत करें, गरीबों, यतीमों, बेसहारा मिसकिनों की मदद करें, अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करें। इस वक्त पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान या इंसान तकलीफ़ में हैं उन सब के लिए बिला तफरीक दुआ करें कि अल्लाह उनको मुश्किलात से निकालें, अल्लाह उन्हें ज़ालिमों के जुल्म से बचाए, जाबिरों के जबर से, ज़्यादती करने वालों की ज़्यादती से बचाए, गुनाहों से बचें। इसलिए कि जब नेकियां

0: नेकियों की अहमियत ज़्यादा हो जाती है तो फिर गुनाहों की कबाहत भी ज़्यादा हो जाती है। और सैयदना इब्राहीम सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम के वाक़यात अपने बच्चों को सुनाएं, उनको ऐसी बुक्स दें जिनमें इनकी स्टोरीज़ मौजूद हो, ताकि बच्चे उनके नक्शो कदम पे चलें और आप के लिए अजाब के बजाय अल्लाह की अजीम रहमत बने। काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो ना मे रज़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद, वमा अलैना इल्लल बलाग़।
1: अभी अभी आपने जामी मस्जिद पोटलिस के ख़तीब मुफ्ती मोहम्मद इसहाक़ कादरी रज़वी दमर बरकातहुमुल आलिया का ये बयान सुना। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इस बयान से इबरत पकड़ने की तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम सामीन, एक हदीस समात कीजिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदुल फितर और ईदुल अधा के दिन ईदगाह तशरीफ़ ले जाते, सबसे पहले नमाज अदा फरमाते, फिर लोगों को वाज़ व नसीहत फरमाते। इस हदीस से मालूम होता है कि ईद के दिन सबसे अहम अमल नमाज ईद की अदायगी है। मुसलमान को चाहिए कि खुशी के इस दिन का आगाज़ अल्लाह ताला की इबादत से करे। नमाज ईद मुसलमानों के इत्तेहाद, इख्वत और अल्लाह ताला के सामने आजजी का मज़हर है।

हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदुल अधा के दिन ईदगाह की तरफ जाते हुए बुलंद आवाज़ से तकबीरात पढ़ते थे। ईदुल अधा के अय्याम में तकबीरात का अहतमाम सुन्नत है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द पढ़ने से अल्लाह ताला की अज़मत का इजहार होता है। ये अमल इंसान के दिल में खुशू और बंदगी के जज्बात पैदा करता है और ईद की हकीकी रूह को जिंदा करता है।

अपने हाथ से ज़बह फरमाया और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ा। यह हदीस कुर्बानी की अहमियत और मशरूयत को वाज़ेह करती है। साहिब इस्तेताअत मुसलमान के लिए कुर्बानी एक अजीम इबादत है। कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की यादगार है। कुर्बानी करते वक्त इखलास, तक्वा और अल्लाह ताला की रज़ा का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला के हाँ जानवर का गोश्त या खून नहीं बल्कि बंदे का तक्वा पहुँचता है।

अब हमारी साथ है गुजराती गीतों कार्यक्रम अने आ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल गीत हतुं आदित्य गढ़वीना स्वरमा मुकायेलू अने आप सब कोई बस मजा माणी रह्या छो त्यारे आपणा गुजराती गीतों कार्यक्रमनी ए जाणीने अमने खूब ज आनंद थई रह्यो छे अहींया अमारी साथे जोड़ाई चुक्या छे ज्योत्सना बेन अने ज्योत्सना बेन

भक्ति में शक्ति। भक्ति में शक्ति। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी के लिए आज का दिन मंगलमय हो, आज का दिन शुभ हो, आनंद प्रद हो। हम सभी भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन भक्ति शब्द भज धातु से बना है जिसका अर्थ है सेवा करना। पर किसकी सेवा? अपनी सेवा तो सभी करते हैं, परिवार की भी सेवा सब करते हैं, क्योंकि परिवार से हमारी अनेक आवश्यकताएं पूरी होती हैं। लेकिन उस प्रभु का नाम भजते हुए, उसकी भक्ति को करते हुए, उसकी शक्ति को महसूस करना, यह है भक्ति में शक्ति। श्रोताओं, जो भक्ति की शक्ति है, इसे महसूस किया मीराबाई ने। चाहे किसी ने जहर दिया, जहरीला सांप भेजा, कुछ भी किया, लेकिन वे अपने कृष्ण से दूर ना हो पाई और ज़्यादा उसके रंग में रंगती गई और यहाँ तक कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो श्रोताओं, जो भक्ति की शक्ति है ना, वो मृत्यु से भी ऊपर ले जाती है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति शरीर से ऊपर उठने लगता है, उसे लगता है शरीर तो जाना ही है, लेकिन मेरा जो लक्ष्य है भक्ति का, उसे मैं नहीं छोड़ सकता। आइए इस भजन को सुनते हैं।

श्रोताओं, भक्ति की शक्ति को महसूस किया शबरी ने। प्रतीक्षा में देखिए प्रभु का नाम लेती है, प्रतीक्षा में उसकी शक्ति बढ़ती है, और जिस दिन प्रभु आ गए जिनकी वह भक्ति कर रही है, शबरी उस दिन झूठे बेर खिला रही है। इतनी भाव में भर जाती है कि उसे यह भी नहीं पता कि जिसकी वह इतने दिनों से इंतजार कर रही थी, आज जब वे प्रभु आए हैं तो उन्हें क्या खिलाना चाहिए। इसे कहते हैं भक्ति की पराकाष्ठा, और प्रभु भी सब कुछ स्वीकार कर रहे हैं। आइए श्रोताओं, इस गीत को सुनते हैं।

विदुर जानते थे। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के 56 व्यंजन छोड़कर विदुर की रसोई में आए और वहां पर केले का छिलका खुशी से खा रहे हैं, क्योंकि विदुर की पत्नी ये देखकर इतनी चमत्कृत हो गई कि केला फेंकती गई और छिलका खिलाती गई। यह है भक्ति की शक्ति कि भक्त प्रभु में इतना खो जाए कि उसे सांसारिक चीजों का ध्यान ही ना रहे। श्रोताओं, कठिन है लेकिन भक्ति की शक्ति की पराकाष्ठा यहीं पर है। आइए इस भजन को सुनते हैं।

की शक्ति हनुमान ने पहचानी। मोतियों की माला दी सीता जी ने उन्हें, एक एक मोती तोड़ दिया। पूछा कि क्या कर रहे हैं? बोले, मैं इसमें राम ढूंढ रहा हूँ। मतलब राम शब्द के अतिरिक्त मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। चाहे कितनी भी कीमती चीज़ हो, मेरे लिए उसका कोई मूल्य नहीं है। यह है भक्ति की शक्ति।

तो श्रोताओं, यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत साधना चाहिए। अपने मन को साधना पड़ता है, मनसा वाचा कर्मणा अपनी चीज़ों को ठीक करना पड़ता है। यह नहीं कि मन कुछ, वचन कुछ, कर्म कुछ, एक तार में जब तीनों आ जाते हैं तब भक्ति की शक्ति महसूस होती है। तब पता चलता है कि भक्ति का रास्ता इतना सहज नहीं है, लेकिन जिनके लिए रोज़ ईश्वर ही उनके सामने होता है तो जीवन सहज हो जाता है। क्योंकि बेईमानी, झूठ, उसके एक झूठ के लिए 10 झूठ बोलने पड़ते हैं, एक बेईमानी करने के लिए 5 बेईमानी करनी पड़ती है। लेकिन जो ईश्वर का भक्त होता है वह सच्चा आदमी होता है, वह जहाँ खड़ा है सच बोलेगा, जो कार्य करेगा निष्ठा से करेगा, तो धीरे धीरे उसका जीवन ज़्यादा सहज हो जाता है। और यही सहज जीवन भक्ति की शक्ति है।

तो श्रोताओं, हम सब मिलकर अपनी मनसा वाचा कर्मणा इसकी साधना करें। जो वचन में, मन में और कर्म में तीनों एक होने चाहिए, धोखा नहीं होना चाहिए। भक्ति की जो शक्ति है वह जीवन में परिवर्तन लाती है, लेकिन इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मुझे भक्ति के मार्ग पर बढ़ना है। तो आइए श्रोताओं, इस अंतिम भजन को सुनते हैं और इसी के साथ अलका धनपत और लुडोविक को अनुमति दीजिए। नमस्कार, शुभ दिन।

0: आइए सुनते हैं समाचार विधिमा के साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार गिनीशा, सभी को नमस्कार। मॉरिशस में टेलीकम्युनिकेशन एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। ICTA ने देश भर में 3G मोबाइल सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की घोषणा की है। सरकार द्वारा मंजूर किया गया ये फैसला मोबाइल ऑपरेटरों के अनुरोधों के बाद दिया गया है, जिन्होंने पहले ही अपने नेटवर्क को हटाना शुरू कर दिया है। इसे पूरी तरह और अंतिम रूप से बंद करने की समय सीमा देर से देर 2028 तक तय की गई है। इसका उद्देश्य 4G और 5G नेटवर्क के विस्तार को गति देने के लिए जगह खाली करना है, ताकि अधिक तेज और अधिक विश्वसनीय कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके। हालांकि अधिकांश मॉरिशस वासियों के पास पहले से ही आधुनिक स्मार्टफोन है और उन्हें कोई बदलाव महसूस नहीं होगा, लेकिन पुराने उपकरणों के मालिकों को इसके लिए तैयार रहना होगा। एक बार नेटवर्क बंद हो जाने के बाद केवल 3G के अनुकूल फोन और साथ ही कुछ व्हीकल ट्रकर्स या कनेक्टेड डिवाइस भी पूरी तरह से काम करना बंद कर देंगी। आज ईद उल अधा मनाई जा रही है, जिसे बकरीद भी कहा जाता है। ये दिन इस्लाम का सबसे ख़ास और मुकद्दस त्यौहार है। ये त्यौहार इस्लामी कैलेंडर के आखिरी महीने ज़िलहिज्जा की 10 तारीख को मनाया जाता है। ये मुख्य रूप से कुर्बानी, समर्पण और अल्लाह के प्रति अकीदत का पर्व है। इस मुबारक मौके पर मुस्लिम कौम के लोग अपने परिवार, अजीज़ों और रिश्तेदारों के साथ खुशियाँ बाँटते हैं और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। पिछित रिविया में स्थित बेट ऑनलाइन सट्टा केंद्र में हुई हिंसक डकैती की जांच में एक नया मोड़ आया है। पिछित रिविया की CID और FIO वेस्टर्न ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें उस प्रतिष्ठान का एक कर्मचारी भी शामिल है, जिस पर इस साजिश में शामिल होने का संदेह है। ये घटना मंगलवार 26 मई की है। चाकू से लैस 2 व्यक्ति अचानक आउटलेट के भीतर घुस आए और 2 लाख रुपये से भरा एक लिफाफा लेकर फरार हो गए। इस दौरान कैशियर को कोई चोट नहीं आई। जांच के दौरान आउटलेट के CCTV फुटेज को भी खंगाला गया। शुरुआती इनपुट्स के अनुसार एक कर्मचारी को बिना कैश काउंटर में पैसे जमा किए सट्टा लगाते हुए देखा गया था। बताया जा रहा है कि चारों संदिग्धों ने नकाबपोश डकैती और इस साजिश में अपनी अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। फिलहाल मामले की जाँच जारी है। प्लानमानियों के रहने वाले एक 44 वर्षीय व्यक्ति से कनाडा इमिग्रेशन से जुड़े एक कथित धोखाधड़ी के मामले में FCC द्वारा पूछताछ की जा रही है। संदिग्ध ने कथित तौर पर कई पीड़ितों को कनाडा में नौकरी दिलाने और वहां भेजने का झांसा देकर उनसे पैसे ऐंठे थे। कुल ठगी गई राशि लगभग 3.5 मिलियन रुपए आंकी गई है। उसके घर पर की गई छापेमारी के दौरान दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं। FCC को ऑनलाइन फेक प्रोफाइल का इस्तेमाल किए जाने का भी संदेह है। अन्य पीड़ितों से भी FCC के समक्ष सामने आने और अपनी शिकायत दर्ज कराने की अपील की गई है। विदेश की खबरों में, केन्या की राजधानी नैरोबी से लगभग 120 किलोमीटर पश्चिम में स्थित गिलगिल के एक बोर्डिंग स्कूल में आग लगने से 16 छात्रों की मौत हो गई है। घायल होने के बाद अन्य 74 छात्रों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। और UK की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी के अनुसार 2022 में यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर शुरू किए गए आक्रमण के बाद से अब तक लगभग 5 लाख रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। हालांकि फरवरी में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि 2022 से अब तक यूक्रेन ने 55,000 सैनिक खोए हैं। तो इन्हीं खबरों के साथ ही 12 बजे के संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। रिशल्यू में 80 साल के 80 years old के श्री केवल चेदी, जो वाल नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे रिशल्यू से उठाकर गांधी पालमा की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। सोल्फेरिनो नंबर 2 वाकुआ में 77 साल के 77 years old के श्री माधो राधा, जो छोटे नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके घर सोल्फेरिनो नंबर 2 वाकुआ से उठाकर बालों सोल्फेरिनो नंबर 5 की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM।

0: फ्रांस में 75 साल की 75 years old की श्री महेश डुकारन जो पहले मुसलमान कुंजू प्लेंदे पापाए रहते थे की मृत्यु हो गई है उनके अर्थी आज दिन के 1:30 बजे फ्रांस से उठाकर जॉन शॉल दे विल टनल्स की शमशान भूमि दी जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 1:30 कालीमाई रोड दीपिने में 28 साल के 28 years old के श्री लीलेश्वर अमाता जो कौशिक नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है उनके अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके पिता श्री परमेश्वर अमाता के घर कालीमाई रोड दीपिने से उठाकर पितों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 2 PM Avenue Flamboyant Isidore Rose में 48 साल के 48 years old के श्री आनंदेव जोवाता जो गासों नाम से भी जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई है उनके अर्थी आज दिन के 3 बजे उनकी माँ श्रीमती देविका जोवाता के घर एवेन्यू फ्लैम्बोयां इज़िडोर रोज़ से उठाकर वहीं की शमशान भूमि दी जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 3 PM तमिल टेम्पल रोड सुरीनाम में 66 साल के 66 years old के श्री धीरज बंचाराम जो चांद नाम से भी जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई है उनके अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके घर तमिल टेम्पल रोड सुरीनाम से उठाकर सुयाक की शमशान भूमि दी जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 2 PM शोक में डूबे सभी परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है
1: On NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.

0: चलते चलते और चलते चलते कहीं ना कहीं हमें भी इंतज़ार रहता है कि हम भी उन गलियों से गुज़रे जहाँ पे कोई हमारा इंतज़ार करता है, उन गलियों में जहाँ पर हमारे कुछ खूबसूरत यादें बसी हुई हैं, उन्हीं यादों के ख़जाने को ढूंढने के लिए निकल गए हैं बनाने अपने सफ़र को। सुहाना सफर। जी हाँ, सुहाना सफर ये वो प्रोग्राम है जहाँ पर हम आपके लिए लेकर आते हैं खूबसूरत पुराने गाने, जहाँ पर आपके कुछ यादें इन गीतों के साथ जुड़ी हुई हैं। वैसे तो कल बहुत सारी फरमाइशें आई थी और हम कोशिश करेंगे कि आज उन सभी फरमाइशों को पूरा कर दिया जाए, हमारे दोस्तों को आज खुश कर दिया जाए। तो हमारा जो प्रोग्राम है सुहाना सफ़र, ये टिकटॉक पर लाइव भी है। कई सारे दोस्त हैं जो हमारे टिकटॉक को फॉलो करते हैं, तो अगर आप चाहें तो हमारे साथ यहाँ जुड़ सकते हैं और हम आपके साथ रहेंगे अभी से लेकर 2 बजे तक। तो चलिए रेशमा राम की सुन जी का हम स्वागत करते हैं। रेशमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। चलिए, आज का जो हमारा प्रोग्राम है इसमें हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर काफ़ी अलग अलग गाने हम पेश करें, स्पेशली जिन गीतों की फरमाइशें आई हैं। अनिल राजन नकुंजन जी, आपका भी हम स्वागत करते हैं हमारे प्रोग्राम में, और कविता अनु भी आ गई हैं साथ में। यहाँ पर हमारी आयशा भी हैं, आज उनकी छुट्टी है, आज वो घर पर हैं। तो चलिए भाई, आज हम आपको खुश करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो गीतों का खजाना है ये हम लेकर आए हैं आपके लिए खास। सूरज फिल्म का ये गाना है जो हम नजर करेंगे आपके लिए रफी साहब की आवाज में। फिल्म है सूरज।
1: You're listening RM Free Radio.

सुहाना सफर सुहाना सफर जी हाँ, ये है आपका प्रोग्राम सुहाना सफर, जहाँ विदिता आपका साथ दे रही हैं। चलिए, यहाँ पर हम फोन उठाए रहे लेकिन लगता है लाइन कट गई। कोई बात नहीं, बाद में बात कर लेंगे। फिलहाल अभी के लिए हम खूबसूरत गीतों का सफर जारी रखेंगे। अभी अगला गाना जो होगा हम लेकर आए हैं आपके लिए लता जी की आवाज में, और साथ दे रहे हैं मुकेश साहब, फिल्म है मिलन। और ये गाना जो है हम सरिता रामजन के लिए, साथ में साहिल, मनीता और स्पेशली आयशा के लिए जो आज घर पे है, उनके लिए डेडिकेट करना चाहेंगे। बाकी हमारे जो दोस्त हैं उनका हम वेलकम करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ खेमल जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच इस तारीफ के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। और भूलिए नहीं कि हमारा जो प्रोग्राम है ये अभी टिकटॉक पे लाइव चल रहा है।

0: रहा है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर वहाँ पर जुड़ सकते हैं। मनीता जी कहती हैं कि काम कर रही थी, सॉरी, अब आगे से कोशिश करूँगी, जुड़ जाऊँ जल्दी। और चले इसी के साथ नेक्स्ट गाना हम डेडिकेट करते हैं आप सभी लिसनर्स के नाम।
1: RL Free Radio.

0: सुहाना सफर सुहाना सफर ये है आपका सुहाना सफर 12:25 हुए हैं और मैं वेदिता आपके साथ हूँ। चलिए जी, यहाँ पर हमारे साथ दौरी सोची, साथ में माया रामदो, शारदा, रिसोल। कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। परी आ गई है, कहती है सब काम करके आ गई, जल्दी जल्दी भागे भागे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू सो मच। मनीता जी कहती है 26 मई को मेरी बेटी केशा का बर्थडे और था और परी का भी था, सो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे दोनों को। ओके जी, अभी उनको हम पटाएंगे दोनों अगले गाने के साथ। मिस्टर अनिल हमारे साथ है और नेक्स्ट गाना जो है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। आपने जो गाना मांगा है मैं कोशिश करूंगी। मिस्टर नुरे दिन बुराही बोंजू नमस्ते, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए हमारे साथ। एंड यहाँ पर यलेश शाम हमारे साथ हैं, कैसे हो भाई? सब बढ़िया, सब ठीक। तो ऐसा है, दोनों के लिए गाना हम ज़रूर चलाएंगे। यहाँ पर और भी बहुत सारे दोस्त हैं। दादी का जन्मदिन है, ये साहिल ने बोला है, एक अच्छा सा गाना। चलिए दादी को उनकी अच्छे दिन याद दिलाते हैं अगले गाने के साथ। फिल्म का नाम है आराधना। और यहाँ पर कविता दोलीप जी हमारे साथ हैं, नमस्कार। के शिनी गुड मॉर्निंग, ओके गुड आफ्टरनून, हेलो माई लॉर्ड, कैसे हो? मैसेज भेज रहे हो, कम से कम नाम भी तो भेज दिया करो। ऐसे उठपटांग नाम रखते हो ना, कभी कभी हंसी तो आती है लेकिन मैं रेडियो पर बोल नहीं सकती, तो इसीलिए कहती हूँ कि हमेशा जब आप मैसेज भेजो कम से कम अपना नाम तो भेज दो।
1: RM3 रेडियो।

सुहाना सफर सुहाना सफर 12:32 मेरी बत्तीसी हमेशा बाहर रहती है क्योंकि मैं हमेशा खुश रहती हूँ और मेरे खुश रहने का रीज़न एक ही है क्योंकि मैं होती हूँ मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स के साथ और हमारा ये जो प्रोग्राम है सुहाना सफ़र इसमें आपको मैं बता नहीं सकती मैं कितना वेट करती हूँ कि मेरा प्रोग्राम शुरू होगा मैं अपने लिसनर्स से मिलूँगी हमारा लाइव होगा उनसे बहुत सारी बातें होती हैं आप भी अगर हमें रेडियो पर सुन रही हैं तो आप हमें टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं देखो ना धीरे धीरे करके मई का जो महीना है ये भी ख़त्म होने जा रहा है और अभी तो मदर्स डे भी हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं तो कल का प्रोग्राम स्पेशल होगा आज हम इसको नॉर्मल रखेंगे हमारे गाने कुछ अलग अलग है तो ऐसा करते हैं कि हम गीतों के साथ आगे बढ़ेंगे और हमारे खूबसूरत गीतों के लिस्ट में जो अगला गाना आएगा वैसे तो बहुत सारे लोगों ने इस गाने की फरमाइश भी की थी और मैंने सोचा कि भावना फिल्म का ये जो गाना है ये 1984 में आई थी जब यहाँ पर इतने सारे गाने चल रहे हैं तो इसको भी शामिल कर ही दिया जाए और ये गाना हम डेडिकेट करते हैं साधना मीनू सिमला बिजादर अक्रम लीना के लिए और साथ ही साथ यहाँ पर गाना होगा आपके लिए फिया और ये गाना हम डेडिकेट करेंगे सबके लिए जो इस समय हमारे साथ देख कार्यक्रम में शामिल हुए हैं ललिता जी नमस्कार हेलो जी कैसे हो आप चलो इसी बहुत सारे सवाल हैं उनका जवाब मैं देती हूँ तनवीर खालिद कैसे हो आप वेलकम है आपका भी प्रोग्राम में हमारे और यहाँ पर दानी जगरू जी हैं गुडलैंड से उनके लिए भी गाना होगा वैसे जो गाना आपने बोला वो हम कल चलाएंगे आज नहीं कल का दिन स्पेशल रहेगा कल स्पेशल प्रोग्राम्स होंगे क्योंकि वैसे भी वीकेंड में हमारी मुलाकात नहीं होती तो कहते हैं कि खुश रहने का राज क्या है पहले ये बताओ खुश रहने का बस एक ही राज होता है कि आप जो हैं ओवर थिंकिंग ना करें बहुत ज़्यादा ना सोचें देखो जो हो गया सो हो गया मैं आपको एक सिंपल सा यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ मान लो आपसे गलती हो गई तो इंसान जो है ना जानबूझकर कुछ नहीं करता मान लो उनसे गलती हो गई तो गलती हो गई तो गलती हो गई अपनी जानबूझकर नहीं किया जो फोर्स करके जानबूझ के किया जाता है वहाँ पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है लेकिन जो ऐसे हो गया तो हो गया तो लाइफ में जो भी होता है ना कूल रहिए और जिंदगी के मजे लेते रहिए चलिए गाना ललिता आपके लिए साथ में बीटी आपके नाम इंदिरा राम धोनियाम की बेटी प्रतिमा चिस्टा साथ में रेना के लिए गाना डेडिकेट करना चाहती हैं चलिए आपके नाम ये प्यारा सा गाना हम नज़र करते हैं थैंक यू एक बार फिर सभी हमारे लिसनर्स को हमारे टिकटॉक फॉलोअर्स को

0: सुहाना सफर
1: प्रोग्राम है सुहाना सफर और इस सफर में हमारे हम सफर जो हैं वो हैं बहुत सारे यहाँ पर दोस्त हैं जो मॉरिशस में भी हैं परदेश में भी हैं जो टिकटॉक में हमें फॉलो करते हैं 12

0: कर 40 मिनट हुए हैं विनीता का साथ है आरंथरी रेडियो मनोरंजन पर और चलिए ये गाना जो है हम डेडिकेट करते हैं सोनी राजभंडारी के लिए थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस यहां पर जिमी तानिया ऋतिक साथ में गाना होगा खतीबा मंगर के लिए शर्मिला बुधन जोशीला तेशना अनसुया फ्रांस से हमें सुन रहे हैं और हमें सुन रहे हैं कुलविंदर कौर कहते हैं पहली बार मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूं और हमें गाने बड़े अच्छे लग रहे हैं ये तो बहुत बहुत मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी और श्रीन रामजोन भी हमारे साथ हैं तो आप को भी यहाँ पर यहाँ ईद मुबारक कहते हैं हमारी पूरी टीम बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े हैं दीप्ति गुंदौरी जी कैसी हैं आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत बहुत प्यार है आपके लिए मुझे लगता है कि आज अकरम आपका भी आज बर्थडे है अगर है तो प्लीज़ बताएगा और मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे जो दोस्त हैं यहाँ पर हर एक छोटी छोटी चीज़ें जो है हमारे साथ शेयर करते हैं एंड थैंक यू अगर अकरम आज आपका बर्थडे है तो हैप्पी हैप्पी बर्थडे आपको और आज तो डबल धमाका हो गया भाई यहाँ पर बर्थडे भी है और सेलिब्रेट भी कर रहे हो आज यहाँ पर मोहम्मद खान भी हमारे साथ हैं अगर आप लोग हमें मॉरिशस से नहीं बल्कि बाहर से अगर आप हमें ज्वाइन कर रहे हो तो प्लीज़ मुझे बताइए कि आप हमें कहाँ से सुन रहे हो अनुराधा बसगीत वेलकम स्वागत है आपका एंड यहाँ पर प्रीति हमारे साथ जुड़ी हैं वी हैव मोहिनी कैसी हो मोहिनी जी और साथ में यहाँ पर बिल्कुल कंफर्म हो गया कि आज अकरम का बर्थडे है सो आपको हैप्पी हैप्पी बर्थडे हमारी तरफ से हमारी पूरी टीम की तरफ से बिचीना हमारे साथ हैं कहती है मैं लेबूशों से हूँ और फिदू बिचीना विकी आंदिश साथ में आशले जीना और बेबी कैलान के लिए अगर आप कोई गाना प्यारा सा चला दे तो ज़रूर क्यों नहीं नेक्स्ट गाना उनके लिए शारदा लखनऊ भी हमारे साथ जुड़ी हुई है तो नेक्स्ट गाना हम इनके नाम भी डेडिकेट करना चाहेंगे और साथ में शर्मिला जी आपको हमारा गाना अच्छा लगा जानकर बहुत बहुत अच्छा लगा हमें चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और साथ में पर हम नेक्स्ट गाना हमारे प्यारे से दोस्त डीजे वकील के नाम डेडिकेट करते हैं
1: आरएम3 रेडियो रेडियो रेडियो

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: जहाँ पे बसेरा हो सवेरा वही है। चलिए जी, कहते हैं जब आँख खुली तभी सवेरा ये बात भी कहते हैं लोग। अभी के लिए तो हम और आप साथ में हैं, और चलिए देखते हैं हमारे जो दोस्त हैं हमें सुन रहे हैं। यहाँ पर हम गाना जो होगा डेडिकेट करते हैं रेणुका कुलविंदर कौर, जो कि न्यूजीलैंड से हमें सुन रहे हैं। कहते हैं अभी 8:45 PM हुआ है और अभी आपके लिए नेक्स्ट गाना होगा, शायद आपके डिनर का भी टाइम हो गया होगा। हमारे साथ हैं रेणुका कुलविंदर कौर और रियाद महरेज, और साथ में संजय बुधवा, हरिचंद, इंदिरा मुताव सिंह, शैला वातिरिंगम, हमारे डीजे वकील भी हमारे साथ हैं। तो उन्होंने कहा है कि प्लीज़ गाना नर्मदा नेहा और निष्ठा के लिए, जो अभी ऑफिस में काम कर रहे हैं। नहीं, अभी तो लंच टाइम है, तो बोन अपेची जितने भी लोग अपना लंच ले रहे हैं। विमी वेलकम, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। थैंक यू, गाना मुझे पता है आपको पसंद आया, क्योंकि मुझे भी ये गाना सुनकर बहुत अच्छा लगता है। इस गाने में बहुत सारा प्यार छुपा है। और चलिए यहाँ पर दीप के लिए, नमस्ते दीप, कैसे हो आप? और दीप आप कहाँ से हो? पेरिस से, क्या बात है। चलो भाई, यहाँ पर माधुरी 1 2 3 करते हुए आ गई, और गाना जो होगा हम आपको डेडिकेट करते हैं, और साथ ही साथ ये गाना जाएगा आपके लिए। राधा कैसी हो? राधे राधे आपको राधा। एंड चलिए जी, इन्हीं प्यारे प्यारे खूबसूरत गीतों के साथ आज हमारी इस महफिल को रंग देते हैं। आशा जी के साथ आ रहे हैं अब की किशोर कुमार।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर
1: लो भाई सुहाना सफर हमारा प्रोग्राम है और यहाँ पर हमारे इस सफर को अभी हम और खूबसूरत बनाएंगे अगले गाने के साथ। और जो नेक्स्ट गाना होगा ये हम डेडिकेट करेंगे आपके लिए अशोक सुखवंती करिश्मा कृति जानव और गंगाराम फैमिली जो बाहूश से हमारे साथ हैं अजय अभिषेक रवि रामचंद देविना वी हैव गामी एंड मारियोज फ्रॉम सैपिया। हेलो जी हाय कैसे हो आप हाउ आर यू वंदना जी हमारे साथ हैं थैंक यू वंदना जी कैसे हो यहाँ पर हमारे साथ तितवी रामा जुड़ी हुई हैं एंड साथ में ये गाना हम डेडिकेट करते हैं आपके लिए रेखा जी को हमने देखा चले जी। और साथ में ये जो गाना होगा अभी हम इनके नाम चला रहे हैं अंजी आमुगम हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तरुण राम कैसे हो कल आप दिखे नहीं इतने अच्छे अच्छे गाने चलाए हमने कल आपको याद भी किया कोई बात नहीं आज आ गए स्वागत है आपका वेलकम है आपका। जितन दुलवा जी थैंक यू सो मच नेक्स्ट गाना आपके लिए एंड यहाँ पर आपने नाम तो नहीं लिखा लेकिन थैंक यू आई एम रियली फाइन। हंसराज हाय कैसे हो एंड हाय वेद कैसे हो आई एम फाइन थैंक यू सो मच। ओके वी कंटिन्यू विद द सॉन्ग सुल्ताना खंदाई हमारे साथ हैं इंदिरा जी साथ में हैं और अगर आप अपनी पसंद का कोई गाना सुनना चाहते हैं करना क्या है आपको आपको बस हमें अपना मैसेज भेजना होता है एंड मुझे याद है कि यहाँ पर किसी ने एक गाना मांगा था मेरे ख्याल से गाना था फ्रॉम द मूवी एक दूजे के लिए और वो गाना मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं चलाऊंगी शायद मैं कहीं ना कहीं भूल गई थी कोई बात नहीं यहाँ पर वही गाना हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आप सुनेंगे नेक्स्ट और ये गाना हमें लेके जा रहा है 1 बजे के समाचार की ओर और उसके बाद गीतों का सफ़र जारी रखेंगे हमारा आप साथ में होंगे गाएंगे झूमेंगे लीजिए गाना चल पड़ा मिलते हैं थोड़ी देर में।
2: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
3: ये क्या? लिफ्ट बीच में क्यों रोक दी?
4: तुम्हारा साथ ज्यादा बहुत ज्यादा देर रहने के लिए।
3: Oh my God, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है।
4: हिंदी कविता है ना?
3: हाँ।
4: वो मैं तुमको टीच करता हूँ।
3: तुम और हिंदी कविता?
4: तुम समझता मैं हिंदी कविता नहीं जानता? मेरे जीवन साथी प्यार किए जा जवानी दीवानी खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन सत्यम शिवम सुंदरम बिन्हर।

नमस्कार, संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले स्थानीय खबरें। प्रेमानियों की 44 वर्षीय निवासी कुमार आनंद से इस समय FCC द्वारा पूछताछ की जा रही है। ये जांच कनाडा इमिग्रेशन प्रक्रिया से जुड़ी कथित धोखाधड़ी के मामले में की जा रही है। आरोप है कि संदिग्ध ने लोगों को कनाडा में नौकरी और वहां भेजने का साझा का झांसा देकर कई पीड़ितों से पैसे हासिल किए। जांच में सामने आया है कि आरोपी ने फर्जी ऑनलाइन फाइल्स का इस्तेमाल कर कई लोगों को निशाना बनाया। अब तक करीब 35 लाख मॉरिशन रुपए की धोखाधड़ी का अनुमान लगाया गया है। हालांकि जांचकर्ताओं का मानना है कि ये रकम और बढ़ सकती है। संदिग्ध के घर पर की गई तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए। FCC के अनुसार आरोपी ने इन गतिविधियों से आर्थिक लाभ उठाया हो सकता है, जो अफियामला 2002 और FCC एक्ट 2023 के तहत अपराध की श्रेणी में आ सकते हैं। FCC ने बताया कि इसी तरह के मामलों में अन्य पीड़ितों के भी सामने आने की संभावना है। संस्था ने सभी प्रभावित लोगों से आगे आकर जांच में सहयोग करने की अपील की। मॉरिशस में दूरसंचार सेवाएं अब एक नई दौर में प्रवेश कर रही हैं। इक्टा यानी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्राधिकरण ने पूरे द्वीप में 3G मोबाइल सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की घोषणा की है। सरकार द्वारा मंजूर किया गया ये फैसला मोबाइल ऑपरेटरों की मांग के बाद लिया गया है, जिन्होंने अपने नेटवर्क को हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। 3G सेवा को पूरी तरह बंद करने की अंतिम समय सीमा वर्ष 2028 तक तय की गई है। इसका उद्देश्य 4G और 5G नेटवर्क के विस्तार के लिए अधिक स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराना है, ताकि लोगों को तेज और अधिक भरोसेमंद इंटरनेट सेवाएं मिल सकें। हालांकि अधिकांश मॉरिशन पहले से ही आधुनिक स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें कोई खास बदलाव महसूस नहीं होगा, लेकिन पुराने उपकरणों का उपयोग करने वाले लोगों को तैयारी करनी होगी। 3G नेटवर्क बंद होने के बाद केवल 3G पर चलने वाले मोबाइल फोन, कुछ वाहन ट्रैकर्स और अन्य कनेक्टेड डिवाइस हमेशा के लिए काम करना बंद कर देंगे। पश्चिम रिविया में स्थित बेट ऑनलाइन आउटलेट में हुई लूटपाट मामले की जांच में नया खुलासा हुआ है। पश्चिम रिविया की CID और FIO वेस्टर्न की टीम ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों में जुआ केंद्र का एक कर्मचारी भी शामिल है, जिस पर वारदात में शामिल होने का संदेह है। ये घटना मंगलवार 26 मई को बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार चाकू से लेस 2 लोग इस बेट ऑनलाइन केंद्र में घुस आए और करीब 2 लाख मॉरिशन रुपए से भरा लिफाफा लेकर फरार हो गए। इस दौरान कैशर को कोई चोट नहीं पहुंची। जांच के दौरान पुलिस ने केंद्र के CCTV फुटेज की भी जांच की। शुरुआती जांच में एक कर्मचारी को पैसे कैशबॉक्स में जमा किए बिना जुआ खेलते हुए देखा गया। पुलिस के अनुसार चारों आरोपियों ने इस नकापोश लूट और साजिश में अपनी अपनी भूमिका स्वीकार कर ली है। मामले की जांच अभी जारी है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केन्या की राजधानी नैरोबी से लगभग 120 किलोमीटर पश्चिम में स्थित गिलगिल प्रांत के बोर्डिंग स्कूल में लगी भीषण आग में 16 छात्रों की मौत हो गई। घटनास्थल पर मौजूद एक पुलिस अधिकारी ने पत्रकारों को भी ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस हादसे में घायल हुए 74 अन्य छात्रों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। साथ रहे, सुन पाएंगे शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। 80 साल के 80 years old के श्री केवल चेदी

0: जिन्हें वाल के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे रिशल्यू मुगा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ली जाएगी क्रिमेशन चुरिया 2 PM। सोल्फेरिनो नंबर 2 वाकुआ में 77 साल के 77 ईयर्स ओल्ड के श्री माधो राधा जिन्हें छोटे के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके घर नंबर 2 सोल्फेरिनो वाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बालों सोल्फेरिनो नंबर 5 की शमशान भूमि ली जाएगी क्रिमेशन चुटिया 2 PM। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति मानी गहरी संवेदना है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: RM3!
3: एक बजकर 6 मिनट हुए हैं विदित आप सबों का फिर से स्वागत करती हैं प्रोग्राम है रेडियो मनोरंजन पर आपका अपना सुहाना सफर

0: सुहाना सफर।
1: चलिए जी, सफर है सुहाना सुहाना और यहाँ सफर में हमारे साथ कई सारे दोस्त जुड़ गए हैं। दिन के 1:13 हुए हैं, अब तेरा क्या होगा कालिया, ये मैं खुद से पूछ रही हूँ कि 88-89 मैसेजेस, अभी 90 मैसेज मेरे पास पहुँच गए हैं, उन सबको पढ़ना है। चलिए चलते हैं जल्दी। शिवम सुल्ताना, शमिला रीताम, बुधु, रोमन, प्रेमा कायतु, ईशा, संजू, सरोज, आराध्या, विवेक सिंह, साथ में शारदा, सरस्वती, पूजा, वेदांशी के लिए गाना मांग रही क्योंकि उनका बर्थडे है। त्रिवली से हैं, उनके पापा दिनेश, उनके भाई मानस और उनकी नानी की तरफ से। कुवैत से मिस्टर खान हमारे साथ हैं। अनुष्का, हेलो, कैसे हो? मीरा कहती हैं, बारिश है और ठंड है, इसमें गर्मा गर्म चाय क्या बात है। यहाँ पर परमपट हमारे साथ हैं, वहीं पे सूबी, मीमी और साथ में ये जो नगला हमारे पास है, स्पेशली हम इसको डेडिकेट करना चाहेंगे हमारी प्यारी सी सुमिता के लिए। कहते हैं राजू दादा साथ में है, ओ दादा कैसे हो? चलो भाई, एंजॉय कर रहे हो तो ठीक से करो ना। फिल्म का नाम है सनम तेरी कसम।

जितने भी तू कर ले सितम हंस हंस के सहेंगे हम। ये प्यार तो कभी न कम था न कभी कम होगा। आप हमारे साथ जुड़े हैं सुहाना सफर रेडियो मनोरंजन पर और यहाँ पर आपका मनोरंजन कर रहे हैं हम खूबसूरत पुराने गीतों के साथ। सुहाना सफर, जी हाँ सुहाना सफर प्रोग्राम में यहाँ पर सिरेना स्वराज, प्रतिमा नीरू, करुणा रामलाल, विकिंग अविनाश, तीना तूरी, वैदेही, रीना और ऋषि देव का हम वेलकम करते हैं। कैसे हो बच्चा, सब ठीक? सब काम पे हो या घर पे हो, कहाँ हो? चलो जी, यहाँ पर कहते हैं कि क्या गाना लगाया आपने, आशा जी का क्या गाना लगाया? हाँ मैंने गाना लगाया और मैंने बड़े प्यार से गाना लगाया। आपको मज़ा आया, आपने सुना, आपको अच्छा लगा, यही तो काम है हमारा। आपका दिल जो है ना वो हैप्पी होना चाहिए। मीला रामा जी कैसी हो जी, हेलो जी, हेलो अगेन। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि बहुत दिनों के बाद कमल हासन जी का गाना चला, बड़ा मज़ा आया। करुणा जी हाय, हाय कुसकुस कैसे हो? वैसे कुसकुस खाने वाला भी कुसकुस होता है। यहाँ पर एक अल्फाबेट आया है जिसका नाम है ए। मैं गाना गाती, ए क्या बोलती तू, चलो ए के लिए गाना, लेकिन ये भी होता है ना, ए ये भी होता है, तो इसीलिए पूरा नाम लिखना ताकि मैं आराम से आपका नाम लूँ, ठीक है? चलो जी, माया जी कहती है आज बहुत सुंदर गाने सुनने को मिल रहे हैं। झूठ मत बोलो, मैं रोज़ अच्छे गाने चलाती हूँ। कौशन, हाय कौशन कैसे हो? और यहाँ पर अफीज़ा है, कहते हैं नेक्स्ट गाना साइलेश के लिए प्लीज़, और आने से तेरी आए बहार। चलो जी, नोट करती हूँ मैं, आने से तेरी, आने से तेरे आए बहार, मैंने गा दिया गाना। कहते दो लाइन है, तू ही गा ले। चलो प्रिया धनु बिकर कैसे हो, नमस्ते, और मेरी जान थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। करुणा जी ने गाने की फरमाइश की, कहते हैं कि आशा जी को तो हम हमेशा याद करेंगे, ऐसे ऐसे गाने चलाओगे तो कौन भूल सकते हैं? नहीं भूल सकता कोई, कोई भूलना नहीं चाहिए। यहाँ पर हमारे जितने भी लिसनर्स हैं उनको मैं यही बता दूँ कि हम कोशिश करते हैं भाई गाने, कभी कभी आप गाना मांगते हो ना, वो गाना हम सुनते हैं ना तो ऐसा लगता है कि भाई कई सारे लोगों का दिल टूटने वाला है, तुम चेंज कर देते हैं, होता है ऐसे। चलो ऋषि कहते हैं मैं काम पे हूँ दीदी, ओके मेरा बच्चा काम कर, एंड बोको काश टू यू। अभी के लिए गाना जो होगा हम आपके लिए, कौन सा स्टूडियो है भाई हमें सुन रहे हो, थैंक यू संजीव, नमस्ते कैसे हो। चलो बीना के लिए भी गाना होगा और यही गाना हम डेडिकेट करते हैं आपके लिए। कौन है हमारे साथ? श्यामा जी, लो भाई आपने पुकारा और हम चले आए, साथ में ये खूबसूरत

दीवाना लेके आया है दिल का तराना और ये दीवानी आपके लिए लेकर आई है एक से एक बढ़कर खूबसूरत ऐसे गाने जिसे सुनकर आप झूम उठे। चले जी, यहाँ पर कुवैत से खान साहब ने हमसे गाने की फरमाइश की थी, सॉरी थोड़ा लेट हो गया, कल हमें टाइम नहीं मिला। एंड फिया थैंक यू आपको भी, आप हमारे साथ हैं। एंड माधुरी जी प्लीज़ गेट वेल सून। रितु कुमार उन्होंने गुड मॉर्निंग भेजा है, क्या बात है, आप हमें सुन रहे हैं यूके से, बहुत सारा प्यार आपके लिए और ये गाना खास आपके लिए। वीमा पेंचा आपके नाम भी नज़र करते हैं, खूबसूरत सा गाना। एंड यश्वरी आपके हस्बैंड के लिए भी ये गाना हम डेडिकेट करते हैं जो इस समय हमारे साथ जुड़े

हुए हैं एंड देखो ना यहाँ पर इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं. अगर आप चाहें तो अपना नाम भी भेज सकते हैं ताकि हम भी आपके लिए कोई गाना डेडिकेट कर पाए.

0: नजर न लग जाए किसी की राहों में। चलिए यशवरी, रोमिन, माधव, जीवमान और बबीता बुलाकी के लिए अगला गाना नजर करते हैं।
1: You're listening RM Free Radio Radio Radio।
0: और ये गाना हम डेडिकेट करते हैं हस्बैंड। ओके, आपने मैसेज तो लिखा है, प्ले दिस सॉन्ग हस्बैंड ही खुशियां।

0: सुहाना सफर
1: सुहाना सफर
0: सुहाना सफर हमारा प्रोग्राम यहां पर वेलकम करते हैं हम नाइम से रतन का मनीषा नेक्स्ट गाना प्रेम और रानी के लिए ज्योति मासिया हमारे साथ है हेलो और साथ में है संजय स्टीफन रॉय देवीना ननकू और यहां साथ में हमारे इतने सारे गाने हैं कहते हैं कुछ लोग तो कभी खुशी कभी गम के बारे में भी बोल रहे हैं चलो जी यहां पर अभी नेक्स्ट गाना होगा आपके लिए

0: साथ खून माफ फिल्म का गाना नहीं चला सकती हमसे सॉरी दीप्ति जी, समझने वाली समझ गई है, ना समझे तो पूछ लेना बता दूंगी। और साथ में यहाँ पर जो नेक्स्ट गाना होगा आपके नाम हम विकिंग, थैंक यू सो मच आप हमारे साथ हैं और कहते हैं अभी जाने का टाइम हो गया, ओके थैंक यू। और यहाँ पर गाना होगा आपके लिए दीपक बिहारी, बहुत देर कर दिया आने में, ये हमेशा प्रोग्राम को 30 मिनट होता है खत्म होने को तब क्यों आते हो, पहले आ जाना। ओके जीवन जी लाला लाला ला कर रहे हैं हमारे साथ, रागिनी जी आ गई क्या बात है, थैंक यू सो मच। चलो भाई यहाँ पर गाना आया है आपके लिए, वैसे आपने जो गाना मांगा है ये मेरा फेवरेट गाना है, लेकिन अभी मुझे टाइम देखना पड़ेगा, अगर टाइम मिला तो चलाऊंगी, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट गाना आप सभी के लिए, कहते हैं कि मौसम जो है अभी काफ़ी खूबसूरत हो गया है, अब कहाँ पे बारिश कहाँ पे धूप ये तो मैं नहीं जानती, तो आप मुझे बता देना। हाय क्रिश लवली कैसे हो, एंड साथ में अभी जो नेक्स्ट गाना आ रहा है वो कौन सा गाना है भाई, ये जितने भी पति है अगर अपने पति को मनाना चाहते हो अगर वो रूठ गई है तो
1: बड़ा कठिन है प्रश्न ये भैया, आए बारंबार इस उम्र में पूछे बीवी क्या करते हो प्यार, मुझसे क्या करते हो प्यार। अरे पूछे मेरी बीवी डू यू लव मी डू यू लव मी,
2: तो क्या कहा आपने,
1: अरे बरसों से तो कहता आया आई लव यू आई लव यू, हर दिन हर पल यही कहूं मैं आई लव यू, सुबह सवेरे काम पे जाऊं आई लव यू,

ना सफर खाना सफर दिल दिया है जहाँ भी देंगे ऐ सनम तेरे लिए। जी हाँ, आजकल तो प्यार बहुत सस्ता हो गया है। आजकल तो प्यार बस मिलता है, अब हर कोने में मिलता है। पहले प्यार जो है बहुत कीमती हुआ करता था, आज तो बस पता नहीं आज प्यार करते हैं कल प्यार कहाँ खो जाता है पता नहीं चलता। यहाँ पर रोशन मोहिनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका हम वेलकम करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो ऐसा करते हैं ये नेक्स्ट गाना हम दीप सिंह संदीप सिंह के नाम डेडिकेट करते हैं। कहते हैं हम्बल प्रणाम डियर सिस्टर फ्रॉम डर्बन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में बहुत सारे लोग हमें सुनते भी हैं। ब्रदर थैंक यू सो मच, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं बहुत दिनों के बाद। आज आपने मैसेज किया, वैसे लास्ट टाइम से मैं वेट कर रही थी कि शायद आप रोज़ हमारे साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन मुझे ये भी पता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं हो सकता है कि आप बिज़ी हो। लेकिन थैंक यू सो मच इस बहन को याद करने के लिए। दिव्या कैसी हो, नमस्ते जी। और यहाँ पर कीर्ति चतु जी हमारे साथ हैं, हैव अ गुड डे आपको भी कहूँगी। एंड धरीना यानी अंजू हमारे साथ हैं, एंड अंजू इट्स योर बर्थडे तुझे, है ना। चलो जी, एजे के लिए गाना हम डेडिकेट करते हैं, आपके लिए गाना डेडिकेट करते हैं। नेक्स्ट गाना जाएगा टू प्रेमा दिवेश यज्ञ एंड वरुण के लिए, और साथ ही साथ यही गाना हम डेडिकेट करते हैं आपके लिए। मैं ठीक हूँ अंजू, थैंक यू सो मच। प्रश्नी हमारे साथ हैं, और यहाँ पर काफ़ी सारे दोस्त बर्थडे सेलिब्रेट करें, उन सबको हमारी ओर से हैप्पी हैप्पी बर्थडे, बहुत सारा प्यार है। एंड अबूबका, ओके आपने नाम तो नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग अपना मैसेज भेजते हैं मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। संगीता सुखारी जी आपके लिए, और साथ में ये गाना उनके लिए जो अभी अपने प्यार को याद कर रहे हैं।

चलिए गाना जो है हम चला रहे हैं अफेस के लिए जो ऑस्ट्रेलिया में है अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं 66 इयर्स की हो गई हैं बहुत सारा प्यार अहमद की तरफ से बहुत बहुत सारा प्यार और आपके लिए गाना होगा और यह गाना हम डेडिकेट करते हैं आपके लिए ललिता फ्रॉम कालबास शिबू फैमिली के लिए हमारी टीम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद आपको एंड राजन रघुपत जी हमारे साथ लंदन से जुड़े हुए हैं गाना उनके नाम और रफिक मोहित हैं तायाक से उनके लिए भी और साथ में ये गाना जाएगा विजय आपके नाम बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए गाना मामा चांदनी के लिए जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करी हैं नैना पापा प्रकाश गिरधारी फैमिली की ओर से बहुत सारा प्यार

0: RM3 Radio.
1: चलिए गाना आ जाएगा यहाँ पर जिमी के लिए, करिश्मा जहांगीर, शांता, किरण कतूना, अजय और सुदेवी के नाम।

0: कसम मोहब्बत
1: की। RM3 रेडियो रेडियो
2: चलिए बाहर तो आती रहेंगी, मेरे जाने का टाइम हो गया है। अगला गाना रेशमा की तरफ से उनके बेटे जयेश के लिए। अतवाल महिंदर हमारे साथ हैं, वेलकम प्रोग्राम में स्वागत करते हैं आपका, लेकिन जाने का टाइम मेरा हो गया है। और यहाँ पर जितने भी लोगों ने अब तक हमारा साथ दिया, यहाँ पर निदेश का हम वेलकम करते हैं और साथ में कहेंगे थैंक यू। अब आपसे मुलाकात होगी कल, जी हाँ कल 12 बजे, कल एक स्पेशल प्रोग्राम के साथ हम आएंगे नीतू शाह के साथ, जहाँ पर आपको बाहर लेके जाएंगे और बहुत मस्ती होगी, तो उसमें ज़रूर आप शामिल हो जी। तेज सोनातन जी हमारे साथ हैं और साथ में यहाँ पर अब मैं परी को, साहिल को, सबको थैंक यू कहेंगी। और मनीता जी थैंक यू सो मच। और अभी बहुत सारे दोस्त हैं, माधुरी जी गेट वेल सून, गाना सुनिए, मिलते हैं कल।

चलिए चलते चलते मूनसेंड के लिए गाना होगा, यही गाना अनीता के लिए जो फ्लिक ऑन फ्लैक से साथ दे रही है, एंड साथ में प्रकाश वती जो इस समय हमें सुन रही हैं, थैंक यू सो मच आप हमारे साथ हैं और बेल्जियम से बहुत सारा प्यार भेजा है, थैंक यू। चलिए कल मिलते हैं, बाय बाय।

0: तो आइए सुनते हैं समाचार आशिता के साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार, संक्षिप्त समाचार में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। अमरीकी दूतावास ने राजीव गांधी साइंस सेंटर के सहयोग से पिछले गुरुवार यानी

21 मई 2026 को फ्रीडम 2050 कार्यक्रम का आयोजन किया। ये कार्यक्रम अंतरिक्ष नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित था। सम्मेलन और संवाद सत्रों के माध्यम से इस पहल का उद्देश्य ये दिखाना था कि विज्ञान और टेक्निक किस तरह शिक्षा को बदल सकती हैं और युवाओं को भविष्य के स्टेम यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित से जुड़े करियर के लिए तैयार कर सकती हैं। सम्मेलन और संवाद सत्रों के माध्यम से इस पहल का उद्देश्य ये भी दिखाना था कि कार्यक्रम में नई तकनीकों, अंतरिक्ष अनुसंधान और आधुनिक शिक्षा प्रणाली में नवाचार की भूमिका क्या है। और आज 28 मई को मुस्लिम समुदाय ईद उल अदा मना रहा है, जो इस्लामी कैलेंडर के सबसे बड़े त्योहारों में से एक माना जाता है। ये पर्व पैगंबर इब्राहिम की अल्लाह के प्रति श्रद्धा और समर्पण की याद में मनाया जाता है। इस खास दिन की शुरुआत सुबह की नमाज से हुई, इसके बाद कुर्बानी की रस्म अदा की गई, जो पैगंबर इब्राहिम की आस्था और परीक्षा का प्रतीक माना जाता है। ईद उल अदा का ये त्यौहार परिवार और अपनों के साथ खुशियां बांटने, मेल मिलाप और भाईचारे का संदेश भी देता है। कनमानियों के 44 वर्षीय कुमार आनंद ने से इस समय FCC द्वारा पूछताछ की जा रही है। ये जांच कनाडा इमिग्रेशन प्रक्रिया से जुड़ी कथित धोखाधड़ी के मामले में की जा रही है। आरोप है कि संदिग्ध ने लोगों को कनाडा में नौकरी और वहां भेजने का झांसा देकर कई पीड़ितों से पैसे हासिल किए। जांच में सामने आया है कि आरोपी ने फर्जी ऑनलाइन फाइल्स का इस्तेमाल कर कई लोगों को निशाना भी बनाया है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मई के अंत में पश्चिमी यूरोप, सऊदी अरब और उत्तरी भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप देखा जा रहा है। खासतौर पर मक्का में हज यात्रा की शुरुआत के बीच बढ़ती गर्मी लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल रही है। अत्यधिक तापमान के कारण मानव शरीर की तापमान नियंत्रित करने की प्राकृतिक क्षमता प्रभावित हो रही है। इसके चलते लोगों को नई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और समय से पहले मौत के मामलों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।

0: शोक समाचार सुनिए। कौलाबू तिया रूज में 88 साल लगे एडीएड यजोल के श्री लक्ष्मण मोहाबे जिन्हें भाई लक्ष्मण के नाम से लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल 1 बजे उनके बेटे महेंद्र मोहाबेर के घर कौलाबू तिया रूज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही ब्रुले की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 1 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Your news on NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।
3: नाट्य कला, रंगों की भाषा, भावों की धारा, जहां मंच पर हर एक किस्सा हमारा। नाटक पर आधारित कार्यक्रम नाट्य कला।
4: वाकई दोस्तों, नाटक पर आधारित कार्यक्रम नाट्य कला आप लोगों के लिए मंच पर हर एक किस्सा हमारा होता है और हर एक किस्से के साथ हम अपने आप को जोड़ देते हैं। जोड़ना क्या, हम अपने आप को उस घटना के साथ आत्मसात कर देते हैं। नाटक जो है साहित्य का एक अंग होता है, जहाँ पे साहित्य में जो भी कुछ घटना घटती है उन सब का उदाहरण लेकर नाटककार लेखक अपनी कला द्वारा, अपनी प्रतिभा द्वारा मंच पर ले जाता है और अभिनेता अपने अभिनय द्वारा इन सभी घटनाओं को जनता प्रेक्षक के सामने प्रस्तुत करते हैं। नाटक पर आधारित कार्यक्रम नाट्य कला आप लोगों के लिए। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में हम शुरुआत करते हैं। इसके साथ हमारे साथ है राजेंद्र सदा सिंह।

0: जी, जो नाटक के एक बहुत ही दिग्गज पुराने खिलाड़ी कह सकते हैं, अभिनेता कह सकते हैं, आप एक निर्देशक है, लेखक है, अभिनेता है। गुरुजी आपका हम स्वागत करते हैं। नमस्ते।
1: धन्यवाद। नमस्ते
0: गुरुजी, आप कैसे हैं?
1: बस चलता है, कृपा है भगवान की।
0: एक ने कहा कि आप कैसे हैं, दूसरे ने कहा कि बस चलता है, तो किसी एक ने कहा है नहीं बस चलता है, बस चलती है। तो चलिए, ये हंसी मजाक नाटक का एक भाग होता है। गुरु जी, हम मेरा पहला प्रश्न, क्योंकि यह कार्यक्रम जो है नाटक पर आधारित होता है, तो मेरा पहला प्रश्न आपसे, आप कब से नाटक में हैं, आपकी शुरुआत किस साल में हुई थी?
1: मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि मैं नाटक की शुरुआत हमने की थी, हमने ग्रुप था हमारा, हमने की थी 1965 में, 1965 में। उस समय हम लोग तयोले के महेश्वरनाथ मंदिर में हिंदी पढ़ने जाते थे, जहाँ पर कम से कम 250 लोग, 250 बच्चे पढ़ने आते थे। आसपास में केवल एक ही पाठशाला थी, यहाँ सभी कक्षाएं चलती थी, वहाँ पहली से लेकर उत्तमा, मध्यमा, उत्तमा सभी वहाँ चलता था। तो वहाँ पर एक दिन हम निकालते थे नाटक के लिए। अच्छा। और वहाँ पर चलाने वाले थे, वहाँ के डायरेक्टर थे श्री अभिमन्युनाथ जी, जो हमारे गुरु थे।
0: और आपने कहा कि 1965, उस समय के बारे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि स्वतंत्रता से पहले था, क्योंकि 1968 में स्वतंत्रता
1: प्राप्त हुई।
0: तो 1965 उस समय माहौल कैसा था, देश की परिस्थिति कैसी थी, क्या लोगों को नाटक के मंचन के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाता, अधिकार था, उस समय के बारे में बताइए।
1: ऐसा है कि उस समय मतलब कि मनोरंजन का कोई साधन है था नहीं अच्छी तरह से, मतलब कि रेडियो ही सब कुछ था, रेडियो बहुत बड़ा, बहुत बड़ी विधा मानी जाती थी उस समय। तो जब हम लोग पाठशाला में जाते थे, तो हमारे गुरुजी जो हैं अभिमन्युनाथ जी, तो उन्होंने वे नाटक बहुत पसंद करते थे, नाटक करते थे अजंता आर्ट्स की ओर से टेलीविजन पर उस समय। वो भूमित्र शर्मा एगा जी थे प्रोड्यूसर उस समय, तो वे करते थे, तो वे चाहते थे कि यहाँ पर पाठशाला में भी एक कम से कम एक छोटी शाखा खोली जाए, ताकि ये जो छात्र हैं नाटक में दिलचस्पी लें, नाटक जाने और नाटक करें। तो हर शुक्रवार को वहाँ पर जब छुट्टी हो जाती थी पाठशाला की 6 बजे, तो 6 बजे से 7 बजे तक कुछ लोगों को वहाँ रखा जाता था, जिनको दिलचस्पी थी नाटक में उनको वहाँ पर रखा जाता था, नाटक के बारे में बात करने के लिए, नाटक कैसे प्रस्तुत करते हैं, नाटक कैसे करते हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखकर हर शुक्रवार को 1 घंटे तक वहाँ पर मतलब कि छठी से ऊपर तक, मतलब मध्यमा, उत्तमा, इन सब बच्चों को वहाँ पर रखा जाता था। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि कहा कि हम महीनों से केवल बातचीत कर रहे हैं, हम 5 मिनट का एक नाटक तैयार करते हैं। तो इस तरह से 5 मिनट का नाटक, 10 मिनट का नाटक, ऐसे करते करते 30 मिनट के नाटक तक हम पहुंच आए। और 30 त्योहारों के अवसर पर हम लोग नाटक प्रस्तुत करते थे। मुझे अच्छी तरह से याद है, ये जो रक्षाबंधन त्यौहार है, मतलब अच्छी तरह से लोग मनाते नहीं थे, तब हमने एक नाटक किया था, बहुत भारी मेला लगा था वहाँ पर। महेश्वरनाथ मंदिर के प्रांगण में एक हॉल था, उसका नाम था शिवराज हॉल, पुराना था वो, बाप हॉल कचाकच भरा हुआ था। मान आप सोचिए अच्छी तरह से, लगभग 200-250 बच्चे वहाँ पर पढ़ने आते हैं, और सभी लोगों ने जाकर सूचित किया, सूचना दी अपने घर पर कि यहाँ पर एक नाटक होने वाला है रक्षाबंधन के अवसर पर। तो कितने, मतलब कि कितने पेरेंट्स वहाँ पर आए होंगे, कितनी भीड़ वहाँ पर रही होगी, बहुत भीड़ थी वहाँ पर। तो हमने एक नाटक किया था वहाँ पर अभिमन्यु जी के निर्देशन में, उन्हीं का लिखा हुआ, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, बहुत भारी भीड़ थी। तो उस मतलब कि मनोरंजन का मतलब जो माध्यम अच्छी तरह से नहीं था, सिनेमा भी अच्छी तरह से नहीं आया था, और वहीं पर हर महीने में एक गुरुवार को, गुरुवार की रात को इंडियन हाई कमीशन का वो मोबाइल सिनेमा जो है वहाँ पर मंगाए जाते थे, वे लोग आते थे, और मोबाइल सिनेमा देखने के लिए भी इतनी भीड़ थी कि क्या कहें आपको।
0: आपके ज़माने की,
1: हाँ, 1965 की बात कर रहा हूँ, 1965, मतलब 2 साल तक ये मोबाइल सिनेमा चलता रहा। और इसी तरह से वहाँ पर नाटक का जो बोलबाला है होने लगा, बहुत लोग इसमें दिलचस्पी लेने लगी, मतलब बहुत सारे कार्यक्रम होते थे, मतलब डिबेट था,

0: कविता, मतलब कि कविता पाठ था, कहानी सुनाना था, गीत था, भजन था, सब कुछ था, लेकिन नाटक में लोग ज़्यादा दिलचस्पी लेते थे।
1: मोबाइल सिनेमा के बारे में बात कर रहे हैं,
0: हाँ,
1: तो हम जानना चाहेंगे आजकल 2026 के युग में हम जी रहे हैं, टेक्नोलॉजी है, अभी सिनेमा मोबाइल में चल रहा है, अभी हम मोबाइल सिनेमा की बात कर रहे हैं, तो मोबाइल हाथ में सिनेमा चल रहा है अभी, तो वो मोबाइल सिनेमा के बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि कैसा था उस समय, कैसा था, वैन था, बड़ी लॉरी थी, इसके बारे में बताइए।
0: ऐसा था कि वैन बगल में रखा जाता था, एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगाई जाती थी महेश्वरनाथ मंदिर के प्रांगण में, बहुत तो वो तो विशाल हैं, लगाई जाती थी वहाँ पर, वहीं पर वो मतलब कि फिल्म दिखाई जाती थी, छोटी छोटी फिल्म थी, भारत की गाँवों की शहरों की, इस तरह से दिखाई जाती
1: थी स्वतंत्रता
0: से पहले, लेकिन भीड़ बहुत लगती थी, लोग जान जाते थे कि मोबाइल सिनेमा है यहाँ पर आज, तो भीड़ बहुत लगती थी।
1: तो ये ऐसे गांव-गांव में होता था,
0: गांव-गांव में होता था, लेकिन यहाँ पर हर महीने के अंत में एक बार अभिमन्यु जी की मांग पर हाई कमीशन ऑफ इंडिया से यहाँ पर मंगाया जाता था, तो बहुत भीड़ लगती थी।
1: उसी समय एक छोटा सा नाटक आप लोग प्रस्तुत करते थे?
0: नहीं करते थे हम लोग नाटक प्रस्तुत करते थे, मतलब कि होली के अवसर पर, एकादशी के अवसर पर, महाशिवरात्रि के अवसर पर, इन त्योहारों के अवसर पर हम लोग नाटक प्रस्तुत करते थे, छोटे छोटे नाटक, 30 मिनट का नाटक। तो ऐसे करते करते अब सभी लोग बड़े होने लगे, कुछ लोगों ने मतलब छोड़ दिया, मतलब हिंदी की पढ़ाई छोड़ दी, कॉलेज गए, यहाँ गए, वहाँ गए, बस लगभग 8-10 लोग रह गए हम लोग, मैं परमानेंट रह गया, 1965 से मैं वहीं रह गया।
1: नहीं, मोबाइल सिनेमा से हम शुरू करते हैं, मोबाइल सिनेमा, क्योंकि आप एंटरटेनमेंट के नाम पे मोबाइल सिनेमा
0: देख रहे
1: हैं आपने कहा, और स्वर्गीय अभिमन्यु अनर्जी की मांग पर ये शुरू हुआ। फिर उसके बाद किस तरह से लोगों नाटक आया, नाटक का प्रवेश हुआ, लोगों की दिलचस्पी, लोगों की रुचि हुई नाटक में, किस तरह से उसका मतलब शुरुआत हुआ?
0: मतलब ऐसे हुआ कि हम ही लोग जब देखते थे, वो छोटे छोटे नाटक देखते थे मोबाइल सिनेमा पर, तो वो नाटक ही था, हालांकि सिनेमा था ब्लैक एंड वाइट, लेकिन छोटे छोटे 10-10 मिनट का, 5-6 मतलब 1 घंटे तक रहते थे वे लोग, 5-6 इस तरह के सीन दिखाए जाते थे, तो हम लोग सोचते थे हम भी तो ये कर सकते हैं अच्छी तरह से, हम देखते थे अच्छी तरह से, और अभिमन्यु जी कहते थे, उनका मतलब मोबाइल सिनेमा से पहले उनका भाषण होता था वहाँ पर, और अंत में भी धन्यवाद के रूप में उन्हीं का भाषण होता था 5 मिनट का ऐसे, तो हम लोग देखते थे, तो हम सोचते थे कि हम तो ये कर सकते हैं, तो हमने एक बार मांग की कि ये कर सकते हैं, कहा हाँ अच्छी तरह से कर सकते हो, अब स्क्रिप्ट तैयार करेंगे और हर त्यौहार के अवसर पर हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो हमने शुरुआत की थी, मुझे अच्छी तरह से याद है, एकादशी के अवसर पर, वहाँ पर भारी मेला लगता था, तो एकादशी के अवसर पर हमने वहाँ पर नाटक शुरू किया था पहला, तो हमने देखा कि मतलब कि एकादशी पर जो महिलाएं आती, ज़्यादातर महिलाएं आती थी, उसके बाद हमने किया था रक्षाबंधन के अवसर पर किया था, वो बहुत बड़ा मतलब कि सक्सेस था, बहुत बड़ा सक्सेस।
1: ये त्रियुली की बात है,
0: त्रियुली की बात है,
1: त्रियुली को छोड़कर बाहर किसी गांव में और ये नाटक चलता था?
0: नहीं चलता था, कहीं भी नहीं चलता था, करने वाला कौन था, कौन करेगा? अच्छा। वहां पर अभिमन्यु अनंत जी थे तो वो आयोजन करते थे, और कौन करेगा बाहर, कहीं पर भी नहीं था, कहीं पर भी नहीं।
1: उस समय जिस समय आप बात कर रहे हैं एकादशी के अवसर आप लोगों का पहला नाटक शुरू हुआ, तो क्या महिलाओं को अधिकार था नाटक में भाग लेने के लिए? क्योंकि जहाँ तक हमने इतिहास को पढ़ा है, इतिहास को जानते हैं कि पहले के ज़माने में महिलाओं को उन लोगों को अधिकार नहीं था इन सब मनोरंजन के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए
0: हाँ। नहीं था, लेकिन हमारे लिए सौभाग्य की बात थी उस समय कि एक लड़की हमारे साथ पढ़ती थी, नाम उसका आसानी से ले सकते हैं, वो बेस्ट राक्षस मिल चुका है 2-2 बार उसे, शोभा शंकर थी वो उस समय। तो उन्होंने अपने मतलब परिवारों से पूछा, अभिभावकों से पूछा कि नाटक है इस तरह का मंदिर में, तो मंदिर में हाँ बैठकर पढ़ने जाती हो, तुम आसानी से ले लो, है वो ले। तो वहीं से शुरुआत हुई थी, एक ही पहला वही आई थी, और जितने भी नाटक हुए तो उसी को लेकर, कंपटीशन में आए बाद में, कंपटीशन बाद में करेंगे तो उसी को लेकर, ऐसा था मतलब था, लड़की भाग लेना चाहती थी और बाकी उनके परिवार उनको आने नहीं देते, लड़कियों में दिलचस्पी थी, वे आना चाहती थी।

0: अतिथि आने के लिए, लेकिन उनके परिवार जो है माँ बाप नहीं नहीं इजाज़त नहीं देती थी। और चूंकि ये लड़की जो है मंदिर के पास ही रहती थी, शिवालय के पास ही रहती थी, और उनके माँ बाप आते रहते थे, तो
1: ये उस समय की मान्यता थी।
0: हाँ।
1: ये इतिहास भी हमको बताता है।
0: हाँ।
1: कि उस समय महिलाओं को, लड़कियों को ज्यादातर अधिकार नहीं था
0: नहीं,
1: ऐसे कार्यक्रम, मनोरंजन के कार्यक्रम में भाग
0: नहीं,
1: लेने
0: नहीं
1: के लिए।
0: हाँ।
1: जैसे आपने कहा कि अभी अभी मतलब समय के साथ थोड़ा सा परिवेश परिस्थिति बदल गई है और कई महिलाएं लोग आते थे, और उस समय अभी तक उस समय में रहते हैं। तो स्वतंत्रता से पहले जैसे आपने कहा कि जब आप लोग नाटक खेलते थे, तो उस समय नाटक कहानी में पात्र महिला पात्र होता था, तो महिला पात्र कौन खेलता था?
0: बस वही कहा ना कि एक ही लड़की थी हमारे पास, एकमात्र, तो हर बार उसी को हम लोग
1: नहीं नहीं नहीं, नहीं। अगर एक कहानी में दो महिलाएं होती थी
0: तो ऐसा था कि उनको ध्यान में रखकर, कलाकारों को ध्यान में रखकर, हमारे जो नाटककार थे मतलब अभिमन्यु जी थे, उनको ध्यान में रखकर नाटक लिखते थे।
1: अच्छा,
0: ऐसा है।
1: तो मतलब जरूरी था कि कहानी में एक ही महिला होगी,
0: महिला क्योंकि कोई आना नहीं चाहता, आना चाहती थी लड़कियां लेकिन उनके परिवार उन्हें रोकते थे।
1: मैंने सोचा कि पुरुष लोग महिला का पात्र निभाते।
0: नहीं नहीं नहीं था, ऐसा नहीं था, तो ना भद्दा लगता था वो। हाँ। सब हमने ट्राई किया था एक बार, भद्दा लगता था, लोग मतलब कि हंसते थे, कई तरह की हंसी होती कहते हैं ना तो हंसते थे।
1: और कहानी उस समय कैसी थी गुरुजी?
0: कहानी जो है उस समय की कहानी मतलब कि ठोस कहानी होती थी, शिक्षाप्रद नाटक जो है, शिक्षाप्रद मतलब कि उनमें संदेश ऐसा था कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ऐसा करना चाहिए, मतलब नाटक से सीखते थे, इस तरह के नाटक लिखे जाते थे उस समय। हालांकि उसमें कुछ कॉमेडी भी थी, लेकिन कॉमेडी के माध्यम से संदेश पहुंचाया जाता था।
1: स्थानीय कहानियां थी या फिर भारतीय कहानियों को लेकर, भारतीय नाटकों को लेकर?
0: उस समय भारतीय नाटकों को लेकर इस तरह अच्छा। से होता था। स्थानीय कहानी मतलब कि अभिमन्यु जी थोड़ा बहुत लिख देते थे नाटक इस तरह से, लेकिन बाद में वे स्थानीय घटनाओं को लेकर।
1: नाटककार मतलब नाटक लिखने वाले बहुत कम थे?
0: नहीं के बराबर, नहीं के बराबर थे।
1: कहानीकार
0: तो मात्र, हाँ
1: कहानीकार उपन्यासकार तो थे पहले,
0: थे हम, लेकिन मतलब कि नहीं के बराबर थे। कोई नहीं लिखता था नाटक, कोई नहीं लिखता था उस समय। अभिमन्यु जी लिखते थे और बाद में जब वो टीवी पर आए, टीवी वही लिखते थे, टीवी पर वही अभिनय करते थे, टीवी मतलब हम भी अभिनय करते थे उसमें, वो टीवी पर टीवी के लिए लिखते थे।
1: तो गुरुजी स्वतंत्रता से पहले ही की बात हम करेंगे।
0: हाँ,
1: जैसे
0: हाँ।
1: कि आपने कहा कि पूरे देश में लगभग त्रियोले में ही उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हुई थी, और स्वर्गीय अभिमन्यु जी के द्वारा, तो आप लोगों ने कहा नाटकों में भाग लिया, और आपको याद है कि आपका पहला नाटक एकादशी के समय हुआ था, और उस समय जब खेला जाता था तो कहानियां उतनी मतलब भारतीय
0: भारतीय स्क्रिप्ट थी, सब भारतीय स्क्रिप्ट,
1: सब भारतीय। तो उस समय जब आप लोगों की शुरुआत हुई थी, तो आप लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता था आप लोग, या फिर देख करके आप लोग नकल करते थे, अभिनय करते थे, कोशिश करते थे? तो एक्टिंग अभिनय कैसा था उस समय, प्रशिक्षण कैसा था?
0: मतलब कि प्रशिक्षण के नाम पर ऐसा था कि जब रोल दिया गया हमें कि आपको ये करना होगा, आपको ये करना होगा, तो जब अभिमन्यु जी स्क्रिप्ट पढ़ते थे, अपने स्क्रिप्ट पढ़ते थे, तो तुमको ये करना होगा, तुमको ये करना होगा, तुम ये, और स्क्रिप्ट दिया जाता था कि ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, तो वो नहीं कर सकता, अब तुम ये पढ़ो, बदल दिया जाता था स्क्रिप्ट।
1: अच्छा।
0: उसको रोल बदल दिया जाता था सॉरी, तब इस तरह से करते थे ताकि मतलब कि ताकि नाटक फूटे और नाटक अच्छी तरह से बिल्डअप हो उसका।
1: तो प्यारे श्रोता और दर्शकगण, आप लोग साथ देते रहिए। नाटक पर आधारित यह कार्यक्रम बहुत ही दिलचस्प मोर पर आया, क्योंकि हम स्वतंत्रता से पहले की बात कर रहे हैं। चलिए लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद फिर आते हैं इसी कार्यक्रम में।

0: नृत्य कला, रंगों की भाषा, भावों की धारा, जहां मंच पर हर एक किस्सा हमारा। नाटक पर आधारित कार्यक्रम नाट्य कला।
1: चलिए आप जुड़े हुए हमारे साथ नाट्य कला कार्यक्रम के साथ। तो यह कार्यक्रम नाटक पर आधारित है और आज का कार्यक्रम बहुत ही खास है। वैसे हर सप्ताह कार्यक्रम तो खास ही होता है क्योंकि कलाकारों से भेंट होती है। आज हम आपको ले जा रहे हैं इतिहास में, मतलब स्वतंत्रता से पहले की परिस्थिति कैसी थी और नाटक का प्रादुर्भाव, नाटक की शुरुआत किस परिस्थिति में हुई, किस तरह से उसमें विकास आया। हमारे साथ है गुरु जी राजेंद्र सदा सिंह जी। तो गुरु जी, हम बात कर रहे थे आपके साथ, की शुरुआत किस तरह से हुई थी नाटक में। आपने कहा कि 1965 में आपको याद है एकादशी के अवसर पर आपकी शुरुआत हुई थी नाटक। और गुरु जी, एक प्रश्न है, खास प्रश्न के साथ हम आगे बढ़ना चाहेंगे। ये तो आपकी शुरुआत हुई थी एकादशी के अवसर पर, लेकिन हम जानना चाहेंगे अगर आपके पास जानकारी होगी कि मॉरिशस में नाटक की शुरुआत कब हुई थी।
2: मॉरिशस में नाटक की शुरुआत सरकारी स्तर पर कह रहे हैं आप या गैर सरकारी स्तर पर?
1: एकदम शुरू से शुरू करते हैं।
2: तो ऐसा था कि जब अभिमन्यु जी जब यहाँ पर नाटक मतलब तैयार करने लगे और लोग देखने दूर दूर से अब लोग देखने आने लगे, और जब वे लोग आते थे तो उनको यही संदेश दिया जाता था अभिमन्यु जी द्वारा कि आप लोग अपने गाँव में तैयारी कीजिए, आप लोग अपने गाँव में तैयारी कीजिए, आप वहाँ पर हैं, आप वहाँ से आए हैं, तैयारी कीजिए नाटक की और हम लोग देखने आएंगे। मतलब कि प्रस्तुत करने से पहले हम लोग देखने आएंगे, क्या कमी है उसमें तो हम लोग उसे पूरा करेंगे। इस तरह से कार्य हुआ तो आसपास के गांवों में चारों ओर नाटकों का आयोजन होने लगा। मुझे याद है एक बार हम लोग दागोचिए गए से, त्रियुले से निकलकर अभिमन्यु जी के साथ दागोचिए गए थे एक नाटक देखने। वहाँ पर वे लोग प्रस्तुत करना चाहते थे तो हमें निमंत्रण दिया कर देखने के लिए, नाटक प्रस्तुत करने से पहले। तो हम लोग गए थे वहाँ पर, तो हमने देखा कि कुछ संशोधन के बाद वो प्रस्तुत अच्छी तरह से उन्होंने प्रस्तुति की नाटक की। तो इस तरह से धीरे धीरे मतलब कई गांवों में इस तरह से छोटा छोटा नाटक जो है लोग प्रस्तुत करने लगे, और हमारे यहाँ तो निकल पड़ा था, नाटक चल पड़ा था यहाँ पर। और जब नाटक चल पड़ा तो बहुत से लोग दिलचस्पी लेने लगे, तो उधर अब छोटे छोटे नाटक अजंता ऑथ्स अभिमन्यु जी ने बनाया वहाँ पर, अजंता ऑथ्स, तो टेलीविजन पर, सीधा टेलीविजन पर नाटक आने लगा धीरे धीरे। उससे पहले रेडियो पर आता था,
1: एक बार फिर से स्वतंत्रता से पहले की बात,
2: स्वतंत्रता से पहले रेडियो पर आता था अभिमन्यु जी का नाटक, शबनम नाम से वे प्रस्तुत करते थे वो नाटक, उनका नाम मतलब कि पेन नेम उनका शबनम, तो उससे रेडियो पर आता था हर महीने में एक बार, मेरे ख्याल से 15 मिनट का नाटक था,
1: तो रेडियो नाटक
2: 15 मिनट का नाटक चलता था। धीरे धीरे अब टीवी आया तब टीवी पर उन्होंने प्रस्तुत किया नाटक, मतलब हर महीने में एक नाटक, तो अब नाटक जोर पकड़ने लगा। तब अब थोड़े कई गांवों में लोग वार्षिक उत्सव के अवसर पर, विशेषकर कुछ लोग तीज त्योहारों के अवसर पर, और कुछ लोग मतलब कि वार्षिक उत्सव के अवसर पर मतलब नाटक का होना बहुत ज़रूरी था, और भीड़ भी लगती थी। मैं कई गांवों में मैं गया था अभिमन्यु जी के साथ नाटक वार्षिक उत्सव में, यहाँ पर राजनेता भी उपस्थित होते थे तो भारी भीड़ लगती थी, और वे लोग ज़्यादा नाटक को ही पसंद करते थे क्योंकि सिनेमा तो आ गया था, लेकिन 1947 में सिनेमा का मतलब कि आ गया, अच्छी तरह से छा गया था सिनेमा, तब नाटक का महत्व जो है थोड़ा कम हो गया था, लेकिन फिर भी जहाँ पर भी नाटक होता था निशुल्क ही था, भीड़ लगती थी तो उस समय नाटक शुरू

0: हुआ,
1: जब नाटक टीवी पर शुरू हुआ और गांव में होने लगा तो लोगों ने सरकार से मांग की, मतलब कई लोग थे जिसमें उस समय के एमपी थे प्रियादत्त मेवा सिंह जी, पंडित जानकी जी थे, आरटीएलए में काम करते थे वे लोग। वे
2: तो गुरु जी आप बता रहे हैं कि स्वतंत्रता से पहले किस तरह से नाटक का मतलब का विकास होने लगा अलग अलग गांव में। हाँ। प्रशिक्षण के बारे में हमने बात

0: हम नाटक की प्रस्तुति करते हैं तो जेब से हमको पैसे निकालने पड़ते थे, मतलब नाटक एक आजीविका के रूप में हम नहीं बना सकते हो उसको। क्या पहले के ज़माने में भी परिस्थिति ऐसी थी या फिर कुछ आमदनी मिलती थी, लोग घर चला सकते थे, मतलब एक फुल टाइम जॉब के रूप में या फिर पार्ट टाइम या फिर एक शौक के रूप में?
1: बिल्कुल नहीं, एक चवन्नी भी नहीं मिलती, एक सेट भी नहीं मिलता था, एक सेट भी नहीं मिलता था। किसे मैं हर बार इंटरव्यू में यहीं पर कहते आ रहा हूँ कि मैं इतने दिनों से नाटक कर रहा हूँ, घर का आटा गीला करके नाटक कर रहा हूँ। कभी कुछ लोग होते हैं कि बस ये जोड़ दो, इसमें ये जोड़ दो, ऐसा स्पॉन्सरशिप कभी कभी, लेकिन ज्यादातर सरकार की ओर से कोई ग्रांट नहीं मिलता था
0: उस समय,
1: नहीं मिलता था, बिल्कुल कुछ भी नहीं मिलता था। हम लोग करते थे जब, मतलब कि अभिमन्यु जी जब प्रस्तुत करने लगे टेलीविजन पर, तब लोगों ने सरकार से मांग की कि इतने दिनों से यहाँ पर अंग्रेजी और फ्रेंच में कंपटीशन चलता था, हिंदी में भी होना चाहिए, क्योंकि मॉरिशस में चारों ओर हिंदी का नाटक जोर पकड़ने लगा है। लोगों ने मांग की तो एक बार उन्होंने प्लाजा थिएटर में, मतलब साल तो बता नहीं सकता एग्जैक्टली, लेकिन प्लाजा थिएटर में चार नाटक प्रस्तुत किए गए
0: हिंदी के,
1: मतलब
0: प्लाजा, मतलब रोजिल के
1: प्लाजा, रोजिल प्लाजा थिएटर में चार नाटक, बहुत भारी भीड़ लगी थी वहां पर, बहुत सारे गांव-गांव से बसें निकलकर वहां पर आई थी।
0: उस समय थिएटर कितने थे? मैं जानता हूं पोर्टलिस में एक थिएटर था,
1: पोर्टली थिएटर और प्लाजा, दो प्लाजा में प्रस्तुत किया गया था, तो बहुत भारी भीड़ लगी थी, चार नाटक वहां पर प्रस्तुत किए गए थे वहां पर
0: मिनिस्ट्री की ओर से,
1: नहीं नहीं ये लोकल क्या नाम है, एक संस्था नाम था उसका, मतलब
0: इंडिपेंडेंट प्राइवेट
1: प्राइवेट ठीक है, और कई मंत्रियों को वहाँ मतलब कि आमंत्रित किया गया था कि देखने के लिए, देखिए ये स्थिति ये है आज। तब अगले साल से कंपटीशन गवर्नमेंट की ओर से कंपटीशन करने का वो आयोजन हुआ,
0: और उस समय मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के,
1: मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट की ओर से, मतलब कि बसंत राय जी थे, बसंत राय जी मिनिस्टर थे, वहाँ पर से शुरू हुआ नाटक का कंपटीशन। कंपटीशन इतना शानदार होता था कि क्या कहें, 75 की एंट्री आती थी वहाँ पर, भीड़ बहुत लगती थी, बहुत से लोग, सभी लोग।
0: जब आप कह रहे हैं 75-80 तक के एंट्रीज आती थी, तो लोकल नाटक या फिर भारतीय नाटक?
1: सब के सब भारतीय नाटक आते थे।
0: अच्छा,
1: भारतीय नाटक आते थे
0: और कलाकार एकदम भरपूर,
1: कलाकार भरपूर, क्यों लिखने वाला कोई नहीं था ना, बस केवल अभिमन्यु जी लिखते थे। मुझे याद है उन्होंने एक नाटक लिखा था मीठे बेर, रामायण पर आधारित था, शबरी की कहानी थी उसमें, उसमें मैंने लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी, मुझे याद है। तो ये फाइनल में आया था ये नाटक।
0: अच्छा,
1: बहुत सुंदर नाटक था ये।
0: फिर नाटक मतलब का बोलबाला चलने लगा गांव-गांव में, बैठकाओं में नाटक।
1: नाटक का जन्म स्थान कहाँ है? बैठका है,
0: बैठका
1: वहीं से शुरू हुआ नाटक। वहीं से शुरू हुआ,
0: क्योंकि एक ये एक ही संस्था था जहाँ पे लोगों को बुलाया जाता था कि आके पढ़ो नाटक करो यहाँ पे,
1: क्योंकि और कोई मतलब कि लोगों को और कोई रास्ता है था नहीं, सभी लोग जबरन मतलब पाठशाला में पढ़ने आते थे, हिंदी की पढ़ाई जोर शोर से चल रही थी, तो सभी लोग अपने बच्चों को वहाँ भेजते थे पढ़ने के लिए। तो ये स्थिति है, ये स्थिति थी उस समय।
0: तो उसके बाद समय के साथ साथ समय की गाड़ी आगे बढ़ने लगी, तो जोर शोर से नाटक मतलब उसका जोश फैलने लगा पूरे देश में। स्वतंत्रता के बाद हम आते हैं, फिर नाटक का एक मतलब एक नया मोड़ आया, जहाँ पे भारत से मोहन महर्षि नामक एक अभी स्वर्गीय है, अभी कह सकते हैं कि गत वर्ष उनका देहांत हुआ था, तो उसके ऊपर एक खास कार्यक्रम हमने बनाया,
1: मैंने भाग लिया था, निर्देशन में था, मुझे याद है।
0: तो उस समय जब मोहन महर्षि जी आए थे, उस समय की परिस्थिति बताइए, नाटक किस तरह से कैसा था और किन परिस्थितियों में मोहन महर्षि जी आए थे और किस तरह से बदलाव हुआ?
1: जब मोहन महर्षि जी 1973 में यहाँ पर आए, 73 में यहाँ पर आए, तो उनका बहुत ही जोर शोर से स्वागत हुआ पूरे मॉरिशस में।
0: ये तो भारतीय सरकार द्वारा भेजा गया,
1: भारतीय सरकार द्वारा उन लोगों को भेजा गया था। उनकी पत्नी साथ थी, श्रीमती अंजला महर्षि जी भी साथ थी।
0: और मुझे याद है अभी तक कि ये तो नाटक के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में भी एक विशेषज्ञ को भेजा गया। मतलब मोहन महर्षि जी के साथ साथ एक और संगीत के विशेषज्ञ भी भेजा गया। क्योंकि जब हमने बात

0: की थी गुरु जी चमन जी के साथ, मोहनलाल चमन जी के साथ, तो उन्होंने कहा कि उनके गुरु जी जो महाराष्ट्र से थे वे आए थे और साथ ही साथ मोहन महर्षि जी भी आए थे, तो संगीत के क्षेत्र में भी विकास आया और नाटक के क्षेत्र में भी विकास आया। तो किस तरह से प्रशिक्षण उन्होंने दिया?
1: प्रशिक्षण मतलब कि अभी मोहन महर्षि जी ने ऐसा किया, जब वे तो मिनिस्ट्री में अब आ गए, अब तो सबसे पहले रेजिडेंशियल मतलब कि सभी लोग एक साथ जुटे थे कैंप में ऑस लागे रेजिडेंशियल सेमिनार में, वहां पर
0: सरकार की ओर,
1: सरकार की ओर से 3 दिन का होता था।
0: तो सरकार की ओर से बहुत सहायता मिलने लगी।
1: हाँ, तब शुरू में मतलब कि रेजिडेंशियल सेमिनार में वहां पर 80 लोगों के लिए वो प्रावधान किया गया था।
0: अच्छा गुरु जी, तो रेजिडेंशियल आप बता रहे हैं, तो रेजिडेंशियल की आवश्यकता क्या थी? लोग एक दिवसीय वर्कशॉप कार्यशाला के लिए नहीं आ सकते थे, रेजिडेंशियल ही चाहिए था। इससे क्या लाभ?
1: क्योंकि वहाँ पर काफी रात तक काम होता था, मुझे याद है 11:30-12 बजे तक काम होता था। ट्रेनिंग बहुत मतलब बहुत अच्छी तरह से वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती थी, इसीलिए 3 दिन के लिए मतलब शुक्रवार की शाम को आते थे और रविवार की शाम को वे अपने घर लौट जाते थे। अब फिर इसके बाद अब पॉइंट जेरोम में, मेबर्ग के पॉइंट जेरोम में भी होने लगा वहाँ पर साउस के कलाकारों के लिए। यहाँ पर तो होता था, वहाँ पर भी होता था। हम लोग दोनों, हमें दोनों स्थानों पर बुलाया जाता था, हमें सीनियर आर्टिस्ट कहकर बुलाते थे दोनों, मतलब दोनों स्थानों पर तो हम लोग जाते थे। मुझे याद है पॉइंट ऑस लागे क्या, मुझे याद है बहुत बढ़िया था यहाँ पर, मतलब कि जितने कलाकार होते थे दिलचस्पी लेने वाले सब उत्तर प्रांत के होते थे।
0: अच्छा,
1: ज़्यादातर और होनहार कलाकार तो यहीं पर से हुए ज़्यादातर।
0: ये तो अतिशयोक्ति वाली बात हो जाएगी, लेकिन फिर भी कहना तो अनिवार्य नहीं वो कहने वाली बात है, क्योंकि जब मैं दक्षिण की ओर में गया था तो वे लोग भी दिलचस्पी रखते थे नाटक में, लेकिन एक से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि जब उत्तर के लोग आते हैं तो मतलब कंपटीशन टकरा हो जाता है
1: और सब प्राइज जो है बटोर कर ले जाते हैं सब, इसीलिए से थोड़ा हताश हो गए थे।
0: नहीं, फिर भी दक्षिण में भी अच्छे कलाकार हैं, पूरे मॉरिशस में अच्छे कलाकार हैं, लेकिन एक तरह से तो देखे तो ये प्रोत्साहन की बात है। अगर कंपटीशन टकराव ना हो तो सीखने का क्या फायदा?
1: कंपटीशन होता है, मतलब कि जो डिजर्व करता है उसी को दिया जाता है।
0: बिल्कुल। और मोहन महर्षि जी किस तरह से एक क्रांति लेकर आए, किस तरह से एक परिवर्तन लेकर आए, और आप में क्या बदलाव आया?
1: मैं उनके आने के बाद मुझे पता चला कि मैं 0 हूँ। अच्छा। इतने दिनों से मैं रंगमंच में मतलब नाटक कर रहा था, खेल रहा था, तो उनके आने के बाद, उनसे ट्रेनिंग लेने के बाद, 1 महीने तक ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे लगा कि मैं 0 हूँ। और अभिमन्यु जी ने खुद कहा कि मैं भी 0 हूँ, उन्होंने कहा कि मैं भी 0 हूँ। कहा कि जो कुछ जानते हैं मैंने आप लोगों को सिखाया, हमने नाटक प्रस्तुत किया, लोगों ने पसंद किया, लेकिन उन्होंने गहराई से नाटक को पकड़ा। उसके ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग ही बहुत काफ़ी है, मतलब कि ट्रेनिंग, वार्मिंग अप, ट्रेनिंग, योगा, सब कुछ उसमें आता है, इसीलिए वो बहुत पसंद करते थे उनके जो सेमिनार हैं, बहुत पसंद करते थे।
0: जिन लोगों को नाटक देखते हैं जो लोग, या फिर जो लोग सोच रहे कि अभी नाटक हम शुरू करेंगे, लेकिन आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही है, उनकी ट्रेनिंग में योगा सब आता है, तो उन लोगों के लिए एक प्रश्न, योगा और नाटक के बीच में संबंध क्या है? किस, क्योंकि योगा तो एक शारीरिक व्यायाम की तरह होता है, तो नाटक के साथ हम कैसे जोड़ सकते हैं?
1: नाटक के लिए बहुत ही जरूरी है। मैंने भी यही सोचा था जो आप कह रहे हैं कि इसमें योगा की क्या आवश्यकता है, वार्मिंग अप क्या है इसमें, तो तब मैंने देखा कि जब हम लोग नाटक कर रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है, मतलब कि जो अभिनय है, गर्दन से, कंधे से, आंख से, हर बात के लिए जरूरी नहीं है कि हाथ उठाकर बोलो, जैसे हम शुरू में करते थे उनके आने से पहले हाथ उठाकर करते थे, लेकिन उनके आने के बाद हम लोगों ने गर्दन का इस्तेमाल करना शुरू किया, कंधे का, आंख का, इस तरह से मतलब कि पूरे शरीर का हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये शुरू में हम नहीं करते थे। शुरू में हम केवल संवाद बोलते थे और हाथ उठा उठा कर

0: बोलती थी, यही तक सीमित थी हम।
1: तो मोहन मुर्शिद जी से पहले के का जो समय काल था उसको हमने मतलब ले लिया है, कुछ छोटा तो नहीं है उस समय काल आपके हिसाब से?
0: नहीं, लगभग यहीं पर है,
1: लगभग यहीं पर है। तो मोहन मुर्शिद जी कितने अवधि, कितने समय तक, कितने सालों तक रहे मॉरिशस में? लगभग
0: 6 साल तक उन्होंने यहाँ पर काम किया, पूरे 6 साल तक। और वो कहते थे हम 10 लोग उनके साथ रह गए थे, उनके आने से उनके जाने तक हम 10 लोग उनके साथ रह गए थे। तो जाने से पहले उन्होंने कहा था कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जो कुछ सिखाया जाता है तो इन 6-7 सालों में मैंने तुम लोगों को सिखा दिया, केवल परीक्षा नहीं दी तुम लोगों ने, सब कुछ सिखा दिया।
1: नहीं, मार्के वाली बात ही है, क्योंकि 6 साल आपने कहा, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट का जो कोर्स होता है वो 3 साल का होता है,
0: 3 साल का होता है।
1: लेकिन 6 साल आप लोग रहे मोहन मुर्शिद जी के साथ,
0: प्रैक्टिकल और है,
1: प्रैक्टिकल
0: क्या होता है, केवल भाषण नहीं, केवल सुनते नहीं उनको, बस ये कह दिया अब इस पर काम करना होगा, ये नाटक तुम तैयार करके लाना, तुम देखो किन किस किस को लोगे, और ये 15 मिनट का नाटक हमें देखना है। ये सेमिनार में यही करते थे हम लोग। जब
1: तो कौन कौन से बड़े बड़े नाटक का मंचन हुआ था उनके काल में?
0: उनके काल में
1: अगर फिर अभी तक याद है तो है,
0: आषाढ़ का एक दिन का हुआ था, मोहन राकेश जी का बहुत बड़ा नाटक था आषाढ़ का एक दिन, इसका मंचन हुआ था वहाँ 15 मिनट का, एवं इंद्रजीत का हुआ था, मुझे याद है ये दो नाटक मुझे अच्छी तरह, मृच्छकटिकम इसका मंचन हुआ था,
1: संस्कृत नाटक था
0: मृच्छकटिकम।
1: तो संवाद सब संस्कृत में होता था?
0: नहीं नहीं हिंदी में
1: उसका अनुवाद होकर।
0: बहुत बहुत सुंदर नाटक था मृच्छकटिकम, मुझे याद है मृच्छकटिकम मतलब मिट्टी की गाड़ी, मृच्छकटिकम एवं इंद्रजीत आषाढ़ का एक दिन,
1: मतलब बड़े बड़े नाटक
0: वे तो मतलब कि NSD से निकले थे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से निकले थे वे। जब आए तो उन्होंने देखा कि ये सब लगभग ये कलाकार जो है तैयार कलाकार हैं, ये लोग कर सकते हैं। और धीरे धीरे आप मतलब कि लड़कियों की बात कर रहे हैं तो धीरे धीरे हमारे बीच आने लगी कुछ लड़कियाँ, धीरे धीरे एक मतलब कि प्रसिद्ध कुछ कलाकार थी, जैसे कि गीता दिल्योर नाम की एक लड़की थी, पोर्ट लुइस सैंकवा से जाती थी, त्रियोले आती थी, फिर सेमिनार में आती थी। और एक लड़की थी रजनी तोताराम, त्रियोले की थी।
1: एक तरफ से तो महिला सशक्तिकरण मतलब उसमें एक और कदम आगे बढ़ने लगा, क्योंकि महिलाओं का भी योगदान आने लगा नाटक के क्षेत्र में। जब मोहन मुर्शिद जी का देहांत हुआ उस समय हमारी बातचीत नेट पर हमारी बातचीत हुई थी श्रीमती अंजलि महर्षि जी से, उन्होंने कार्यक्रम देखा ऑनलाइन, उनको बहुत अच्छा लगा और वे याद कर रहे थे कि हाँ इनको हमने देखा है, आपको देखा, और एक दो प्रतिभागी थे हमारे कार्यक्रम में, उन्होंने कहा कि एक फोटो भेज दीजिएगा, शायद एक एल्बम का कलेक्शन करे है, लेकिन उनको बहुत अच्छा लगा।
0: एक पुस्तक लिख रही है वे अपने पति पर, इंग्लिश में एक पुस्तक लिख, पिछली बार मैं उनसे मिला था दिल्ली में।
1: अच्छा,
0: वो काफी मतलब वृद्धि हो गई है, मिला था उनसे।
1: क्या वे भी नाटक में थी?
0: वो डांस में थी।
1: अच्छा, डांस में।
0: नृत्य करती थी, लेकिन जब उन्होंने यहाँ पर मॉरिशस में अंधायुग नाटक को मतलब की तैयारी शुरू की तो कलाकार नहीं था।
1: यहाँ पे कार्यक्रम को आपने एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया, अंधायुग की बात करते हैं, क्योंकि मॉरिशस के इतिहास के बारे में नाटक को लेकर हम बात करेंगे तो अंधायुग के बात के बारे में बात करना अनिवार्य हो जाता है। कि ये जनता को ये मैं बोलना चाहूंगा कि ये पहला नाटक है जहां पे मॉरिशस के कलाकार अंधायुग जैसे नाटक बड़ा प्रोडक्शन लेकर भारत गए। गुरुजी, उस समय के बारे में, अंधायुग के बारे में बात कीजिए।
0: ऐसा था कि उन्होंने ध्यान में मतलब कि ध्यान में ध्यान बना लिया था कि यहां पर से यहां के कलाकारों को लेकर एक जटिल नाटक प्रस्तुत करेंगे, और वो था महाभारत पर आधारित अंधायुग, डॉक्टर धर्मवीर भारती का लिखा हुआ अंधायुग नाटक था। तो उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने जो कुछ देखा यहाँ पर कलाकारों को देखा, जब कंपटीशन शुरू हो गया था तो वे अपने कलाकार चुनने लग गए थे, कलाकारों को चुनने लगे थे। और उन्होंने, मुझे याद है, त्रियोले से 6 कलाकारों को सेलेक्ट किया था जिसमें मैं

0: क्या बात है।
1: मतलब पंडित उदय नारायण तिवारी जी थे, अस्थानंद सदा सिंह जी थे, मैं था, महेश राम जावन था और छत्रदत्त हीरामन त्रियोले से यहाँ पर, और बाकी जो है साउस के थे, सूर्यदेव सिवरत जो आपके एमबीसी में काम कर चुके थे, सूर्यदेव सिवरत जी थे, और उसमें और एक कलाकार थे, उन्होंने अश्वत्थामा की भूमिका निभाई थी, वो विषय में गणिए के थे।
0: अच्छा, तो लगभग कितने कलाकार लोग गए थे
1: उसमें? 18 कलाकार, हरि नारायण महावीर आपके
0: चाचा जी थे,
1: और 18 कलाकारों के साथ
0: नागपुर में
1: और दिल्ली में हमने वो नाटक प्रस्तुत किया था।
0: चलिए, जनता को ये बताना चाहेंगे कि ये पहली बार के लिए ये क्योंकि मैंने कहा कि कार्यक्रम एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आया है, क्योंकि पहली बार के लिए मॉरिशस से मॉरिशसीय कलाकारों द्वारा एक धर्मवीर भारती द्वारा लिखित ये नाटक
1: अंधायुग
0: उसका मंचन हुआ नागपुर में। और किस अवसर पर? विश्व हिंदी सम्मेलन,
1: प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन
0: वो भी नागपुर में हुआ और उसमें आप लोग गए थे। तो पहली बार के लिए हम, अगर हम इतिहास में जा रहे हैं तो फिर पहली बार के लिए हम देख पा रहे हैं अभी स्मरण में कि हमारे मॉरिशसीय कलाकार नागपुर में है, भारत में। आप लोगों को कैसा लगा?
1: हमारी पहली बात तो ये है कि पहली भारत यात्रा थी हमारी, हमने कभी नहीं सोचा भी नहीं था उस समय कि कभी हम, मतलब कि भारत जाएंगे, हवाई जहाज में चढ़ेंगे, भारत जाएंगे, ये कभी सोचा भी नहीं था, और वो भी नाटक करेंगे वहाँ जाके। तो यहाँ पर आयोजन हुआ विश्व हिंदी सम्मेलन का, हम लोग गए वहाँ पर, लोग दंग रह गए थे, मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, जिस वो कटिंग्स है मेरे पास, अभी भी कटिंग्स है मेरे पास, लोग दंग रह गए थे ये देखकर कि किस तरह के मॉरिशस के कलाकार हिंदी बोलते हैं। अभिनय तो दूर की बात है, हालांकि कुछ कमजोरी हो हुई होगी, लेकिन किस तरह से वो डिलीवर करते हैं संवाद को, ये देखकर दंग रह गए थे। उन्होंने कहा था उस समय वहाँ पर कमलेश्वर जी थे, डॉक्टर भारती थे और कई बहुत नाटककार थे, बहुत नाटक, कुछ नाम मैं भूल गया हूँ, बड़े बड़े नाटककार थे वहाँ पर, उन्होंने नाटक देखने आए थे नागपुर में, और उनका दुर्शब्द भी हुआ था मंच से 2-2 मिनट के लिए। बहुत गर्व की बात थी हमारे लिए वो, विशेषकर दिल्ली में जब हम आए थे महात्मा गांधी मेमोरियल थिएटर में, वहाँ पर हमने नागपुर में हमने खेला था और यहाँ पर दिल्ली में हमने खेला था। दिल्ली में नागपुर, मतलब कि महात्मा गांधी मेमोरियल थिएटर में, मुझे भी एक याद है, जितने बड़े बड़े लेखक थे वहाँ पर पहुँचे थे देखने के लिए नाटक।
0: गुरुजी, ये बात तो उल्लेखनीय है, कहना पड़ेगा ही, क्योंकि यहाँ पे एमबीसी की ओर से बहुत सारे कार्यक्रम हम प्रस्तुत करते हैं, बहुत सारे भारतीय लोग आते हैं, भाग लेते हैं। जब आते हैं मॉरिशस और देखते हैं मॉरिशस किस तरह से हिंदी साहित्य में हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा अपना हिंदी साहित्य है, मॉरिशसीय हिंदी साहित्य, और मॉरिशस के लेखक खुद के लेखक है, और साहित्य के सभी विधाओं में कम से कम लेखक लोग लिख रहे हैं, ये प्रशंसनीय वाली बात है, क्योंकि लोग जब वे लोग आते हैं सोचते हैं कि हाँ यहाँ पे आके हम हिंदी की स्थापित करेंगे, लेकिन जब आते हैं वे लोग गर्व महसूस करते हैं कि हिंदी की स्थापित नहीं करनी है, हिंदी तो फलित फूलित है, फलित फूलित रूप में है, एक पेड़ की तरह है जो फल दे रहा है, और आप जैसे कलाकार है और नए नए उभरते कलाकार भी आ रहे हैं। उसके बाद गुरुजी प्रशिक्षण के बाद नागपुर के बाद फिर आप लोग आए, फिर मोहन महर्षि जी वापस भारत चले गए, फिर नाटक की यात्रा चलती गई।
1: मॉरिशस जब हम लौटे तो हमने सोचा कि जो सम्मान हमें मिला है, जो सम्मान हमें भारत में मिला है इस नाटक के जरिए, तो हम इसे छोड़ नहीं सकते। तो हमने अपना अपना ग्रुप, कुछ लोगों ने बनाया, कुछ लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन मैंने अपना ग्रुप बना लिया। और जब अपना ग्रुप बनाया तो अभिमन्युनाथ जी ने देखा कि ग्रुप बना रहे हो,
0: क्या इसी ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं?
1: हाँ, नटराज आज।
0: नटराज आज, अगर आप रेडियो के जरिए आप हमें सुन रहे हैं तो नटराज आज मतलब नटराज आर्ट्स ग्रुप, पहला आपका लोगों का नाटक बलिदान, ये मॉरिशस से नाटक है, भारतीय नाटक है,
1: मॉरिशस बलिदान दो लोगों ने लिखा था, मैं और मेरे मित्र धन नारायण जीत ने मिलकर हमने इस नाटक को लिखा था, और भारत में 5 स्थानों पर हमने इसकी प्रस्तुति की थी,
0: भारत में। ओके, तो गुरुजी आप कितने नाटकों को लेकर भारत गए?

0: अभी तक मेरे ख्याल चार नाटक करी।
1: अरे वाह, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और अभी तक हमारे नौजवान लोग भाग लेते हैं, अभी तक हमारे नौजवान लोग, हाल में ही बात हो रही थी आदर्श दोहल जी से,
0: हाँ।
1: तो आदर्श दोहल ने कहा कि उन्होंने अपनी टीम को लेकर वे लोग भारत गए
0: हाल ही में,
1: हाल ही में उन लोगों ने अपने नाटक का मंचन किया वहां पे। मतलब नाटक जो है मॉरिशस में फलित फुलित रूप में फल दे रहे हैं और नए नए कलाकार भी आ रहे हैं। ये दूसरा आपका है नटराज आर्ट्स ग्रुप द्वारा ही, और दर्द इतिहास का, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
0: दर्द इतिहास का ये इसकी पृष्ठभूमि है मॉरिशस की, जो भारत से मजदूर आए थे, इंडेंचर लेबरर्स, वे लोग आए थे, उनकी उनके जीवन पर आधारित है यह नाटक, और इसे रामदेव धुरंधर जी ने लिखा है दर्द इतिहास का। इसका भी हमने मतलब कि 5-6 शो मॉरिशस में किए डॉक्टर गोयनका जी की प्रस्तुति।
1: मैं देख रहा हूँ बलिदान नामक कहानी, दर्द का इतिहास नामक कहानी को रूपांतरित करके नाटक में आप लोगों ने प्रस्तुति किया है। तो विषय बलिदान और दर्द का इतिहास, मतलब
0: दोनों पृष्ठभूमि पर है, इंडेंचर लेबर पर है।
1: तो भारतीय मतलब इंडेंचर लेबर से जुड़े हुए काफी विषय के नाटक।
0: हाँ
1: उस समय कहानी ऐसी,
0: कहानी हम अलग अलग कहानियां, मतलब बराबर कहानी तो कहानी तो मतलब कि उनका जीवन तो एक ही जैसा था, मतलब बेतों की मार, दर्द, ये सब था। लेकिन कुछ ऐसी मतलब कि ये जो धुरंधर जी का नाटक था, इन्होंने कुछ गहराई से ली थी, मतलब कि ये जो मजदूरों की कहानी थी, मजदूरों का दर्द था, इसीलिए उनका उन्होंने नाम रखा है दर्द इतिहास का।
1: और उस समय पूरे देश में नाटक के बहुत सारे ग्रुप्स आ चुके थे।
0: हाँ, लगभग, लेकिन फुल लेंथ प्रस्तुत करने के लिए मतलब त्रियोले ही से मैं प्रस्तुत करता था, महेश रामजावन थे, धननारायण जी थे, और वाकवा में अच्छी, अभी अच्छी तरह से काम हो रहा है, सुंदर काम हो रहा है वाकवा, सीतोहल ब्रदर्स वो मिलकर,
1: और उनके पिताजी भी उस समय
0: वे भी थे, तो वे लोग अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पर अभी, और यहाँ पर हो रहा है अभी वाकवा में और त्रियोले में, और कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं हो रहा है इस तरह के काम। और उस तरह से मतलब 52 साल हो गए मुझे इस विधा में, अभी तक नटराज की कृपा से अभी तक करते आ रहे हैं और करते रहेंगे।
1: नटराज की कृपा से नटराज आज अभी तक है,
0: अभी तक है।
1: और कहानी के बारे में आपने, हमने बात की, और ग्रुप्स के बारे में हमने बात की, लेखक के बारे हम जानना चाहेंगे। हाँ, क्योंकि आपने कहा कि पहले के जमाने में भारतीय नाटकों को लेते थे, किस तरह से नाटक लिखने वाले उभर कर आने लगे?
0: तो जब मंत्रालय द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट द्वारा आयोजन हुआ था कंपटीशन का, ड्रामा कंपटीशन का, तो ऐसा हुआ कि सभी लोग दौड़ पड़ते थे, एक ही लाइब्रेरी थी इंडियन हाई कमीशन का, वहीं पर खड़े रहते थे, ढूंढ रहे थे नाटक अपना अपना,
1: सभी लेखक बैठे थे एक ही छत के नीचे,
0: एक ही छत के नीचे ढूंढ रहे थे, उसमें से मैं भी था।
1: अच्छा।
0: तो चूँकि एक दो बार हम भारत जा चुके थे, तो हमने देखा कुछ बड़े नाटककारों के नाटक, जैसे डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल हैं, सुशील कुमार सिंह हैं, ऐसे इस तरह से कुछ नाटककारों के नाटक हम लोग ने चुना और यहाँ पर प्रस्तुत की। और जो भी नाटक लेकर जाते थे हम लोग, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट प्ले, बेस्ट डायरेक्टर, सब कुछ लेकर आते थे वहाँ से। तो मतलब कि चयन जो है बहुत बढ़िया था हमारा, और धीरे धीरे हमने देखा कि अब थोड़ा छोड़ें। महान महर्षि जी आए थे तो उन्होंने ये आदेश देकर यहाँ से निकले थे कि अब लोग भारत के नाटक को छोड़ो, अब तुम लोग, बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ, हर देश की अपनी समस्या होती है। उन्होंने कहा कि कुछ समस्याओं को पकड़िए और उसे विकास कीजिए, उसका विकास कीजिए, डेवलप कीजिए उसे। तो हम लोगों ने क्या, मैंने क्या किया, छोटे छोटे नाटक एक विषय को लेकर प्रस्तुत करता रहा, और आज फुल लेंथ नाटक लिख सकता हूँ अच्छी तरह से, 1.5 घंटे का एक नाटक आसानी से लिख सकता हूँ, जो कि मैंने लिखा है और प्रस्तुत भी किया है, लोगों ने पसंद भी किया है।
1: बहुत ही सुंदर। और जाने से पहले, जैसे आपने कहा कि मोहन महर्षि ने बहुत ही सुंदर संदेश

0: या कि भारतीय नाटक को छोड़ो नहीं बल्कि ज्यादातर हम बल दें हमने हमारे स्थानीय नाटक, क्योंकि समस्याएं काफी है यहाँ पे, उन समस्याओं को नाटक के जरिए मंच पर प्रस्तुत कर सकते हैं। तो गुरुजी का खास प्रश्न के समय हम देख रहे हैं कि समय तो जल्द चल चल जा रहा है, तो क्या पहले के जमाने के नाटक जिस तरह से नाटक मंचन होता, नाटक लेखन नहीं है, नाटक मंचन होता था, समय के साथ उसमें बदलाव आया, लोग नए तरीके से वही कहानी को नए रूप में देखना चाहते थे, या फिर वही पुराने नहीं कहेंगे बल्कि जो जिस तरह से उसका मंचन उसका निर्देशन होता था जिस ढंग से अभी तक चलता है,
1: मतलब आज का नाटक जो है हम लोग, मैंने जब से नाटक करना मतलब सीखा है फुल लेंथ नाटक, हर एक नाटक में मैंने दो नृत्य रखा है, दो कम से कम तीन या दो नृत्य रखता हूँ, ये है मनोरंजन के लिए ताकि लोग देखें और पसंद करें और आए देखें। कुछ लोग नाटक देखकर जाते हैं घर पर तो बताते हैं कि ये था, तो दूसरे शो में अगले शो में वे लोग पहुँच जाते हैं नाटक को देखने के लिए। तो परिवर्तन बहुत आया है, अब समय के साथ नाटक करना चाहिए,
0: ये बात उल्लेखनीय है, हम कहना भी चाहिए, क्योंकि जब आदर्श से बात हुई थी, आदर्श सिद्धोहर, उन्हें जब उनकी भारत यात्रा पूरी हुआ वापस आए, उन्होंने कहा कि भैरितेश हमारे मॉरिशस में नाटक के क्षेत्र में बदलाव आना चाहिए, क्योंकि भारत में जिस तरह से वे लोग जोर पकड़ने लगे, जिस तरह से नाटक का रूप बदलने लगा, वही कहानी को दूसरे ढंग से ये लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, हमको थोड़ा सा परिवर्तन लाना चाहिए ताकि तालमेल बने रहे, नहीं तो हम पीछे ही रह जाएंगे और वे लोग आगे बढ़ते जाए। उनके उनके बात में वो बल था, इसीलिए इस कार्यक्रम के जरिए जो भी नाटककार हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, आप लोग भी इनसे सीख सकते हैं। आप जैसे दिग्गज कलाकार मॉरिशस में अभी तक है तो आपसे भी बातचीत हो सकती है, इतिहास के बारे में हम जान सकते हैं और इतिहास और समकालीन परिस्थिति को परख करके अपने आने वाले भविष्य को हम बदल सकते हैं। गुरु जी यहाँ पे समय भी समाप्त हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ इस कार्यक्रम का दूसरा भाग होना चाहिए क्योंकि पूरा इतिहास समाप्त नहीं हुआ है,
1: 75 तक पहुंचे हैं हम,
0: और आपके आपकी एक पुस्तक भी आई है सिर उठा के जियो, इसके बारे में जरूर बात करेंगे और अन्य पुस्तकों के बारे में जरूर बात करना चाहेंगे, नाटक लेखन के बारे में जरूर बात करना चाहेंगे। तो गुरु जी राजेंद्र सदा सिंह जी आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद,
1: आपको देते हैं धन्यवाद बहुत,
0: और परमात्मा से ये कृपा करते हैं कि आपका स्वास्थ्य हमेशा बने रहे और नाटक क्षेत्र में हमेशा अपना योगदान दे,
1: धन्यवाद।
0: तो दर्शकगण आप लोगों ने इस कार्यक्रम का पूरा लाभ उठाइए, जरूर इस कार्यक्रम का दूसरा भाग की प्रतीक्षा आप लोग कीजिएगा, हमारी ओर से नमस्कार।
2: नाट्य कला

0: Jason Deshan Shiv Desamachar Avsi Ashita. Good afternoon.
1: नमस्कार, संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहली स्थानीय खबरें। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और उनकी पत्नी श्रीमती वीना राम गुलाम ने कल लालमाटी में आयोजित शिव महापुराण की कथा में भाग लिया। इस धार्मिक अनुष्ठान के दौरान भक्तों में शिव भक्ति के महत्व को लेकर आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ाया जा रहा है। ये कथा रविवार तक चलेगी। पिछित रिविया में स्थित बेट ऑनलाइन आउटलेट में हुई लूटपाट मामले की जांच में नया खुलासा हुआ है। पिछित रिविया के सीआईडी और एफआईओ वेस्टर्न की टीम ने इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में जुआ केंद्र का एक कर्मचारी भी शामिल है, जिस पर वारदात में शामिल होने का संदेह है। ये घटना मंगलवार 26 मई की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार चाकू से लैस दो लोग इस बेट ऑनलाइन केंद्र में घुस आए और करीब 2 लाख मॉरिशन रुपए से भरा लिफाफा लेकर फरार हो गए। इस दौरान कैशियर को कोई चोट नहीं पहुंची। जांच के दौरान पुलिस ने केंद्र के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की। शुरुआती जांच में एक कर्मचारी को पैसे कैश बॉक्स में जमा किए बिना जुआ खेलते हुए देखा गया। पुलिस के अनुसार चारों आरोपियों ने इस नकाबपोश लूट और साजिश में अपनी अपनी भूमिका स्वीकार कर ली है। मामले की जांच अभी जारी है।

मॉरिशस में दूरसंचार सेवाएं अब एक नए दौर में प्रवेश कर रही हैं। इक्टा यानी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्राधिकरण के पूरे द्वीप में 3G मोबाइल सेवाओं को चरमबद्ध तरीके से बंद करने की घोषणा की गई है। सरकार द्वारा मंजूर किया गया ये फैसला मोबाइल ऑपरेटरों की मांग के बाद लिया गया है, जिन्होंने अपने नेटवर्क को हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। 3G सेवा को पूरी तरह बंद करने की अंतिम समय सीमा वर्ष 2028 तक तय की गई है। इसका उद्देश्य 4G और 5G नेटवर्क के विस्तार के लिए अधिक स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराना है, ताकि लोगों को तेज और अधिक भरोसेमंद इंटरनेट सेवाएं मिल सकें। हालांकि अधिकांश मॉरिशन पहले से ही आधुनिक स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें कोई खास बदलाव महसूस नहीं होगा, लेकिन पुराने उपकरणों का उपयोग करने वाले लोगों को तैयारी करनी होगी। 3G नेटवर्क बंद होने के बाद केवल 3G पर चलने वाले मोबाइल फोन, कुछ वाहन ट्रैकर्स और अन्य कनेक्टेड डिवाइस हमेशा के लिए काम करना बंद कर देंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजरायली सेना के अनुसार दक्षिण लेबनन में हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाते हुए कई हवाई हमले किए गए। लेबनन के प्रमुख शहरों में से एक टायर से सामने आए वीडियो में धूल से ढके लोग ढही हुई इमारतों के आसपास जमा दिखाई दे रहे हैं। बुधवार कल को इजरायली डिफेंस फोर्स ने लोगों से जहरानी नदी के उत्तर की ओर जाने की अपील की थी, जो इजरायल सीमा से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। IDF ने चेतावनी दी थी कि वह बेहद ताकत के साथ कार्रवाई करेगा। इसराइल और ईरान समर्थित शिया संगठन हिजबुल्ला दोनों ने एक दूसरे पर 17 अप्रैल से लागू युद्ध विराम का उल्लंघन करने के आरोप लगाए हैं। लेबनन की सरकारी समाचार के अनुसार गुरुवार सुबह यानी आज टायर शहर और उसके पूर्वी इलाके में दो बड़े इसराइली हमले हुए। टायर से प्राप्त फुटेज में दिखाई दिया कि रात भर विस्फोट और आग की लपटें वहां पर सुलग रही थी, जो आज सुबह तक जारी रही। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान की धन्यवाद और नमस्कार।

0: सबको के नमस्ते प्रणाम। आज की चर्चा कार्यक्रम में आप सब लोगन के स्वागत पता। जितना जना हमने के देखत होवन सुनत होवन बस ये कार्यक्रम में आप सबके स्वागत बाटे। हर बीफे के दिन होला जब कंज्यूमर अफेयर्स यूनिट के जो अधिकारी आवेलन तो हर जो दुआ बातें कैसे चाहेला जब एगो खरीदारी करत हुआ कौन कौन चीज चाहेला दिमाग में रखे के तुहर जो दुआ बातें तुहर जो हक बातें और खरीदारी जब करत हुआ ओकर बाद भी जोन चीज रहेला जोन जोन तयम रहेला उस सब के बारे में चाहेला जाने के। अभी हमने सब जानी लाजा कि दिमाग के हमने मातृ दिवस फित मामा मनावब सा तो ढेर जना अभी शॉपिंग मॉल्स जात होवन बुटीक जात होवन मागाजा जात होवन खरीदारी करियन मामा खातिर पापा खातिर। तो आज यही पर हमने तनि सुन चर्चा करब उकर बाद में जो वारंटी कौन ची है बाद में एकर बारे में हमने सब जानब जा। ई पर चर्चा करे होला हमने संगे होवन जा हमने के दोनों मेहमान कंज्यूमर अफेयर्स ऑफिसर्स आप हवा श्रीमती जयश्री बसावन सुपोल और श्रीमान रणवीर सिंह मीतू आप दोनों के स्वागत नमस्ते।
1: नमस्ते।
0: हमर जो सबसे पहला प्रश्न है जब हमने कंज्यूमर के बात करी राजा काहे कि हमने सब कंज्यूमर है जब हमने सब खरीदारी सब करी ला सब और अभी जो फित मामा होता है फेस्टिव मूड चलल बाटे तो जब खरीदारी करत है ऐसा कौन चीज चाहेला सोच समझ के खरीदारी करे के।
1: खरीदारी करते समय सबसे पहला चीज चला प्री देखे के। जब जाला सब बुटीक में सुपरमार्केट में मॉल सब तो एगो बिज़े है सब कोई के एगो बिज़े है बिज़े के आधार पर आदमी लोग खरीदारी करे लंग सब।

0: तो खरीदारी समय करते चहला देखे के चीजवा के दाम कैसे बाते और एक के कुछ नहीं जाके जैसे बोलिए इंस्टेंटली किन ले के चहला दो तीन गो मगाजे में जाए के प्रीवा चेके करे के जब देख प्रीवा एगो मगाजे में जस्ती ज्यादा बा हो मगाजे में थोड़ा कमती बा तब अपन बिजे के आधार से अपन खरीदारी करिए जाके कंपेयर करिए देखिए कौन कंडीशन है मगाजवा सकेला प्रीवा थोड़ा बाबा वैसे मौ का कंडीशन ढेर अच्छा नहीं बा तो जी हो मगाजे वहाँ में प्रीवा थोड़ा सन ज़्यादा बा वैसे मौकर ऑफ द सेल सर्विस ओकर दूसरा दूसरा कंडीशन जस्ती ज़्यादा बा तब तू टोल के देखिए कौन कौन खरीदारी में जस्ती फायदा बा
1: ये सच्ची बात बोले हुआ जयश्री जी कि जब खरीदारी हमने करे जात है सर का कि काहे ढेर जना जब खरीदारी शॉपिंग करे जालन सा आगे हमने के मामा ला दादा लगे कौन चीज रहल कौन रहल उ सब में लिखल जात रहल हाँ हमके ई चाहिला हाउ चाहिला अब तो हमने जाएला सा जो चीज खरीदे के बाद किने के बाद वो नहीं दूसर चीज लेके हमने आएला सा तो एगो निमन चीज बोले हुआ कि फ्री जोन बातें हबी जोन बातें जो फेस्टिव सीजन आवेला तो सेल्स लगेला तो ढेर जाना जैसे बोलत हुआ फ्री चाहेला दामवा जोन बातें चाहेला निमन से देखे के कहाँ तोहर सैटिस्फैक्शन बातें कहाँ तोहर फायदा बातें अब हैजा परी जब हमने फ्री के बात करी ला जा तो कबो कबो इहू प्रॉब्लम देख ली हैजा कोनो कोनो फ्री ऑफिशे होला सेल्स बोले जाला डिस्काउंट होगा बातें तब पेमा कर हुआ तो फ्रीवा वो आगे हुए जैसे रहल
0: हाँ इस ये एग्जाम्पल ढेर सुपर मॉशे लाबुची को सब में देखी ला सर जब कोनो एगो फ्री रेयो में आफिशे बातें जब जा ला सर लाकेस पर पे करे तब फ्रीवा जस्ती महंगा बातें ये एगो ऑफेंस हाते
1: अच्छा
0: एगो ऑफेंस है जब ग्राहक लोग आवे लंग सा कंप्लेंट करे हमें लगे तो जब जाए ला सर वेरिफिकेशन वो सब करी ला सर देखी ला सर सच्चे है प्रीवा ज़्यादा बातें जो आफिक्स जैसे बोले सर जो लिखल बा हो जा तो एगो ऑफेंस है तब हमें लोग इंस्पेक्टर लोग जा लंग सा कॉन्ट्रावेंशन दे और ट्रेडर लोग के बोली लांसा बोली रेक्टिफाई करे के इस सब चीज़
1: वार्निंग कुछ और
0: हाँ वार्निंग उस सब होला जब कॉन्ट्रावेंशन हुए तो एगो वार्निंग जैसे है चाहे ला
1: अवॉइड करेंगे जी तो हबी जितना जना हमने के देखा था हुआ सुना था हुआ बहुत बहुत धन्यवाद जे कुछ हो पूछे के बातें हमने के नंबर है 402-84-85-402-80-85 तफरी के अलावा श्रीमान मीतू जी कौन सी चाहेला देखे कौन सी चाहेला जैसे कंसीडरेशन है वे के
2: और जैसे फिर बोला को बीजे कर से आगे तब बीजवा के आधार पर जहाँ से अफे की ने जैसे फिर बोला जो फ्री मोती हो बा किस में फ्री हुआ जैसे महंगा पे कर सा तो मैं कौन सा मारते क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम जा ही ना सर जब बीजे बोली जैसा जो चीज की जब सा हो की ना
1: जी
2: जब हम के बीजे नहीं रहता एक एक गुजाफे की जब सा दस गुजाफे उठा के चला तब कैसे फ्रीवा चाहिए कब सर जब एगो एगो जब ढेर जाफे किन ले लाकेश पास हो तो नहीं जल बस मैम फ्री जो लाकेश में तो याद नहीं रही तो खाद नहीं बोला प्रमोशन ले लिया कुछ होला वो बोला कैसे चाहिए कर अब एगो ऐसे चाहिए कर घर ही गए जैसे देखा तो जैसे पे होल बा तब हम मिला कि सर वैसे वो कंप्लेंट करे तब लॉकेट के दौरान कब जाप सर तब फिर बोल जब जाप सर तब फ्रीवा समझो कर तब सकते बोले भाई ओफेंस नहीं बा अभी तब जीवन के आदमिया के ग्राहकों के बेरा आए के एगो एगो एगो एगो केस के रास लाकू आवे के तब लाकू जैसे देख रहा था फिर अब फ्री के अलावा जैसे बोला कि एगो जाफे प्रमोशन में बा चल देखे कि तू देपा कौन आइटम के अब जब वो खरीदारी करो तो एगो फूड आइटम खान पान के वो लोग एक्सपायरी देखे के आदमी लोग एलर्जिया तेल पहुंचे से जब लोग देखे कि कौन चीज लोग के बीजा बा जब प्रमोशन होला था इस वजह से सेल्स होला सब चीज़ यहाँ जाने के काहे होता
1: जी
2: काहे यहाँ इजाफे हुआ था नहीं वहाँ एगो इजाफे देख बा एक मौसम कर बा उठा के आने का घर अपने से भी कर बा बोला बोला तभी खाते बोला सा एगो बीजे करके जाना सब चीज़ तब मोटे होगा ना तो यहाँ जाने के कैसे को बीजे कर सा हमने जितना पैसा मिला और पे सबसे डिपॉज करे तब हमने के सबसे लाफे जिम्मा जाए तब फ्री के अलावा है भी देखिला सा कौन फौज किना दे सा कौन कौन बाजे कौन चीज़ किना तो सर है मुरली खान पान के जब फिर एक फिर दिन में आता अभी तब ढेर कोई इलाका लोग खुशी अपन माँ बाप कोई एक इलाका इलेक्ट्रोमेना से देख के इस बाबू पूता भी देख के सो टेलीविजन तब चाहना जाने के जब फ्री के अलावा एक इजाफे किने जब मगाजे में तब फ्री वाली लिखा रही तब जे कास्ट ने पे कर रहा था तब उसके साथ डाले डाले के हाँ जब एच एस कैसे बा कितना लेटरी पे करी इसकी पे करी कितना मौसम पे करी

0: सखी पे करे कि नहीं,
1: सखी पे कर कि नहीं, बस की ना लड़का लोग खुश पर माँ बाप की उगा देखे फिर धीमे हाँ इस जमाने बाद इस फिर में देखे नहीं पर कब से कैसे दे तब जैसे देखे अब फोजीवा किनियन सा चलो के फिर से आता पूछ साछ करे के कौन सी है फोजीवा कुछ होला इसकी एगो स्मार्टफोन ओकर एगो बुजुर्ग सखी से भी करे सखी ना से भी करे सब अच्छा स्पीक करके तब किन जला अब गैला प्रॉब्लम हो गया एगो दूसरा खान पान बात के जब एगो को मुझे कि मैं क्या फ्रीवा क्या फ्री डाल जला कंसुमा कंसुमा राइट के एगो एगो पहला पहला राइट था कि राइट इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन जाने ला फ्री जाने ला कौन प्रोजेक्ट की ना तब ओकर आधार पे ओकर डिसीजन ले कि नहीं तब वाला राइट टू चूज तो स्वाजे कर हाँ पहुँचवा है कि नहीं हमके नीज भाईला हमके बीजा पहुँचवा तब कि ना पहुँचवा तब हवे फ्री के अलावा है सब दाफन चाह देखे के ना अजीज का मजा अजीज फ्री देखा तो हमारा लिखा था ऐसे मैं कुल बोला दे तो प्लस चेक करा और तो सेल सर्विस में पूछता हाँ नहीं जो प्लस किन दे ला आपके बोलते नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं बनाई गाँव सब सब देखे के
0: तो अभी बात कर ले जो कंज्यूमर्स राइट्स एक बारे में तनी सुन एलाबोरेट करा
2: कंज्यूमर राइट्स बोलल जला जे जौन जौन चीज ग्राहक लोग के जाने के चाहेला एगो खरीदारी के किने के आगे जैसे है राइट ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एगो फौजी जब किनत हो तब सब इन्फॉर्मेशन ला चाहेला जाने के जैसे बोली रहा एगो फूड आइटम किनत हो अब आपको तो एलर्जी बा जैसे दूध से तो उमे नहीं लिखल रही एलर्जन मिल्क सब चीज तो तू किन लेब अब जाके कौन सो में करब दिक्कत पड़ जाए अब एगो दूसर एग्जाम देवत है जैसे इलेक्ट्रोमिनाजे सब कोई इलेक्ट्रोमिनाजे किने ला इलेक्ट्रोमिनाजे में अब किनबा जैसे एगो फ्रिज दे दू कहते फ्रिज दे बेचाला हमें के मौसम एगो बलीसा नो फ्रॉस्ट और एगो जोन में फ्रॉस्ट जोन में ग्लास अब बहुत आदमी लोग नहीं जाने लंग सा जा लंग सा फ्रिज दे नहीं पूछे लंग सा उबे नहीं सेल्स पर्सन लोग नहीं बतावेला तब एगो फ्रिजदेर जोन ग्लासों करेला लेके चलेला घरे अब घरे आवत होता देखब फ्रिजदेर में ढेर ग्लासों होता अब जाइब मगाजा में एगो कंप्लेंट करब बोलब फ्रिज देवा नहीं अच्छा बा तब आदमिया सेल्स पर्सन बोली नहीं नहीं फ्रिज देवा अच्छा बात है सेमो तू एगो ग्लासों बनाए होला फ्रिजदेर ले ला तो अब नहीं सकत हो सेवी करे ऐसे ढेर ढेर चीज बातें चाहेला पूछे के और लोगों के चाहेला बताए के ये है राइट टू इन्फॉर्मेशन जैसे टेलीविजन किन बात है टेलीविजन अब तक एक हॉप्लाता हुई ला जस्टी फ्राजिल बातें अब उमें एगो गारंटी फिर से बोली ला गारंटी देख बात है बोले रंग सा लेखों पर गारंटी नहीं है तो चाहे ला जाने के अब तू फ्रिज दे किन ले नहीं टेलीविजन किन दे अनला वो बोला हाँ हाँ पाँच साल के गारंटी बा तो पाँच साल के गारंटी कौन चीज पर बा वो चाहे ला जाने के अब अला फ्रिज दे दो तीन तीन दिन बाद देखबा फ्रिज दे में खाक हो गल अब बोलब मंगाजा गईला बोल हाँ पाँच साल के गारंटी बा तब बोली नहीं नहीं गारंटी बा लेको
0: चीज में बा हाँ यही प्रॉब्लम है सच्चे बात बोला था जयश्री जी का कि ढेर जना उन लोग कुछ ना कुछ धरल अभी फ्रिज दे टेलीविजन की बात बोला था वह बोल देख हाँ दुगो बरिस तीन बरिस के गाँवी बात है एक बरिस के बाद ही जो लिखा बात है वो फाटे लगल उ में लाल लिन हो लगल अब जात है जो जहाँ किन ली बोला था देखा है प्रॉब्लम बा अब बोला था नहीं अब परी पे ये करे के तो ये को प्रॉब्लम है जैसे बोला था वह जो कंज्यूमर राइट्स बातें ढेर जना नहीं जाने लन खाली हमने जाए ला सक कि अब जो पापी मिलेला इतना पीती पीती लखल बातें अब के जाए पढ़ी खाली सीए करके हमने चलाए ला सर ये को प्रॉब्लम है
2: हाँ ये को प्रॉब्लम है वही से हमें के हर कोजरी तो कुसम में बोलल जला जब सीए के आगे चाहला लिख खूब निमन से पढ़े के अब एगो बुजुर्ग लोग जाता वो लोग के थोड़ा पीती जैसे बोला थोड़ा लिखल बा नहीं लौकेला तो हम ही बोली ला सर कोथवा के एगो फोटो कॉपी कर लेके उबे अब तक स्मार्टफोन बा फोटो निकाले के फोटो निकाल के अय घरे लड़का लोग के बतैया
0: हाँ।
2: पहरिया

0: या
1: बढ़िया हाँ
0: पहरिया
1: कंजूमर राइट्स बात ही चाहेला वो लोग के जाने के और निमन से बतिया की
2: जैसे बोला कंजूमर राइट्स बा और कंजूमर रिस्पांसिबिलिटी जो बा है राइट बा तब बा रिस्पांसिबिलिटी कुछ बोल देला कि तू हो अपन होमवर्क कर पाछे से आगे बढ़ कि नहीं के देखला रिव्यू सब देखला सब कुछ कुछ में अला तब जब एक बागाज में तब सेल्स पर्सन से पूछे कि उस लावला बोला जहाँ पे इजाफे कि नहीं जातवा वो लोग उनके छात्र को बोले कि कौन सी किना तो कौन सी है कैसे इंस्टॉलेशन करे के कहाँ पर इंस्टॉलेशन करे के उसको यूजर मैनुअल देवेला कैसे चला पूजा से भी करे के अब देखा एगो फ्रिज दे कि लग सब रेंसेमेंट मिल तो गया सबको अब जाके फ्रिज देवा ऑन डिओ रखा तो प्रॉब्लम कहाँ को कंसमाते वा वो तब फ्रीजर चला घर में रखे के ना तो ऑन डिओ के पानी में तो फ्रीजर तब बोली कहा बोली फ्रीजर ऑफ नगल बात चाहे ला फ्रीजर के लापो छाड़ू कने फ्रीजर के लापो तो कनेक्ट है अधे सीएक्वी से छा डिकनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करके बोले मजाला तब करे लंग सा तब घर में हिलावे सब डाले लंग सब प्रॉब्लम हो आपके तब कने फ्रीजर के ओकर ओकर जैसे ओकर फंक्शन हुआ निकाल ला सब जिफिल सब से लल्ला फिर से तब बोले मजाला तब हमें बोइलस आदमी के सब चला देखे के कहां से किना तो इसकी तो घर के को छोटा कुलवा बा से पा एक देखिन जस के लगो जा फेट दी मोटा होला को जा फेट दी मोटा ने होला ना तो प्रॉब्लम हो जाला जैसे फ्रीज दे में कंप्रेसे बा गैस बा ने से बा वी है वे करके प्रॉब्लम हो जाला तो फ्रीज ने से कि नहीं चले तो गैस भी नहीं जस पा गैस लीकेज हो जाए तो कहते हैं वो ये ऐसा आदमी के खरीदार के दौरान पूछे के कौन सी बा लिवरेजो कहाँ कहाँ करे के कहाँ पर हो लिटास हो के आदमी लोग हम बोले हम के को मैं ऐसा लोग
0: कि साइट प्लान सब देवल जाला
2: हां पर नहीं नहीं बोले लंग सा हम कार को काम ही रहल सोफा के इनल गमी लाहो छ लिवरे करके लापो लापो पीती बा तब सोफा दी मोती ने लापो छ करी तब होला वाला आदमी लोग खाए बोले सा अब के ओतु बा है मैं कौन से वहाँ थ्री दवा तो आल कौन से वहाँ छोड़ ला अभी घर में नहीं लगा अब जो वहाँ डिमोटी करके बस उनके पुलिस में ना डिमोटी के हिलाए के तब उनको प्रॉब्लम हो जाता समय हमने जब ऐसे भी नहीं किया रस्ता तो उनको मैं जासो के ऐसा बुझ पाती इसके तहत किला सा कि कहाँ पर ऐसा विन विन सिचुएशन तब प्रॉब्लम के देख से करेगा सा
0: चल हर प्रॉब्लम के सोल्यूशन बातें हमने सके जुड़ हुआ आज की चर्चा कार्यक्रम में और हमने के दोनों मेहमान हवन श्रीमती जयश्री बसावन सुपोल और श्रीमान रणवीर सिंह मीटू कंज्यूमर अफेयर्स ऑफिसर्स जे कुछ पूछे के बाते लाइन खुलल बा 402-85-85 402-8085 एगो छोटा सा मिस कॉल ब्रेक के बाद हमने वापस आयला जा

0: 1819 kilos. This is Radio Mauritius.
1: आज की चर्चा।
2: ई दिवस के हमने सब मनाओ सा मातृ दिवस सा फिट मामा और जब भी फिट मामा अवेला हमनी के माँ के कुछ ना कुछ पीती लायका हो बरका लायका हो अपन माँ के कुछ ना कुछ दी अंजा तब जब भी खरीदारी करत हुआ खास तौर से जो बड़ा लायका हो अंजा अपन माँ खातिर कुनो दिन खाली फिट मामा हुए कि नहीं कोनो लुकाजो रही कोनो इवेंट रही कोनो समय रही कुछ ना कुछ तो हमने खरीदारी कर ले है ऐसा तो कौन चीज चाहेला करे कि निमन खरीदारी जो बातें कैसे चाहेला करे के और कौन कौन दुआ बात हर अत की कौन सो माते है और लालवा कौन ची बोलेला कानून कौन ची बोलेला इस सब पर चर्चा करे खातिर हमने संगे हवन श्रीमती जयश्री बसावन सुपोल और श्रीमान रणबीर सिंह मीतू आप दोनों हवा कंज्यूमर अफेयर्स ऑफिसर्स। तो एगो प्रश्न आवेला है जा परी हमने खरीदारी कर ले है ऐसा जैसे कि बोले हवा जयश्री जी और मीतू जी तो चाहेला हमनियों के आज कंज्यूमर्स हमने के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बा चाहेला जाने कि हमने कौन सी कीमत है ऐसा काहे कीमत है ऐसा हमने के बजट में बा के नए बोलल जाला एगो कहावत बा उतना ही पैर जोन बाती गोर फैलाई बा जितना तोहर चादर बाती तो इस चाहिला जाने के समझे के सोचे के तो जब खरीदारी कर ले ले हुआ काहे कि हमने जब भी खरीदारी करीला एगो कोथा से हमने बाइंड जैसे हमने बोली ला जा बंधल है सा तो जोन सर्विस आपके वांट बाती उहु एगो जोन जोन काम जोन एपोता है तो कानून इमे कौन सी बोलल
3: सब इलेक्ट्रोमिनाजे जैसे बोली इलेक्ट्रोमिनाजे और इलेक्ट्रिकल गुड इलेक्ट्रिकल गुड को चीज जो जितना ला पारे बा इलेक्ट्रिक से चलेला जैसे मिक्रोन राइस कुकर एगो बुलवा

0: television, frigidaire, isap chit electronic goods bolal jala. Isap chit ke ego la loi bate, jeune service après vente gouverné karela.
1: Ji.
0: Ka bolal jala service après vente, c'est-à-dire job magasin beti la, te chala ego minimum garantie deke.
1: Ji.
0: Deki la sa Maurice mein minimum garantie un an par develang sa.
1: Haye ke bolila cha warranty.
0: Warranty.
1: Ji.
0: Warranty. C'est-à-dire ho garanti sab électroménager ke ego garanti bate. Garanti kab kam mein awela jab produit a tout gal ego defectué ho gal jaise bolisa tab jaiba magasin mein réparation khatir. Garanti awela et soit ego réparation kari soit ego refund kari, c'est-à-dire ne sakata banai ta paisa retourner kari soit ego produit
1: Remplacement produit.
0: आके जगह करी कौन प्रॉब्लम बा का होल का नहीं होल अब जैसन छोटा प्रोजी बा जैसे मिक्रोन स्पा एगो बुलवा त सकबा लेके बुलवा वे मगासे में डायरेक्टली जाए के तब हो जा लोग प्रोजवा के लिए सा तब तो के एगो चैनल बो दे रिपेयर्स दे के सेताजे एगो एगो पापिये चैनल दे के कि हां आइला मगासे में अपन बुलवा छोड़ ला तो एगो दात बाती
1: जी
0: अब उ दातवा से तोहर 10 दिन बाती 10 दिन में चाहेला मगाजन के रिपेरेशन कर दे की
1: जी
0: रिपेरेशन हो 10 दिनवा में चला ओकर रिपेरेशन करके तोहर प्रोजी रिटर्न कर दे की अब छोटा छोटा प्रोजी के देखला स स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल बाते बाते मगाजन में तो रिपेयर हुआ 10 दिन में हो जला कबो आगे हुए 5 दिन में 2 दिन में
1: जी
0: प्रॉब्लम कहाँ आवेला जब स्पेयर पार्ट्स नहीं बाते ओके परेला
1: बाहर
0: से मंगाए के तब यू एगो प्रोविजन बाते मगाजन लोग 10 दिन में नहीं रिपेरेशन होल ओके पाफेन अपन पीएस बिना अब तू का करबो तो हर फ्रिजीडियर ता चल गल अब का करबो कहाँ रखबो तो यू में लालवा बोलेला जब 10 दिन दे हो गल तो हर प्रोजी ने रिपेयर होल बा तब मगाजन के चाहेला एगो प्रोजी रिप्लेसमेंट देके जब ले तो हर प्रोजी रिपेयर ने हुई
1: जी
0: तो मगाजन 10 दिन के बाद एगो प्रोजी रिप्लेसमेंट दे जैसे एगो फ्रिजीडियर टूटल तो एगो आके फ्रिजीडियर तो
1: छोड़ दे
0: तब बहुत फ्रिजीडियर वा गल वर्कशॉप में रिपेयर हुई तब अब वो मगाजन देखी कहाँ से पीएस मंगाए सब आए तो हूँ मैं एगो दूसरा लवा कब तक सकबा अपन फ्रिजीडियर मगाजन वे में छोड़ ली कब तक रिप्लेस से सेवी करे के तो हूँ लालवा बोलेला मगाजन के 3 महीना के डेले बाते
1: अच्छा
0: 3 महीना के डेले में चाहेला स्पेयर पार्ट चलाए के रिपेरेशन कर दे के 3 महीना में चला तोहर फ्रिजीडियर तोहर घर में चलाए के
1: और जो नैवे होल तब
0: जब नैवे होल तब मगाजन के स्वा नहीं बा स्वा तोहर प्रोजी जन किनले हुआ जन पैसा में किनले हुआ अमाउंट पर रिटर्न करी स्वा एगो फ्रिजीडियर रिप्लेसमेंट दे रिप्लेसमेंट नहीं से ताजा एगो रिप्लेसमेंट यूनिट बोली रहा सर दे इक्विवेलेंट जन किनले हुआ
1: जी उही दाम वा के
0: उही दाम वा के उही रेंज वा पर कबो देखिला सर उ रेंज वा पर नहीं बाती
1: जी
0: आउट ऑफ स्टॉक होगल बास पाकोशी तो मगाजन प्रपोजे करेला तब तो हर स्वा है मगाजन बोली एगो जस्ती ऊंचा दाम के ऊंचा गाम के फ्रिजे दे अब सिलवा चाहेला थोड़ा
1: जस्ती पे करे
0: तो हर तोहर शुआ बाते जे लेबर एगो ऊंचा दाम के फ्रिजे दे तो हर डिफरेंस शुआ पे कर बस ऊ तो हर शुआ हा ऊ बिया बोल बा नहीं नहीं ले तो ओके
1: मगा पैसा वापस कर दे
0: हाँ पैसा वापस करी
1: अच्छा ये सब चाहे ला ये तो बोला था ऐसा ढेर जाना हमने किने जाए ला सब पर नहीं जाने ला सब हमने के हमने वे के जन दुआ हमने के राइट्स कौन जी हब ता हबी जैसे बोला था वह जब कंप्लेन करे जालन सा देखा हमने हम तोहर लगे आल है कुछ हो किने अब डिफेक्टिव बातें तो हम तोहरे लगे आप अब उन लोग जे नहीं सुना था वन जा अब कहाँ जाब ला पुलिस जाब कहाँ जाब जे नहीं जाना था वन सा कंज्यूमर अफेयर्स यूनिट नहीं जानिए
2: जैसे प्रमेकुजब ग्रासो सा किने

0: ti li stand til til condition ba gaon ti void je la til til condition ba
1: ha ye to problem ho haja pari ala ki dhe jana nai padhe lansa khali CA karke
0: ha jana talwa boli consumer responsibility nirbhar ba consumer ba par consumer huwa pa job gal jab okay papier signé clavata ta dekhi ko pusi admi se ko ti garantie ba ha sa ki admi verbalement bolata c'est moi hai mene ba am ke okay respect pa milal verbalement bota garantie
1: अब कुछ प्रॉब्लम होगा तोहर लगे अली देखा तू बोले रला हाय हाय पहुंचवा हाय हाय पीएस में गाँव ची अब बोला था नहीं
0: जब जाए ना ही ऐसे जैसे बोला था ऐसा उड़ जा रहा कंपनी जहाँ कि जहाँ कंपनी ऑफ तहसील सर्विस देवा था प्लीज वारंटी नहीं होता अब नहीं बार वहाँ पर वो एक बार दस बार 5,000-3,000 कमती बा तब जब हुए कि नहीं आपके से आपके सेल सर्विस चाह देखे कि कहा क्या कहते हैं बस कि पोजू तू नहीं जानवा कब सके को पोजू तू जाए तब कहाँ जाए बता जे वो पोजू में गारंटी नहीं हरी तब मिनिस्टर ने इसकी कुछ करे कहा बस गारंटी नहीं बा सकी दूसरा चीज़ करे गारंटी में कुछ नहीं करे गारंटी कहा लेवल दिला कि बोले ला थ्री देवा को एंगेजमेंट लेवल जे पोजू में कोई प्रॉब्लम हुई तो वो
1: जितना इलेक्ट्रोमिनाजे के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे कि बुलत हुआ आप दोनों चाहे ला अनिवार्य है ओब्लिगेटरी में चाहे ला एगो वारंटी होई के
0: नहीं वारंटी ओब्लिगेटरी नहीं है तब कंपनी ओकर लिमास पोते से करे एगो वारंटी दे वेला अ वारंटी
1: एगो एश्योरेंस नहीं मान
0: अ वारंटी वा देखा चला पापी में लिखा है कि 1 ईयर 2 ईयर कुछ में दे वता वारंटी पूछा पास कि वो चलो जाने जब जाने से किने एगो पोता के तो सब लोग सब पोता का गारंटी वो हां गारंटी बा तो तू पोस के तो पोता में सब में गारंटी बा तो वो कंडीशन ने पहला ना तो प्रॉब्लम कहां होल बस कि ओ तू को रिस्पांसिबिलिटी बा देखे कौन सी बात नहीं जाना तो पूछा कोई से कौन सी गारंटी बा नहीं बा पर फॉर्म मिला को केस आवला तो मेरे साथ लिखा में गारंटी नहीं बा सॉफ्टवेयर अपडेट पोता में गारंटी नहीं है तब वो प्रॉब्लम हो जा रहा तो अदम अपन अपन अपन मन में रहा कपा में हाँ गारंटी सब चीज में ट्रांसपोर्ट पे करके हर सब इंक्लूडेड है पूछे के कुछ फोमियर में जब जा सकने पूछे के और सब चला पापी में रह के जैसे वो फौजी टूट गल तो जब छोड़े तो पापी फौजा कुछ ही बस फिर मुझे वो पोता छोड़ ला प्रॉब्लम होता नहीं चार्ज होता तब पोताबा हुआ और एक दिन तुझे सुनने का तब पोताबा का लिखा फिर बता तब तू छोड़ ला रहता लिखा फिर ना ला तो फिर पापी वाले जरा आज ही चीज कैसे छोड़ ला तब हमने के बाद केस मिलल बा पोतावा हुआ से जाके फेल हो गया अब के हाई हुई के रिस्पॉन्सिबल बेटा हुए चाहे ना पापी वाला जाने के आदमी धेने जाए ना कि जैसे जैसे जब जब जब खरीदार के बगल जब फेट आवे ना आदमी कुछ बोला कि नहीं हाली हाली जी घर लेके चला पहुंचे उन्हें देखी ना कुछ किने आल किन के किचन का घर है क्या बोलते उन्हें देख ला कौन सी बात लाफे आता से बोल संगे गाँव कुछ कुछ करेला और एक जाफिया हबी फेट दे मिया जैसे को पोता किन बात सब सारे घर चलाए ना अभी को माइक्रोवेव किन ला को टेलीविजन तब को पाया चुके चाह लिवरेशन करे कि ना अपन अपन मासी में डाक नहीं जा घरे जे अपन मासी में डाक चला घरे अगर माँ के फिर दिमाग के दो तब जीवांश के हाँ
1: तो है जब एगो प्रश्न आवेला जैसे बोला था वह जब कुछ हो किना था वह एगो मगाजा में वो लोग बोले लंसा आप जन सर्विस लिवरेशन बातें अब वो धरला दो तीन दिन दो हफ्ता लग जाए अब हम तो पैसे है हम के तो पैसे बातें अब हैजा परी कानून कौन सी बोलेला जब हम अपन से भोजवा लेके जाते है और वो जो मगाजवा बोला था दो हफ्ता में मिली हैजा में कौन सी
0: लालवा बोलेला लाला बोला एक्सीड 15 डेज और जब 15 दिन के बाद ने एक्सीड करके लाला बोला कैंजो ने बोलेला कि आज जब किंडर तो काली वैसा हो जाए लाला बोला कैंजो
1: ये डिपेंड करेला मगाजवे में
0: अब मगाजवा बोले ऐसे कहना है प्लानिंग जब बोले लंग सा जे लिवरेशन हाउ रीजन में चल लंग सा करे बोले के जब जैसे देसा मावेला धी लिवरेशन लंग सा रात के सब कहे लंग सा तो तुर प्रोजेक्ट मिले था तो के तो चा चेक करे के जब रात के वाला लिवरेशन करे तो का दिख बा टेलीविजन आगे जा टेलीविजन छोड़ के चल आए तब तूने देख बस वाली कौन फेली बाह कि ने फेली बा तब तो के वो डिलीवरी नोट सीन का हावे तो कि प्रोजेक्ट तो के मिले बा इन गुड कंडीशन तो के छा प्रोजेक्ट वेरीफाई कर लेके आगे तब सीन कर के

0: जे सिने कर ऑल इन गुड तब घर गया तो लिखा टेलीफोन तो कुछ कर बता तो सिने कर देला
1: तो हैजा परी कौन ची होला जब हम नी हम गैली मागाजा सब कुछ अच्छा रहल जो डिलीवरी बॉयज आइलैंड सा अब जो पहुंचवा आए हमार घरे वो में डिफेक्ट बा
0: हाँ तब जे हाई तारा बोली जे हाई पहुंचवा अपन थांसों में सारी गलत घरे ले तब पहुंचवा सीमा में कोई प्रॉब्लम होगा तो मगर मैंने है मैंने ली बस कि उसे अभी डिलीवरी दे हुआ था तो तू लाखों तो के बिजनेस हो जुआ तो चुट तो ले ले चाहिए ला सा तो कहने बोले ला सा लीवरेज़ ला तो नहीं बट कोई प्रॉब्लम हो ही मगर मैं लीवरेज़ के दौरान ट्रांसफर में
1: आने तक हो जुआ
0: ओलो के रिस्पांसिबिलिटी है तो रिस्पांसिबिलिटी नहीं है तू प्रोड्यूअर किन्हें वैसा वो एक डिलीवरी सर्विस दे हुआ था तो कल कौन सा तासे बाग से ये तो कहने बोले सा आदमी लोग के चेके कह रहे को प्रोड्यूअर घरे और लीवरेज़ भर तक आलात के नहीं देखे जैसे को सोफा की नोट नहीं जब कहां पर ओकर गोर में स्वतुल गलो को बूथ सवाल नहीं जब रात के होता किसन बा
1: माने कि हमर दुआ बा बोले के देखा रात के नहीं आया उ लोग बोलियन से देखा हम हौजा परी पासे हुआ था रात के आप रात के 10 बजे 11 बजे तक घरे रह बा ना तो हम आके छोड़ दे हम सकब बोले आज अ कंज्यूमर हम सकब बोले नहीं हमके मन नहीं बा मन बा
0: हां तो अगर आवाज में बूथ पर से आवाज में कर ले सा अपने में कब लिवरेजन में हमनी हेल्प सा जब लिवरेजन नहीं होला
1: जी
0: तब हमने ही ऐसा जब कोनो आवाज़ में कमा सा ट्रेडर और ग्राहक तब उन लोग में आवाज़ में करें लग सा मिनिस्टर ने हेल्प है में तब जो आवाज़ में नहीं होता तब आपके लालवा की हमने आवाज़ देखी ना पागल पागल जिन आवाज़ में हो बा हमें ढेर नहीं सीखा सहेले लालवा कुछ बोली ना लालवा के आधार पे आप सुन ले ऐसा जैसे फिर बोली टेलीविजन जब लगा था तब लिखा फेल हो गल बा पापा हो ला तब गेट फिर दे में आता एगो लड़का एगो फौजी की नेता और कल मार के देख सको बाप के तब रिसीवर के का नाम करी लड़का जो की नेता वो भी पाओं के नाम प्रॉब्लम हो जाला तब एगो फौजी जब डिफेक्टिव हो जाला तब रिसीवर तो के का नाम बा की कंप्लेंट करता तब जब एगो आदमी को एगो एगो ग्राहक एगो फौजी की ना तब घरे घर प्रॉब्लम बा गारंटी को वेयर करेगा तब पफा थ्रीडवा दौड़े के एक्शन लेके
1: जी
0: तो हम इनको एगो कंप्लेंट करेगा जब हमने जब यहाँ इंटरवेंशन करी ला सा तब वो कर केस जाल हाली हाली नेबर से आगे से इंटरवेंशन ने कहा है बस कि बोगा वो लोग के बारे में प्रॉब्लम है जब इंटरवेंशन करी केस बार हमने आधे कुछ तब हमने जब हमने के केस हमें लगा हुई ला तो हमें लालवा पी के ला सा तब जरा देखे तिल हर बा जी 10 दिन हो गल बा ओके वो फौजी ने दिले बा ठीक है उफ़ान सो जाला केस लाखों जाए कहे 10 दिन में लालवा बोले बा एगो फौजी रिप्लेसमेंट देगी चाहेला उन्हें दिला कहे तो उसका की बोले हाँ भाई जो चीज हर चीज होला वो गाँव से नहीं कुछ होला जैसे पोता में एक सॉफ्टवेयर अपडेट होला हम किन के केस में दिला सॉफ्टवेयर अपडेट लिखाल बा वो गाँव से नहीं कुछ होला जैसे एक इलेक्ट्रोमेजर किन एक मिस यूज बोला जरा सकिला जे एक लेजर हिल गल बा जिफिल खा ले बा ऐसा नहीं हिला गाँव से लिखाल बा पापीवा में लिखाल बा पापीवा में बिया सेट बनीमेंट से हर कल आदमी ने पहला ना उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब तालवा फिक बोली जब गारंटी बोली लंग सालों पहुंचा गारंटी ऑनचे प्रोड्यूअर में सब बात तो इधर बंदा फिर जैसे तालवा बोली फ्रिज़िडिया किन बाले सब ऑनडियो रखे ना तो मिस्यूस हो जाला मिस्यूस तक कंस्यूमर है कि वो तो जाला तब एको प्रोड्यूअर बा जहाँ कहाँ रखे के कहाँ पर इंस्टॉल करे के पफा बोली लंग सा जब न्यू न्यू जो प्रोड्यूअर आवा था अभी अभी ढेर अभी सांसी पहुंचा प्लस डस्टी एनवायरमेंट में लग बता प्रॉब्लम हो जाला जब जब दूसरा प्लस में लग बता कोच चलेगा तो अभी लोग है नहीं जाएगा तो और जो अभी एगो फौजी किन्ने बा आज एक्सीडेंट के बाद टूट गल तो ओकर दिमाग में होला एगो फौजी किन्नी अब सेविनेस तक करे तो हम किन्ने छा फौजी अगर दूसर दे
1: जी
0: तो लालू हाई ने बोला ना लाला बोला जिजू देके तीन मनाई देके तब हालात अभी लोग पहुंचा एगो साइकोलॉजिक में लोग बहुत से कहना एगो फौजी किन्ने लग सा तब फौजी टूटल बा टूटल फौजी में घर में रखा तो अरे तूने कब हम चाहे दूसरा दे हम केस मिला हमें तो हम लालवा फेंके लालवा बोला 10 दिन 3 महीना नहीं होला तो दूसरा लेके तो आदमी ने पापा नहीं कौन फल इसलिए के लाला कुछ बोल दिला तब इसके आधार पर आश्चर्य नहीं रहता
1: तो कैसे अवेयरनेस जो सेंसिबिलिटी बाती जो मान कि अवेयरनेस आप लोग कैसे करेला तो हर लोग के रोल जैसे बोला था हुआ जो सर्विस आप इवेंट उस सब आवेला कितना कितना कौन कौन प्रकार के कॉम्प्लेट तो लोग के मिलेगा
0: अवेयरनेस कैसे कही रहा सर अवेयरनेस पूबा महाजू कहते सर पापा जरा सब सवाल संस्था में कोजरी करे लेकोलो में जाएगा सर लेकिन मैं जैसे लाल जिले बा वहाँ पर ही कैसे बचा ऑनलाइन परचेस जैसे बचा आप सर
1: जी
0: दीपाओं कहाँ पर लगा जब आप सर गो सोशल वर्क सेंटर जब जहाँ आप सर गो प्लस जहाँ पर बुजुर्ग बात इस पर कब सर लालवा थे टिकटिक ने मेरे लाभ सर जिले हाल में बोला सर तब जहाँ जहाँ गए हैं सर जितना कोर्स ही कर लें सर आदमी लोग बोल लाम कि हमने के पॉजिटिव फीडबैक बोला सर ढेर चीज़ जान लग सर

0: कैसे बचा कौन से बात है तो उनके धुआ जान जाए खूब मौसम से जब खरीदारी कीनी था को जानकारी लेके जाता
1: फसल हो जाला
0: तब जानी हाँ अब हमके वो हमके झूठ बोलता हमके ठगता तो जान जाए को मौसम नहीं जाए को धुआ था ठगी तो नहीं जानी कहीं कहीं ऐसा कौन सा चला कि स्मौत रहेगी सब चीज छा जाएगी नहीं जाना था पूछो का फामी से काम से कैसे करके चाहेला अभी के जाना एक फौजी से उठाए घर में आ लिया अब तो बोलबा आई वो फौजी की नहीं ली तो लालुआ वो कुवे कहला तो आदमी के और कुआ से कहला सर तो कोई प्रॉब्लम बोलता है सर एक वो चीज़ आफे की ना छोड़ देगा दूसरा की नहीं ला तो लालुआ के कुवे कहता तो वही खाने बोला सर मिनिस्टर के बोबा सौका तो वैसे भैया का सौ सौ मैं ऐसा जो जो मैं टेलीफोन ही कर अपन कॉम्पेट इंस्पेक्टर लोग जाए साइड में एक सोल्यूशन दे देखो दापुर सिचुएशन दापुर केस कैसे सिचुएशन सबसे करें
1: जी तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद हम ये आशा करे थे जा कि जितना चना आप लोगन के सुनत होवन देखत होवन अब निमन से समझ जा कौन ची है जब खरीदारी करे थे वो लोग की दुआ कौन ची है वो लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ची है जब अभी बोल रहे हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग आजकल तो ये तो फैशन हो गल बात है आज नहीं परी जाए के मागाजें उठ के घरे से जाए के बर बैठल बैठल काम हो गल बाती तो ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करल चला एक एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कौन सी है
0: एडवांटेज कुछ है एक फौजी घर बैठे एक वन क्लिक से किना था पे कर था फौजी आवता
1: जी
0: डिसएडवांटेज कुछ है जो फौजी दिखला हुआ नेट पे अपन लिखो में वहाँ पहुँचो हवा ही नहीं रहेगा
1: जी
0: हर को का डिजाम होता है सर मतलब जब वंस तू स्वागत कर ला इंफॉर्मेशन मिला पाही ला तो राइट इंफॉर्मेशन तब चूज कर ला तब किन ला तब पहुँचो तो पाही नहीं हो अब हाई इधर हाई प्रॉब्लम होता एक बार पहले को लालवा नहीं बा अभी लालवा होल नहीं बा अब बनाता लालवा ई कॉमर्स बनाता तो हमें बोली कौन कौन रेगुलेशन डाल के कौन कौन प्रोसीजर चल करके तो अभी लालवा बनल नहीं बा तब जा ही ना सर ऑनलाइन खरीदारी को एक फैशन एक ट्रेंड हो सबको फैसिलिटी दिखा था तो सब फैसिलिटी में एगो प्रॉब्लम रहेगा जैसे कि एगो एग्जाम्पल होता है एगो मागाजे बा फिजिकल एड्रेस बा मोरिस में सब ऑनलाइन सर्विस ऑफर करेगा कल एगो प्रोजेक्ट के ऑनलाइन में पे सब कर देगा तब एगो प्रॉब्लम बोलते सब मागाजों के जाए देखे अब एगो आदमी बेचता जैसे फेसबुक टिकटॉक सब बेचल सर तो लोग रजिस्टर नहीं है
1: नहीं जब सच्चे के बात है फिक्चर हाँ, कैसे बा
0: एक आदमी मिला सा पे कर आगे तब पहुंचवा मिली तो हमने अच्छा बा कौन सा बात है कि ऐसा साबित है सही करे हमने बोल रहा सक जय जब आई डिलीवरीजों करे कैश ऑन डिलीवरी तब पहुंचवा पे कर तो हमने बोला सर तब ढेर को बोला नहीं चाहे ना पे करके तब भोजवा मिली रिजर्व कर तो खातिन तो आए तो भोजवा पागे नहीं होता अब भोजवा आए अब पागे नहीं बात अब कहाँ आदमी खोजे बस अब हम लगे वो कॉम्प्लेंट कर बस तो हमने कहाँ से खोजे आदमी वो कहते वो फिजिकल एड्रेस नहीं बा एगो ट्रेड नेम नहीं बा एगो बिजनेस एड्रेस नहीं बा तब एगो प्रॉब्लम हो चला तब भाई बोला सा जाके देखे कि पुलिस साहब काम ही नहीं बागो कि वो लोग देखे कहाँ पर जुम्मा कहाँ पर किन ले बा
1: तो अभी जन लालवा में बातें कुछ हो बातें ऐसे लिखल गल बातें कोनो प्रावधान बातें कि हाँ जितना जना आजकल तो हमने देखा था ऐसा टिकटॉक पर ढेर चीज बेचल जाता ढेर जना पन जन पहुंची बात लुगा होय हय होय हव होय वो लोग बेचत हवन सर ढेर जना किनीलन सर तो वो लोग अंजिस्ट्रे होलन सर मिनिस्ट्री डने से कुछ होला
2: नहीं अभी जैसे भाजी बोलक लालवा ने बाते एंजिस्ट्रेमा सबके सेलमा लालवा जो लालवा बाते एग्जिस्टों लालवा सब कोमेस के चाहना एगो बीओएन जैसे बोली रहा सर एगो रजिस्ट्रेशन नंबर कंपनीज डिवीजन से चाहना रजिस्टर्ड करके तब लोग के एगो बीओएन नंबर मिलेगा ये आधार पर हम ही अपनी के लालवा अप्लीके कर रहा सर अब ऑनलाइन शॉपिंग ऑनलाइन ट्रेडर्स उन लोग के ये सब चीज नहीं बा तो ढेर चीज हो जला एप्लीकेशन हो जैसे वो लोग तब बेचत हम सर से टैक्स नहीं भरे लंग सर अब लालवा ने सकब सा अप्लीके करे बोलक तो के फौजी दे तने या लिवरे करे तब इमें लालवा ने बाते कुछ कंसोमाते के गो प्रोटेक्शन नहीं बाते हम ही हमेशा बोली रहा सर ऑनलाइन शॉपिंग करे वक्त ध्यान बहुत ध्यान चाहना रखे कि जैसे जब एगो ऑनलाइन शॉपिंग करत हो तो ओकर रिव्यू देख इसकी थ्रेडर हुआ एगो निमन थ्रेडर है उबिया एगो ऑना के है बहुत बहुत कंप्लेंट आवेला मिनिस्टर पर जब वो लोग पेय कर दिले सर वो लोग के फौजी कबो नहीं आवेला और जब टेलीफोने करत हो सर तब ब्लॉक कर दिले
1: तो होगा
2: होता तो अब नहीं कुछ नहीं सकबा करे तब ये सब चीज में बोली रहा सा एगो काफ्रोद हो गल बा हम तोहर से पैसा ले ली अब पैसा लेके भाग गली तो एगो काफ्रोद हो गल बा ये कंज्यूमर अफेयर से ओकर परव्यू पर नहीं आवेला तब ला पुलिस बोली ला पुलिस बगल डायरेक्टर होलंग सर
1: अच्छा
2: ऐसा कंप्लेंट

0: साइबर क्राइम यूनिट और जालंग से अपन कंप्लेंट करी और ये देख हमेशा देखिए जब रजिस्टर्ड ट्रेडर के संगे व्यापार करिए जैसे फिजिकल एड्रेस बोली रहा सर एगो मगाजन इलेक्ट्रॉनिक वे ला प्लूपार मगाजन इलेक्ट्रॉनिक अब ऑनलाइन सर्विस दे
1: रहा
0: तो ये सब मगाजन वन के एगो रजिस्टर्ड एड्रेस बा एगो रजिस्ट्रेशन नंबर बाते तब इस आधार पर लालवा अप्लीके होला
1: जी।
0: और वो देख जब खरीदारी करत हो ऑनलाइन पोजुआ जैसे देख ऑनलाइन प्राइस प्रीवा जस्ती संस्था बा तौजिक मगाजा में जेब तो है प्रीवा जस्ती तो ये सब देखे के चला एगो एडवर्टिजमेंट है जैसे मिसलीडिंग एडवर्टिजमेंट जे ऑनलाइन पर नहीं लिखी एक्सक्लूसिविटी ऑनलाइन के प्री है काहे ऑनलाइन के प्रीवा कबो जस्ती कम रहेला जस्ती ओ लोग के लॉजिस्टिक कमती है तो सके रंग से ऑनलाइन के प्री लोअर करी तौजिक मगाजा में लॉजिस्टिक जस्ती बाते जैसे रेंट बा पे करके अब एगो आदमी लोग काम करता और सब चीज बा तब मगाजा के प्री जस्ती
1: अच्छा ये तो सब जैसे निमन से बोले हुआ चाहेला इस सब के बारे में जाने की। अब जब हमनी जाएला सा खरीदारी करे ढेर जाना बोले लन सा काश हमनी ने सकब सा पे करे माने की फैसिलिटी मिलेला क्रेजी मिलेला एकर पर
0: क्रेजी जैसे हमी के लालवा में दुगो चिप दे क्रेजी बा जैसे बोले सा हायर परचेस और क्रेडिट सेल्स।
1: हायर परचेस कौन सी है?
0: हायर परचेस जब क्रेजी लेबा 30 मा में 30 मा के क्रेजी ई हायर परचेस में आवला ई हमी के लालवा में बा जब तू एगो चीज लेबा 30 मा में त ई लालवा हायर परचेस में आवला त ई में प्रोटेक्शन हो
1: जी।
0: अब देखबा कोनो मगाजन ऑफर करेला 30 मा से जस्ती 36 मा 40 मा
1: जी
0: जब 30 मा जैसे दे पासे हो गल त ई एगो जैसे बोले सा एगो कॉन्ट्रा ह और ग्राहक और ट्रेडर ई लालवा में नहीं बा।
1: अच्छा
0: ई लालवा में नहीं बा जैसे 30 मा दे पासे होल हायर परचेस एक्ट में नहीं बा ई दूसर हाई हो गल।
1: अच्छा
0: एगो दूसर कंडीशन है जे एगो कम से एगो एग्रीमेंट कर ले हवा डायरेक्टली मा मगाजन और कंसोमाते के बीच में
1: जी
0: ई लालवा में नहीं है। अब हायर परचेस जब जाएबा किने तो चाहना पूछे के हायर परचेस में देखिला सा हिडन कॉस्ट। हिडन कॉस्ट कुछ है जैसे ओकर चार्जेस उ सब एडमिनिस्ट्रेटिव फीस पापिये के फीस उ सब लेवे रंग सा तो ये सब आगे चाहना पूछ ले के
1: काहे कि जब कैश में लेवत हुआ ये गोदाम फिक्स हो जाला कुछ है पोता वो हम किने था धरला वो सैक्सा ओपी के हैं धरला एक एग्जाम देवा था लेकिन सैक्सा ओपी। अब ये चीज वो हम क्रेजी में ले तो हाँ गते गते हम पे ये करब अब उम्मीद लेते रहा हुआ था पे ये करते जाते हैं प्रीवा था दिपासे हो गल बातें ये सब में कैसे कुछ लालवा बोली ला
0: यही बोली लालवा चाहे ना जब एगो मगा से हायर परचेस सर्विस ऑफर करेला तो दोनों प्री चाहना डाले के ताजे हाई कास्ट सेल में 500 रुपये पे करब हायर परचेस में लेब तो इतना प्रीवा होल से ताजे हो हायर परचेस प्राइस के डाले के चाहेला सिपा 700 रुपये प्लस चार्जर सिपा 100 रुपये प्लस ओकर एपीआर लैंटेरे चाहना डाले के लैंटेरे जोन गवर्नमेंट फिक्स करेला एपीआर बोली रहा सा वो चाहेला डाले के आजूते करके काल किले करके तब बोलिया आदमियों के हाँ है टेलीफोन वहाँ जब 30 माह क्रेजी में लेबा तो ओकर फी सिपा 1000 रुपये हो जाए हे देखा है हाँ चीज वहाँ चाहेला तो कर पे करके तब 30 माह में से जीविजे करब सर तब मौसालिते तो हर होई सिपा 100 रुपया 200 रुपया तब इस समय फोमाशो वहाँ मिल गल तब तू डिसाइड करिया कौन लावताज बा तू हर एस की कैश ले उबियन क्रेजी में ले तो ये सब चीजें जब मिल जाए तब सकबाई गो निमन डिसीजन करके।
2: जैसे जैसे हायर परचेस बोल जा वो मैं जीरो डिपो से बोला जीरो डिपो होला जी डिपो ने कहला सा क्रेडिट सेल में 50% डिपो करके हायर परचेस में फौजवा तोड़ नहीं होल जब तक नहीं पे कर ला सा
1: जी।
2: जब हायर परचेस कुछ बोल जला हम एगो मगाजे गईली एगो फौजु किनली क्रेजी पर तब हाउ क्रेजी कहां से मगाजे देवेला तो एगो कंपनी फाइनेंशियल के देवेला अब जब हम मगाजे से पहुंचवा के नीला से मैं वो कॉन्टैक्ट कर ला कंपनी फाइनेंशियल वासे।
1: अच्छा
2: वाला अब मगाजे में पहुंचवा के नी अब पहुंचवा टूट गल इस तरह में बचा दी सा तो पहुंचवा ने सेवी करे अब बोला जरा फिट फॉर यूज पहुंचवा ने सेवी करे तब मोशाइटे हम के चला पे करे के
1: जी
2: बोला सा पहुंचवा ने सेवी करते मोशाइटे ने पे कर हर मिसा एगो लिमिशन बोलते हिला जब वो खेजी कॉन्टैक्ट कर ला मगाजों से फौजू किन दूसर को उपाय से ऊ मगाजों के पे कर दिल फौजू से हम कौथा कर ग्राहक कौथा कर और एसिस फिनोसिया से उगा सके देवा कौन था बोते हैं जो उन्हें पे कर हर महीना कंपाइन से गिफ्ट पूछ के कौन मैम है थ्री देवा से फौजुआ किन हुआ तो फौजुआ कह मैं तुट गलवाने से भी कर तो के चाहे ला हाउ मंथली की पेमेंट और सर पे करते रहे कि बस अभी पहुंच के ला जब नहीं होल बात नहीं पे कर कंपाइन से पूछ कर बस बोला सर जे कैसे हाई परचेस डाउन पेमेंट 30 mois, crédit sel, crédit sel, c'est que produit 100 roupies, 50 roupies, c'est dépôt correct. 50% 50 roupies, 50% après payer correct. Hay produit tourne quand même crédit sel, hay purchase produit tourne quand même tourne pas parce que d'après régulation financière, tourne là tu as loan payer quand tu vois, tu as produit tourne. Hay différence entre crédit sel et hay purchase. Moi je sais hay purchase. Alors nous qui cherchons à connaître c'est chala loan leke, c'est que produit voilà 500 roupies किनला तो देखा तो रिपेमेंट हो गया तो 200 भी पे करता डुबले अच्छा पहुंचे के आदमी लोग कौन कौन मुद्दा आई थी अच्छा बल को पे करके लोग चाहे देखे कि इसकी सेकेंड से पे करे लोग के लाभ अच्छा उतना मिला था हर महीना सेकेंड से को पैसा रमास के पे करके उबे लोग के बीजे प्रॉब्लम हो जाए अच्छा कि चला पहुंचे करके आगे किने के नहीं क्या वो फौज की आज खाते वहाँ को एक बच्चा को अलग दिला सा तब आपको प्रॉब्लम हो जाए
1: तो चल आज के हमने के आज के चर्चा कार्यक्रम है जो परिसमाप्त होला तो हर मुझे आप है मीतू जी
2: ऐसे बोलता है हर जैसे फेदिमिया होता है कुप जिमोना होता है आदमी लोग तीन जोक नहीं जैसे कुमार सब हो आम बोल रहा है वहाँ एंटी देखे के चाला प्रोजेक्ट देखे के कुछ चाहता था रिपेमेंट कैपेसिटी देखे के एक स्मार्ट कस्टमर हो जब किने के देखे के जाके उठा के जाना घरे देखे के सबसे ज्यादा गाँव से देखा ऑफ द सेल सर्विस देखा तब किया
1: जय श्री जी
0: किने के आगे चाहे ला देखे के अपन बजट अपन फैमिली नीड्स इसकी प्रोजुआ निश्चय बा किने के अभी अब ये किन कि सकब ताले बाद में किने अपन निमन से बजट करब निमन से खरीदारी करब स्मार्ट कस्टमर बनब तब प्रॉब्लम नहीं हुई और जैब मगा समय तो निमन से रौसैमो लिया सकब जाए तीन चार हला जैब पाफे नए जाके निमन से रौसैमो लेके और ये फ्रेश फ्रेश से मैं खरीदारी नहीं कर
1: तो चला आज की चर्चा कार्यक्रम है जो परिसमाप्त होला जैते जैते हमने के जितना हमने के माता लोग हवन आप सब लोगन के मातृ दिवस की शुभकामनाएं आप दोनों के बहुत बहुत धन्यवाद
0: नमस्ते, नमस्ते।, नमस्ते।, नमस्ते।

0: के ठीक 4 बजे है। सुनते हैं अभी के लिए संक्षिप्त समाचार अशिता जी के साथ। नमस्कार आपको।
1: नमस्कार मनीष, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहली स्थानीय खबरें। बलकलावा के निवासी इलाके के पब्लिक बीच के एक हिस्से को लेकर चिंता जता रहे हैं, जिसे सन 2008 में सार्वजनिक तट की श्रेणी से हटाकर एक होटल के लीज में शामिल किया गया था। ये एक ऐसा मुद्दा है जो एक बार फिर मॉरिशस में समुन्द्र तटों तक सार्वजनिक एक्सेस को लेकर सवाल उठा रहा है। बेलों से रियों बेल के बीच तटों के कई हिस्से हैं जो सार्वजनिक नहीं रहे और जिन्हें निजी परियोजनाओं का हिस्सा बनाया गया है। ये बात जानने योग्य है कि देश के 322 किलोमीटर लंबे समुद्र तट में से आज मात्र 48 किलोमीटर तट आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक है। ऐसे में बीचेस तक जनता की पहुंच का मुद्दा सोच विचार का विषय जरूर बन गया है। पोर्ट लुइस में 3 दिनों तक चलने वाली चर्चाओं का केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र में गिरमिटिया मजदूरों का इतिहास रहा। बुधवार 27 मई 2026 से शुरू हुए इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में इतिहासकार, शोधकर्ता और विभिन्न संस्थागत प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन अप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड द्वारा किया गया है, जिसका उद्देश्य गिरमिटिया प्रणाली से जुड़े ऐतिहासिक धरोहर और उसके संरक्षण व हस्तांतरण पर चर्चा करना है। उद्घाटन समारोह में कई आधिकारिक वक्तव्य दिए गए, जिनमें कला एवं संस्कृति मंत्री का संबोधन भी शामिल रहा। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और उनकी पत्नी श्रीमती वीना राम गुलाम ने कल लालमाटी में आयोजित

0: महापुराण की कथा में भाग लिया। इस धार्मिक अनुष्ठान के दौरान भक्तों में शिव भक्ति के महत्व को लेकर आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ाया जा रहा है। ये कथा रविवार तक चलेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मई के अंत में पश्चिमी यूरोप, सऊदी अरब और उत्तरी भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप देखा जा रहा है। खासतौर पर मक्का में हज यात्रा की शुरुआत के बीच बढ़ती गर्मी लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल रही है। अत्यधिक तापमान के कारण मानवीय शरीर की तापमान नियंत्रित करने की प्राकृतिक क्षमता प्रभावित हो रही है। इसके चलते लोगों को कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और समय से पहले मौत के मामलों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार लगातार बढ़ती हीट वेव इंसानी शरीर पर भारी दबाव डाल रही है, जिससे बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों के लिए खतरा बढ़ रहा है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला, साथ रही सुन पाएगी शुभ समाचार। शुभ समाचार सुनिए। एवेन्यू ए आई फिलाओ पाई में 91 साल की 91 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती विलम्बाली इलम्मा जिन्हें ममाम्बा के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ कल दिन के 1 बजे उनके घर पाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। थ्रुडरुस रोड ब्रह्मस्थान में 44 साल के 44 ईयर्स ओल्ड के श्री महेंद्र सुब्रन जिन्हें अनूप के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल 2:30 बजे उनके पिता लक्ष्मी प्रसाद सुब्रन के घर ब्रह्मस्थान से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 2:30 PM। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: शाम के 4:04 हो रहे हैं, आप सुन रहे और एम्प्री रेडियो मनोरंजन।
2: कंटिन्यूअस म्यूजिक एम्प्री।
3: दिल से मिले दिल।
1: Ladies and gentlemen, guys and girls, dear gents, आप सभी को जय प्रताप सिंह सितालू का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। Very warm welcome to all of you on the waves of RM Free Radio मनोरंजन MBC का म्यूजिकल एंटरटेनिंग चैनल है ये। और शाम के 4:05 हुए अभी से लेकर शाम के 5 बजे तक कुछ रोमांटिक तराने दिल से मेरे दिल प्रोग्राम में। और बेशक कहते हैं कि जहाँ पर गीत है, संगीत है, वहाँ पर प्यार भी है, मोहब्बत भी है। और मोहब्बत तो है ही, हमारे और आपके बीच में जो मोहब्बत है उसका क्या कहना। ओए होए। और पहला तराना फिल्म का नाम है कल की आवाज़। किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दे, क्या बात है। चलिए एक साथ सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।

हम तो बस तेरे हैं और तेरे रहेंगे सदा हम तो बस तेरे हैं और तेरे रहेंगे सदा तुम बार बार मेरे इश्क पर शक करते हो तुम बार बार मेरे इश्क पे शक करते हो पर हम दिल से तुम्हें अपना मानते हैं तुम्हें अपना खुदा मानते हैं हम तेरे हैं तेरे रहेंगे सदा हम बस तेरे हैं तेरे रहेंगे सदा

हम उनसे बहुत प्यार तो करते हैं पर प्यार का इजहार करने से डरते हैं हम उनसे प्यार तो बहुत करते हैं परंतु प्यार का इजहार करने से डरते हैं कहीं वो मना ना कर दे कहीं उसके दिल में कोई और तो नहीं तो हमारा दिल का क्या होगा अगर उसके दिल में कोई है इतना प्यार करते हैं हम उनसे कि उसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं इतना प्यार हम करते हैं उनसे

अब जरा और एक सिचुएशन देखते हैं कि यहाँ पर बाहों के दरमियान दो प्यार करने वाले मिल रहे और प्यारी प्यारी बातें की जा रही है, दिल की बातें, मोहब्बत की बातें, इश्क की बातें। हाय काश हर कोई रोज इश्क मोहब्बत की बातें किया करता तो जिंदगी कितनी खूबसूरत, कितनी मजेदार होती। ये टेंशन वेंशन ना होता, केवल जिंदगी में प्यार मोहब्बत होती।

बाहों के दरमियां दो प्यार करने वाले मिल रहे हैं परंतु लड़का बहुत ही धीट है किसी की बात नहीं मानता दिल है कि मानता ही नहीं वो केवल अपनी मनमानी करता है लड़की कहती है कि अब तो मुझे जाने दो कितने समय से तेरे साथ हूं पर लड़का कहता है और थोड़ा सा ठहर जाओ कि मैं तेरा दीदार करूं तुम्हें प्यार करूं लड़की कहती है नहीं मुझे जाना है पर इस दिल का क्या करे दोस्तों ये दिल तो मानता ही नहीं अब लड़की क्या करे लड़की घर जाए या लड़के के साथ ही रह जाए आप बताइएगा हमें आमिर खान और पूजा भट्ट पर पिक्चराइज जबरदस्त मूवी दिल है कि मानता नहीं

और दिल नहीं मानता है, दिल तो बस जिस पर आता है वो आ ही जाता है। और कभी-कभी आशिकी में आशिक मजबूर भी हो जाते हैं, हालात कुछ ऐसे कठिन होते हैं कि आशिक के पास कोई दूसरा रास्ता होता ही नहीं। पर जो लोग प्यार करते हैं, इश्क करते हैं, उन्हें पता है कि प्यार में अगर मजा है तो प्यार में दर्द भी है, प्यार में गम भी है।

ये मोहब्बत भी ना पता नहीं कब हो जाती है और पता ही नहीं चलता कि मोहब्बत हो गई जब दिल का करार खो जाता है रातों की नींद उड़ जाती है और बार बार उसी का चेहरा आपको नजर आता है तो आपको जान जाना चाहिए कि आपको उनसे मोहब्बत हो गई है हाय इश्क मोहब्बत की बातें ये तो प्यार करने वाले ही जाने हमें क्या पता ये मोहब्बत क्या चीज़ है

0: संजना, संजना।
1: I'm sorry, मैंने आपको पहचाना नहीं।
2: तेरे लबों पे इनकार है, मेरे लबों पे इकरार है। हाँ यही तो है सब निशानियां, हाँ इसी का नाम।

प्यार की बड़ी बड़ी बातें सभी लोग करते हैं, पर प्यार जब दीवाने का समय आता है तो बीच रास्ते में छोड़कर चले जाते हैं और अपने आप को आशिक कहलाते हैं, दीवाने कहलाते हैं। दीवाने अगर बनना हो तो रोमियो जूलियट की तरह बनिए, दीवाना अगर बनना हो तो रोमियो जूलियट की तरह बनिए, शाहजहां और मुमताज़ की तरह बनिए। तब हम जाने कि हाँ आप किससे प्यार करते हैं। ये प्यार की बड़ी बड़ी बातें हैं, प्यार में कसमें वादे फिर अचानक बीच राह में छोड़ देना, क्या ये मोहब्बत है, क्या ये इश्क है। So ladies and gentlemen, guys and girls, dear audience, रोमांटिक गीतों की महफिल दिल से मेरा दिल यहीं पर समाप्त होने जा रहा है। शाम के 4 बजे से अभी तक आपने हमारा साथ दिया। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी ऑन रेडियो मनोरंजन एंड फॉर वॉचिंग मी ऑन टिकटॉक पेज ऑफ रेडियो मनोरंजन। 5 बजे आप सुनेंगे अगला प्रोग्राम जानतु संस्कृतम, और हमारी आपकी मुलाकात होगी सैटरडे मॉर्निंग को सुबह के 6 से 9 बजे रेडियो मॉरिशस AM2 पर। तब तक हमें दीजिए इजाज़त, और जय प्रताप सिंह की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस, बाय बाय, टेक केयर। सुनते रहिए प्यार से और एम फ्री MBC रेडियो मनोरंजन।

0: नमो नमः सर्वेभ्यः।
1: जानातु संस्कृतम्, संस्कृत को जानिए साप्ताहिक कार्यक्रम में एक बार फिर कीर्ति और सुरभि की ओर से आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। इसी तरह हमारा साथ देते रहिए और हम प्रति सप्ताह एक नए एपिसोड के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। तो आइए सत्र का प्रारंभ प्रार्थना से करें।
2: ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु

0: अस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति।
1: श्रोताओं, पिछले एपिसोड्स में हमने वर्तमान काल में वाक्यों को पढ़ा, आइए अब उन्हीं वाक्यों को भविष्यत काल में परिवर्तित करके सीखें। हमें ध्यान से सुनिए और हमारे बाद दोहराइए। सह गच्छति, सह गमिष्यति।
0: सह गच्छति, सह गमिष्यति। सह गच्छति, वह जाता है अथवा जा रहा है। सह गमिष्यति, वह जाएगा।
1: सा गच्छति, सा गमिष्यति।
0: सा गच्छति, सा गमिष्यति। सा गच्छति, वह जाती है अथवा जा रही है। सा गमिष्यति, वह जाएगी।
1: त्वं गच्छसि, त्वं गमिष्यसि।
0: त्वं गच्छसि, त्वं गमिष्यसि। त्वं गच्छसि, तुम जाते हो अथवा जा रहे हो। त्वं गमिष्यसि, तुम जाओगे।
1: अहम् गच्छामि, अहम् गमिष्यामि।
0: अहम् गच्छामि, अहम् गमिष्यामि। अहम् गच्छामि, मैं जाता हूँ अथवा जा रहा हूँ। मैं जाती हूँ अथवा जा रही हूँ। अहम् गमिष्यामि, मैं जाऊंगा अथवा मैं जाऊंगी।
1: भवान गच्छति, भवान गमिष्यति।
0: भवान गच्छति, भवान गमिष्यति। भवान गच्छति, आप जाते हैं अथवा जा रहे हैं। भवान गमिष्यति, आप जाएंगे।
1: भवती गच्छति, भवती गमिष्यति।
0: भवती गच्छति, भवती गमिष्यति। भवती गच्छति, आप जाती हैं अथवा जा रही हैं। भवती गमिष्यति, आप जाएंगी।
1: एक बार पुनः संस्कृत वाक्यों को आपके लिए दोहरा रहे हैं, हमारे साथ बोलने का प्रयास कीजिए। सह गच्छति, सह गमिष्यति। सा गच्छति, सा गमिष्यति। त्वं गच्छसि, त्वं गमिष्यसि। अहम् गच्छामि, अहम् गमिष्यामि। भवान् गच्छति, भवान् गमिष्यति। भवती गच्छति, भवती गमिष्यति। इसी क्रम में आइए अन्य क्रियाओं को भी सीखें।
0: सह आगच्छति, सह आगमिष्यति। सा आगच्छति, सा आगमिष्यति। त्वं आ

0: सा खेलिष्यति त्वं खेलसि त्वं खेलिष्यसि अहं खेलामि अहं खेलिष्यामि भवान् खेलति भवान् खेलिष्यति भवती खेलति भवती खेलिष्यति।
1: श्रोताओं, इसी प्रकार आप अपना अभ्यास करते रहें। आइए अब दिनों के नामों पर आधारित एक गीत का आनंद उठाएं।

0: प्रिय श्रोताओं, पिछली बार हमने घड़ी में 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे इत्यादि को संस्कृत में कैसे कहते हैं, इनकी जानकारी प्राप्त की। चलिए अब इनके साथ साथ यह भी जानें कि सवा, साढ़े और पौने को कैसे कहते हैं। तो ध्यान से सुनिए और दोहराने का प्रयास कीजिए। एकवादनम,
1: एकवादनम, 1 बजे, 1 o'clock।
0: सपाद एकवादनम,
1: सपाद एकवादनम, 1:15, 1:15, 1:15।
0: सार्ध एकवादनम,
1: सार्ध एकवादनम, 1:30 बजे, यानी 1:30 या 1:30।
0: पादोन द्विवादनम,
1: पादोन द्विवादनम, 1:45 बजे, 1:45 और 1:45।
0: द्विवादनम,
1: द्विवादनम, 2 बजे, 2 o'clock।
0: सपाद द्विवादनम,
1: सपाद द्विवादनम, 2:15, 2:15, 2:15।
0: सार्ध द्विवादनम,
1: सार्ध द्विवादनम, 2:30 बजे, यानी 2:30, 2:30।
0: पादोन त्रिवादनम,
1: पादोन त्रिवादनम, 3:45,

0: सपाद नववादनम्
1: सपाद नववादनम् सवा नौ बजे 9:15 9:15
0: सार्ध नववादनम्
1: सार्ध नववादनम् साढ़े नौ बजे 9:30 9:30
0: पादोन दशवादनम्
1: पादोन दशवादनम् पौने दस बजे 9:45 9:45
0: दशवादनम्
1: दशवादनम् दस बजे 10:00
0: सपाद दशवादनम्
1: सपाद दशवादनम् सवा दस बजे 10:15 9:15
0: सार्ध दशवादनम्
1: सार्ध दशवादनम् साढ़े दस बजे 10:30 9:30
0: पादोन एकादश वादनम्
1: पादोन एकादश वादनम् पौने ग्यारह बजे 10:45 9:45
0: एकादश वादनम्
1: एकादश वादनम् ग्यारह बजे 11:00
0: सपाद एकादश वादनम्
1: सपाद एकादश वादनम् सवा ग्यारह बजे 11:15 9:15
0: सार्ध एकादश वादनम्
1: सार्ध एकादश वादनम् साढ़े ग्यारह बजे 11:30 9:30
0: पादोन द्वादश वादनम्
1: पादोन द्वादश वादनम् पौने बारह बजे 11:45 9:45
0: द्वादश वादनम्
1: द्वादश वादनम् बारह बजे 12:00
0: सपाद द्वादश वादनम्
1: सपाद द्वादश वादनम् सवा बारह बजे 12:15 9:15
0: सार्ध द्वादश वादनम्
1: सार्ध द्वादश वादनम् साढ़े बारह बजे 12:30 9:30
0: पादोन एकवादनम्
1: पादोन एकवादनम् पौने एक बजे 12:45 9:45
2: तो श्रोताओ अब आप जब भी घड़ी में समय देखिएगा तो उसे संस्कृत में याद करने का प्रयास कीजिएगा।

0: द्रुपदपुत्रेण व्यूर्हां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता
1: तव शिष्येण धीमता।
2: अब एक पूरी पंक्ति को सुनिए फिर दोहराइए।

0: द्रौपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता।
1: व्योर्हां द्रौपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता।
2: इस बार पूरे श्लोक को सुनने के बाद दोहराइए।
0: पश्येताम् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीम् चमूम्। व्यूढ़ा

0: तव शिष्येण धीमता।
1: प्रस्तुत श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहते हैं, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र दृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खरी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। श्रोताओं, यहाँ पर हमारा आज का सत्र समाप्त होता है, तो आइए प्रार्थना करें।
2: सर्वे भवन्तु सुखिनः।

0: श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। राम रसधारा के सभी श्रोता भाई बहनों को भाई संजय की ओर से जय सिया राम, जय जय हनुमान। आप सबों को रेडियो मनोरंजन के लहरों पर हार्दिक अभिवादन है। राम रसधारा के जरिए हम खासकर नौजवानों को श्री राम जी और श्री हनुमान जी के आदर्शों पर उतरने की और चलने की प्रेरणा देते हैं। आज हमारे स्टूडियो में कात्रकुको के कैलाश नाथ मंदिर के लगभग 15 होनहार नौजवान और नवयुवतियां उपस्थित हैं और जिन्होंने अभी हाल में आयोजित नेशनल हनुमान चालीसा चैंटिंग कंपटीशन में भाग लिया था। उनके साथ उनकी बहन जी और माता पिता उपस्थित हैं। आप सबों को तहे दिल से हम स्वागत करते हैं और बधाई। आज के इस रामायण सत्संग का श्री गणेश करते हैं श्री गणेश मंत्र के माध्यम से श्री कैलाश नाथ के बच्चों के साथ। जय सियाराम,
1: जय सियाराम।

0: जय सियाराम।
1: जय सियाराम।
0: आरंभ मंत्र के पश्चात श्री कैलाशनाथ मंदिर के बच्चों और नौजवानों के मुखारविंद से सुनते हैं श्री हनुमान स्तुति और उसके पश्चात श्री हनुमान चालीसा। जय सियाराम।
1: जय सियाराम।

0: जय सियाराम।
1: जय सियाराम।
0: चलिए अब मिलते हैं श्री कैलाशनाथ मंदिर की अवनि बितारा से, जो सलेखा तिलक एसएसएस की छात्रा है। जय सियाराम अवनि जी।
2: जय सियाराम।
0: सो कैलाशनाथ, श्री कैलाशनाथ मंदिर के पूजन में किस तरह से आप सभी बच्चे किस तरह से भाग लेते हैं, कौन कौन सी पूजा वहाँ पर की जाती है, आप बताएं हमें।
2: नमस्कार सभी श्रोताओं को। हम बच्चे कात्रकोको कैलाशनाथ मंदिर से आप सभी को प्रणाम करते हैं। हमारे मंदिर में हर सोमवार को भक्ति और श्रद्धा के साथ भगवान शिव का शिव अभिषेक किया जाता है। हर महीने हम मासिक शिवरात्रि भी मनाते हैं, जहां भजन, पूजा और प्रार्थना के माध्यम से भक्तों को आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। इसके अलावा श्री कृष्ण जन्माष्टमी और नवरात्रि के पवित्र अवसर पर बच्चों के लिए नाटक और नृत्य का भी आयोजन किया जाता है। इससे बच्चों को हमारी संस्कृति और धार्मिक परंपराओं से जुड़ने का अवसर मिलता है। हम MBC और राम रसधारा का हृदय से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें श्री राम, माता सीता और श्री हनुमान जी के पवित्र नाम का जाप करने का सुंदर अवसर दिया। आप सभी को हमारे इन धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में हार्दिक आमंत्रण। जय सियाराम।
1: जय सियाराम।
0: जय सियाराम। बहुत अच्छा। सो अवनि जी, आपके साथ इतने सारे बच्चे आए हैं, हम चाहेंगे कि आप सबों का परिचय हमें दें, तो यहाँ से शुरू करते हैं।
2: हेशा किसुंदयाल।
0: हेशा, जय सियाराम।
2: विदुषी मधु।
0: विदुषी जी, जय सियाराम।
3: जय सियाराम गुरु जी।
2: स्नेहा बितारा।
0: स्नेहा, जय सियाराम।
4: जय सियाराम गुरु जी।
2: रोनिश सिचन।
0: रोनिश, जय सियाराम।
5: जय सियाराम गुरु जी।
2: विनीत किसुंदयाल।
6: जय।
0: यनुष्टि।
6: जय सियाराम गुरु जी।
0: जय सियाराम।
2: यनुष्टि दादूलाल।
0: यनुष्टि दादूलाल, जय सियाराम।
7: जय सियाराम गुरुजी।
2: आदित्य मनोगत।
0: आदित्य, जय सियाराम।
8: जय सियाराम गुरुजी।
0: और जो सबसे बड़ा है यहाँ पर,
2: आयांश मनोगत।
0: आयांश, आयांश, जय सियाराम।
9: जय सियाराम।
0: बहुत अच्छा। सो हाँ, और जो ऊपर में बैठा है, जो तबला बजा रहे हैं, उनका नाम क्या है?
2: नक्श दादूलाल।
0: नक्श, जय सियाराम।
10: जय सियाराम गुरु जी।
0: जय सियाराम। हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आप इतने छोटे बच्चे और नौजवान लोग मिलकर श्री राम जी का नाम ले रहे हैं, हनुमान चालीसा गा रहे हैं और रामायण पाठ भी कर रहे हैं। आप सबको बधाई, और आपके माता पिता जो यहाँ पर आए हैं उनको भी बधाई, और ऐसे ही बच्चों को प्रोत्साहित करें, जिससे कि वे भी राम जी और हनुमान जी के पद चिन्हों पर चलने की प्रेरणा मिले। सो अब की बार आप हमें, आप सभी लोग मिलकर हमें एक भजन सुनाने वाले हैं। जय सियाराम।
1: जय सियाराम।

0: सियावर रामचंद्र भगवान की
1: जय।
0: कैलाश नाथ मंदिर के छात्रों की
1: जय।
0: सदैव यार सजनों, बहुत आनंद आज हमें प्राप्त हो रहा है इन बच्चों के साथ, इन बच्चों को सुनते हुए किस उमंग के साथ, किस जोश के साथ यहाँ पर गा रहे हैं। सो इसी के साथ ही आज का हमारा राम रस धारा प्रोग्राम यहाँ पर समाप्त होने को चला। ये सत्संग यहाँ पर समाप्त होता है, लेकिन हम अन्य बच्चों से, अन्य मंदिरों से मांग करेंगे, अगर वे चाहते हैं कि यहाँ पर आकर श्री राम जी का नाम ले, अगर आप चाहते हैं कि हनुमान चालीसा यहाँ पर आकर आकर गाएं, तो आपसे भी अनुरोध है, आपसे निवेदन है कि आप हमसे संपर्क रखें। हमारा प्रोग्राम है राम रस धारा, ये प्रोग्राम चलता है हर गुरुवार की शाम को रेडियो मनोरंजन के लहरों पर 5:30 से लेकर शाम के 6 बजे तक। बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए ये प्रोग्राम खासतौर पर चलता है, जिससे कि हम उनको प्रोत्साहित कर सकें, उनको प्रेरणा दे सकें कि राम जी के पद चिन्हों पर चलने की उन्हें शक्ति मिले। सो चलते चलते यहाँ पर उपस्थित कैलाशनाथ मंदिर के प्रधान जी को बहुत कोटि कोटि धन्यवाद, वहाँ पर कार्यरत बहन जी को भी कोटि कोटि धन्यवाद, और स्टूडियो में उपस्थित माता पिताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों को बधाई, जय सियाराम,
1: जय सियाराम,
0: जय जय हनुमान,
1: जय जय हनुमान।
0: सो अंत में शांति पाठ।

0: सियावर रामचंद्र भगवान की
1: जय।
0: वनसुत हनुमान की
1: जय।
0: उमापति शिव शंकर भोलेनाथ की
1: जय।
0: जय सियाराम,
1: जय सियाराम,
0: जय जय हनुमान,
1: जय जय।

0: गुरुवार 28 मई के सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। देश के 322 किलोमीटर लंबे समुद्र तट में से आज मात्र 48 किलोमीटर तट आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक है। ऐसे में बीचेस तक जनता की पहुंच का मुद्दा सोच समझ का विषय बन गया है। बालाकलावा के निवासी भी इलाके के पब्लिक बीच के एक हिस्से को लेकर चिंता जता रही है, जिससे सन 2008 में सार्वजनिक तट की श्रेणी से हटा एक होटल के लीज में शामिल किया गया था। 10 जिलहिजा की तारीख को आज मुसलमान कौम के परिवार ईद उल अदा मना रहे हैं। ये रोज हज़रत इब्राहिम की सुन्नत के हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल है। सुबह नमाज ईद के बाद बेशतर मुसलमान सुन्नत इब्राहिम अदा करते हैं। युगांडा ने सीमावर्ती क्षेत्रों में इबोला महामारी के तीव्र फैलाव को देखते हुए कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के साथ अपनी सीमाएं अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। सबसे पहले स्थानीय खबरें। बालाकलावा के निवासी इलाके के पब्लिक बीच के एक हिस्से को लेकर चिंता जता रही हैं, जिसे सन 2008 में सार्वजनिक तट की श्रेणी से हटाकर एक होटल के लीज में शामिल किया गया था। ये एक ऐसा मुद्दा है जो एक बार फिर मॉरिशस में समुद्र तटों तक सार्वजनिक एक्सेस को लेकर सवाल उठा रहा है। बेलोम्ब से रियोंबेल के बीच तटों के कई हिस्से हैं जो सार्वजनिक नहीं रहे और जिन्हें निजी परियोजनाओं का हिस्सा बनाया गया है। ये बात जानने योग्य है कि देश के 322 किलोमीटर लंबे समुद्र तट में से आज मात्र 48 किलोमीटर तट आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक है। ऐसे में बीचेस तक जनता की पहुंच का मुद्दा सोच विचार का विषय जरूर बन गया है। इस मुद्दे पर हम पुनः आएंगे। फिलहाल खबरों को आगे बढ़ाते हैं। इस हफ्ते देश के पांचों शहरों के नए मेयर और उप मेयरों ने कार्यभार संभाला। प्रशासनिक बदलावों के साथ शहर के निवासी 22 टीमों से क्या उम्मीद रखते हैं और नगर पालिकाओं के स्तर पर आम जनजीवन में सुधार लाने के लिए कैसे कदम उठाए जाने चाहिए, इस पर हमारी सहयोगी अंजू ने कुछ लोगों से बात की। विवरण पूजा सुकालू का है।
1: कैटोबोन फुटपाथ पर इतने बड़े गद्दे कि मानो एलिस इन वंडरलैंड यानी नाली जैसी दुनिया में उतर रहे हो। कूड़ेदान ऐसे गायब है जैसे उनका अस्तित्व ही ना हो। नहीं, ये शहर जिसे हम विल दे फ्लेयर मानते हैं, फूल वाली महक तो बिल्कुल ही नहीं है यहाँ।
2: कार्बोनिंग घाटे मिन मालंग मालप्रोप कदु पासे लेगा पेना पेना लीजन जिडो कार्बोन
3: प्रॉब्लम से प्लस पार्किंग ए प्लस ला पुबेल सा ए एन प्लस चेमेट

0: trop serré.
1: बोबा से रोज हिल, यहाँ तो कचरा ज्यादा दिखता है, कूड़ेदान कम। हालांकि पिछले एक साल में प्लासमोरियो के आसपास लगभग 4,60,000 रुपए की लागत से सौंदर्य वाला कार्य चलाया गया है, लेकिन निवासी आज भी विकास कार्य के इंतजार में है।
2: Des poteaux qu'on était là, qu'on a besoin de plastique, qu'on a besoin d'un tas d'affaires au chemin.
3: Vous allez un peu plus, moi, un peu. L'hygiène, un peu nettoyer un peu plus partout.
1: Vakwa ka swaroop pehle ki tarah akarshak nahi raha. Manu yahan Michael Jackson ke Thriller namak clip ka set ban sakta tha.
4: Comme on dit, c'était un avènement, mais vraiment, c'est mort.
1: यहाँ कैजिनो, दूसरी बुनियादी सुविधाओं और मनोरंजन स्थलों से कहीं तेजी से विकसित हुए हैं।
5: Loisirs. Plutôt tout dans bol près.
6: Ça voudrait que ça développe un peu plus parce que vu que nous va quoi, ça nous n'est plus une va quoi parce que n'est plus trouve non rien.
1: क्यूपिप, जहां रोशनी की कमी महसूस की जा रही है, शहर ने अपने रंग ही खो दिए हैं और अब फीका दिखता है। निवासियों के अनुसार विकास रुक सा गया है, ठीक वैसे ही जैसे नगर पालिका के सामने फव्वारे का ठहरा हुआ पानी। चूहों को तो भगा दिया गया है, अब कबूतर और आवारा कुत्ते चैन की नींद ले रहा है। फूल बेचने वाले के बाद अब बारी है सार्वजनिक शौचालयों की बदबू। यहाँ फिलहाल मरम्मत का काम चल रहा है। पोर्टविस की इतिहास में ये पहली बार है कि राजधानी का प्रशासन दो महिलाओं के हाथों में होगा।
7: Les soirs, je vois que c'est un gros souci, on peut améliorer dessus.
1: Parking ki samasya khatam hoti hi nahi hai.
7: Si on peut faire des bâtiments comme on fait à Eben, côté parking pour améliorer tout ça.
1: Trop fanfaron bazar ke paas, ye shakhs apne taxi ke paas khada hai, ghombe jaane wale yatriyon ke intezaar mein hai.
8: Ça comptait droguer dans la foule. Droguer, voler, rouler, voler, se dormir dans la foule. Il y a une base droguer, voler dans la foule.
1: पांच शहर, अनेक शिकायतें और उम्मीदें अब भी बेहद व्यावहारिक है। शहरवासी अब अपने रोजमर्रा के जीवन में आखिरकार कुछ नया देखना चाहते हैं।
9: जैसे कुछ देर पहले हम आपको बता रहे थे कि बालाक्लावा के निवासी इलाके के पब्लिक बीच के एक हिस्से को लेकर चिंता जता रही है, जिसे सन 2008 में सार्वजनिक तट की श्रेणी से हटाकर एक होटल की लीज में शामिल किया गया था। वैसे ही बेलोम और सेरियोंबेल के बीच भी तटों के कई हिस्से हैं जो सार्वजनिक नहीं रहे और जिन्हें निजी परियोजनाओं का हिस्सा बनाया गया है। ऐसे में बीच तक जनता की पहुँच का मुद्दा सोच विचार का विषय जरूर बन गया है। यासीन दिल मोहम्मद की रिपोर्ट पर रजनी बेकर का विवरण।
10: Quand on a un congé public, et tout ça là, c'est le moment moyen qu'ils sont capables de divertir les enfants. Amène ceux de la plage, c'est gratuit. Mais à ce temps, Wal Perebert, Wal Monchoisi, un jour congé. Dis-moi qu'on a déjà sorti une boîte, pas capable aussi de sa plage. Mais qui fait besoin de prendre cours sur la plage?
11: ২০০৮ से बालाक्लावा समुद्र तट के एक हिस्से को हटाया गया है और इसे पास में स्थित एक होटल को लीज पर जोड़ा गया है। तब से कोई भी विकास नहीं हुआ, लेकिन ये चिंता तो बनी हुई है कि किसी दिन एक हिस्से में मशीन काम करने लगे।
12: Moi, mon essence pointe au piment ici. Mon père, une famille, mon vin là, mon vin distrairement, beau la mer, bons enfants. Vous êtes congé l'école.
13: Il y a un problème, nous avons beaucoup accès pour venir dans la mer, pour nous ramasser, nous mettre la boîte, la pipille, pour nous travailler, vous comprenez, nous avons accès.
14: Quand trois fois par semaine, venir ici, regarde le pays. Nous comptons les mouka, assiser, regarde, respirer un peu. Mais si tu es ça, tout le monde est chien, que tu peux aller.
11: Grand Parishad qui est là, c'est ce qui est là.
15: Tout Mauricien, des avis de Balaklava, je te connais, grand DS à la plage qui nous est là, ici, là, minuscule.
11: इकोसिट नामक एनजीओ निवासियों को अपना समर्थन दे रहा है और साथ में ये मांग कर रहा है कि इस भाग को फिर से पब्लिक बीच घोषित किया जाए।
16: 56 मीटर à peu près en plus depuis Mirail et il représente à peu près 40% de la plage publique. J'étais un peu inquiet à savoir si l'hôtel pour extendre ce l'hôtel ou soit même qu'ils ont une PAD, une bout de plage publique.

0: बालाक्लावा एक अलग मामला नहीं है। बेलोम में 19.4 बीघा पब्लिक बीच को 2016 में डिप्रोक्लेम किया गया था। केपीएमएम ग्रुप को एक रियल एस्टेट पर योजना विकसित करना था। 10 साल बाद केपीएमएम का दिवालिया हुआ और जमीन को बिक्री के लिए रखा गया। रियोंबिल में 2007 में एक होटल परियोजना के लिए 4 बीघा पब्लिक बीच को लीज पर एक प्रमोटर को दिया गया। 2017 में इस लीज को रिकन्वर्ट किया गया 20 से अधिक विला की एक परियोजना के लिए। 2024 के दिसंबर महीने में जिला परिषद की ओर से निर्माण संबंधी परमिट जारी किया गया था।
1: Il y a une portion qui proclamait plage publique. Sauf qu'il n'est pas net proclamé dans son entièreté, qui est Djimoun Seavi. Donc Djimoun Seavi, mais je ne sais pas connaît qui est une partie là-dedans pour finir en bas béton. À côté de ça aussi, nous trouvons des affaires qui peuvent rétrécir. C'est l'espace, la plage, à cause notamment de l'érosion. On a une construction à 30 mètres depuis la ligne de la marée haute, depuis High Water Mark. Mais 30 mètres depuis la ligne de la marée haute. Mais 30 mètres, ça veut dire aussi qu'il nous faut faire qu'il y a de la place qui est déjà dans l'état lamentable pour écrouler devant nous l'isier.
0: इस वृहद परियोजना के चलते पर्यावरण मंत्रालय की ओर से एक एनवायरनमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की मांग की गई। एनवायरनमेंट एंड लैंड यूज ट्राइब्यूनल के सामने प्रमोटर की तरफ से इस फैसले का विरोध किया जा रहा है। 50 इकाई से कम वाली परियोजना के लिए कानून इस तरह के अध्ययन की मांग नहीं करता, लेकिन फिर भी मंत्री इसकी मांग कर सकते हैं अगर परियोजना का असर पर्यावरण पर पड़ने का खतरा हो सकता है। ये उसके स्थल और इस पर भी निर्भर करता है कि वहां किस तरह के कार्य किए जाएंगे। मामले को अगले 3 जून को पेश किया जाएगा। पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से ये समझाया जा रहा है कि एक EIA के माध्यम से हम जान सकेंगे कि इस तरह की परियोजना चलाई जा सकती है या नहीं। उदाहरण के तौर पर बाढ़ और मिट्टी के कटने के खतरों को देखना है। इसके अलावा एक EIA के लिए सार्वजनिक परामर्श की आवश्यकता है, जो हुआ नहीं क्योंकि इस परियोजना से इलाके पर प्रभाव पड़ेगा। ये अहम प्रश्न भी उठता है कि मॉरिशस के तटों पर कम ही पब्लिक बीच हैं। बीच अथॉरिटी के मुताबिक टापू के चारों ओर 322 किलोमीटर के तटीय इलाकों में से केवल 48.24 किलोमीटर पब्लिक बीच हैं, यानी करीब 15%। पर्यावरण मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि ये आंकड़ा इससे कम है अगर हम उन इलाकों को न गिने जहाँ पर जा नहीं सकते या फिर जनता के लिए वहां जाना कठिन है, जैसे कि चट्टाने हैं, साथ में बंगलोज के सामने वाले हिस्से भी हैं। अभी भूमि एवं आवास मंत्रालय में समुद्र तटों पर एक्सेसिबिलिटी के मुद्दे पर चर्चा की जा रही है। इस बीच आमिरा आर्डारनी नामक के एक मॉरिशन ने अपने अनुभव के बारे में बताया कि किस तरह वे लापमेज से तमागे पब्लिक बीच तक पैदल गए। ये कैसे रहा? कई विला के बगीचों को पार करना पड़ा। तट के किनारे प्रवेश बंद था। होटलों या विला के स्विमिंग पूल के बगल में ईंट से बने ढांचे भी थे। यहां तक कि कई जगहों पर पत्थर थे जिन पर चढ़ना पड़ा। विला मालिकों ने जानबूझकर अपने विला के सामने बालू जमा करके रखा था।
2: कर्डिन यूनिवर्सिटी के चांसलर और वाइस चांसलर ने आज ट्रेजरी बिल्डिंग पोर्टलिस में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम के साथ रस्मी मुलाकात की। उनके साथ ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त केट चैमली भी मौजूद थीं। मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी मॉरिशस के बीच पिछले कई सालों से कायम सहयोग और भविष्य के विकास पर चर्चा की गई। आज 10 ज़िलहिज्जा की तारीख है और आज के दिन मुसलमान कौम के परिवार ईद उल अदा मना रहे हैं। ये रोज़ हज़रत इब्राहिम की सुन्नत के हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल है। सुबह ईद की नमाज के बाद बेशतर मुसलमान सुन्नत इब्राहिम अदा करते हैं और आज का दिन रिश्तेदारों और करीबियों के साथ वक्त बिताने का मौका होता है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम और उनकी पत्नी श्रीमती वीना रामगुलाम ने कल लालमाटी में आयोजित शिव महापुराण की कथा में भाग लिया। इस धार्मिक अनुष्ठान के दौरान भक्तों में शिव भक्ति के महत्व को लेकर आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ाया जा रहा है। ये कथा रविवार तक चलेगी। क्लुदेजोफा गदेवादियों की रिपोर्ट पर रजनी बेकर का विवरण।
0: कुछ दिनों से लालमाटी में भक्तिमय एवं आध्यात्मिक समा बंधा हुआ है। बहुत से भक्त पिछले शनिवार से यहाँ पर शिव महापुराण की कथा में भाग ले रहे हैं। इस तरह

0: भक्त भोलेनाथ की कथा सुनने के लिए जुटे। इस अवसर पर वहां देवों के देव महादेव का गुणगान किया जा रहा है, भजन प्रस्तुत किए जा रहे हैं। बुधवार की रात प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और उनकी पत्नी श्रीमती वीना राम गुलाम भी उपस्थित हुए।
1: कदली गर्व संभूतम कपूरम तो प्रदीपितम और आरतिकम हम कुर्वे।
0: भारी संख्या में भक्त एकत्र हुए और वे बहुत प्रेम एवं भक्ति तथा श्रद्धा के साथ ध्यान पूर्वक शिव महापुराण की कथा का श्रवण कर रहे थे।
2: यहाँ सब एक परिवार बन करके लाल माटी के ये कार्य किया जा रहा है, हिंदू के लिए, पूरे विश्व के लिए, पूरे मॉरिशस के लिए।
0: शिव महापुराण की कथा आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने और संगठित होने का अवसर है। ये और कुछ दिनों तक जारी रहेगी।
3: शतबन मजदूरी का इतिहास पोर्टलिस में चल रही 3 दिवसीय चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। कल 27 मई से विभिन्न इतिहासकार, शोधकर्ता और कई संस्थाओं के प्रतिनिधि इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग ले रही हैं। ये पहला प्रवासी घाट ट्रस्ट फंड की है। इसके उद्घाटन के लिए कला एवं संस्कृति मंत्री सहित कई वक्ताओं के भाषण शतबन मजदूरी की विरासत और उसके प्रसार पर केंद्रित रहे। वर्षों तक असुरक्षित और दयनीय परिस्थितियों में रहने के बाद सोशल रजिस्टर में दर्ज 20 परिवारों को उनके नए कंक्रीट के घरों की चाबियां सौंपी गई। ये दिन उनके लिए भावनाओं और एक शुरुआत की उम्मीद से भरा रहा। स्क्विंट आई से पीड़ित 200 से अधिक बच्चों और वयस्कों का सफल ऑपरेशन किया गया है। डॉक्टर मिलिन किलेदार के नेतृत्व में भारत की एक मेडिकल टीम ने पिछले अप्रैल महीने में मॉरिशस और रोड्रिग्स के अपने दौरे के दौरान ये ऑपरेशन किए। ये पहल जो अब अपने चौथे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। रोटरी क्लब ऑफ बागातेल और भारत के रोटरी क्लब ऑफ पॉन्डिचेरी अगराम के सौजन्य से आयोजित की गई है। इस स्क्विंट आई 4.0 परियोजना का शुभारंभ 23 अप्रैल 2026 को मोका में हुआ था। और जैसे हम आपको बता रहे थे कि आज ईद उल अदा मनाया जा रहा है और आज सुबह ईद की नमाज के बाद बेशत मुसलमान सुन्नत इब्राहिम अदा करती हैं और आज का दिन रिश्तेदारों और करीबियों के साथ वक्त बिताने का मौका रहा। इस पर कृष्ण सिचा की रिपोर्ट पर रजनी बिकल का विवरण पेश है।
4: तड़के सुबह ही मॉरिशस भर की मस्जिदों में रौनक देखने को मिली। मुसलमान कौम ईद उल अदा के इस मुबारक मौके पर ईद की नमाज अदा करने के लिए बड़ी तादाद में मस्जिदों में पहुंचे। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई इबादत में मशगूल नजर आए।
5: Ce garçon, Ismaïl alayhi salam, alors en mémoire de ça, nous faisons Kurbani. On dit pas la prière qui commence, tous les jours nous venons nous faire pareil. Ça n'a rien, la prière exceptionnelle.
6: À Ibrahim alayhi salam, tu montrais à Allah qui, entre ses enfants, et que l'amour de ses enfants et que l'amour à Allah, il donne, il est plus content l'amour à Allah. Ce qu'Allah finit de lui faire, il finit de faire. Nous prions pour tout. Qui est dans la paix dans l'île Maurice, nous vit bien dans l'île Maurice et qui est dans la paix dans le monde aussi.
4: आज 10 ज़िलहिज्जा को मॉरिशस का मुस्लिम कौम ईद उल अदा मना रहा है। ईद उल अदा, जिसे बकरीद भी कहा जाता है, हजरत इब्राहिम की कुर्बानी और अल्लाह के प्रति उनकी अतूत मोहब्बत की याद दिलाती है। नमाज के दौरान अमन, भाईचारे और देश की खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गई।
7: तो जुमन पैना मुआइए पुफिया कुर्बानी से अंजुमन मुवाजें वाजिना जिंगई मुआइए लिपे फेला लैला ली गोट एन पो देजियम और लिबिजे पोता सुबन कामराड सुबन फामी उस तोजियम अंजुमन की मिजिया।
4: नमाज के बाद परिवारों में अच्छे पल बिताए गए। परिवार के सदस्य एक साथ भोजन करते हुए ईद की खुशियां साझा करते हैं, जैसे कि यहाँ

0: Sanuman Parivar me.
1: Pour moi aujourd'hui c'est très spécial. J'ai mon fils qui est dans mes bras et c'est son premier idolada. Déjà c'est un moment magique pour nous. Là on mange du vermicelle qui nous appelle Siwai et après nous pour vers Bobassa que nous ne prenons pas dans les animaux là-bas et nous pour assister au sacrifice et après nous pour faire partage de la viande.
0: मौशिस में ईद उल अदा सिर्फ कुर्बानी का एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि ये आपसी प्रेम साझेदारी और इंसानियत का संदेश देने वाला त्यौहार भी माना जाता है।
2: और जैसे कि आपको पता है कि शरदवन मजदूरी का इतिहास पोर्ट लुइस में चल रही तीन दिवसीय चर्चाओं का केंद्र बना रहा। कल 27 मई से विभिन्न इतिहास का शोधकर्ता और कई संस्थाओं की प्रतिनिधि इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग ले रही हैं। ये पहल अप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड की है। इसके उद्घाटन के लिए कला एवं संस्कृति मंत्री सहित कई वक्ताओं के भाषण शरदवन मजदूरी की विरासत और उसके प्रसार पर केंद्रित रहे।
0: मॉरिशस में हिंद महासागर में गिरमितिया कामगारों के इतिहास पर केंद्रित एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इस तीन दिवसीय कार्यशाला में शोधकर्ता, विरासत विशेषज्ञ और राजनयिक प्रतिनिधि एकत्रित हो रहे हैं जो गिरमितिया कामगारों की स्मृति पर आधारित है। अप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के चेयरमैन सुकंद रामदास कहते
3: हैं
0: इस कार्यशाला का उद्देश्य ऐतिहासिक स्थलों और गिरमितिया कामगारों से जुड़े अभिलेखों के संरक्षण को लेकर इलाकाई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग और विचार विमर्श को बढ़ावा देना भी है। मॉरिशस की यूनेस्को में स्थायी प्रतिनिधि मारी जैस्मिन टुलूज ओलिविये कहती है
4: La racine. L'histoire, les besoins paraissent cachés. Donc, nous dire qu'ils nous besoins racontent l'histoire, que ce soit à l'école ou bien plus petit, parce qu'il est important qu'ils nous connaissent, qu'ils nous sortent.
0: Ce Karyashala va faire un master plan de faire un master plan pour que les virasat ke sanrakshan ko thos roop diya ja sake. Kala aur Sanskriti Mantri Mahendra Gondia kehte hain.
5: C'est un roadmap qui nous qui pour préparer et ça quand ça sorti, les là pour trouver un travail qui suive après. Parce qu'ils nous pas capable un roadmap il est un peu pareil comme un guideline. Si vous payez dans ça, mais qui peut avancer devant. Donc ça il est important pour nous préparer ça roadmap là.
0: ये कार्यशाला 29 मई तक जारी रहेगी जिसमें हिंद महासागर इलाके के विरासत विशेषज्ञों के बीच विचार विमर्श आयोजित किए जाएंगे।
2: और पोर्ट लुइस में स्थित अल्फा कॉलेज ने अपने 60 साल पूरे कर लिए हैं। अपने छोटे आकार और सीमित छात्र संख्या के बावजूद ये संस्थान बिना किसी भेदभाव या उनकी क्षमताओं को परखे हर पृष्ठभूमि के छात्रों का स्वागत करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युगांडा ने सीमावर्ती क्षेत्रों में इबोला महामारी की तीव्र फैलाव को देखते हुए कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के साथ अपनी सीमाएं अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की। ये एक एहतियाती उपाय है क्योंकि युगांडा की सरजमीन पर पहले से इबोला के कई मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इस पर कोयल सीतल की रिपोर्ट पर रजनी बेकर का विवरण।
6: कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला महामारी के बढ़ते मामलों के चलते युगांडा ने इसके साथ अस्थायी तौर पर अपनी सरहद बंद करने का आदेश दिया है। इस कदम का मकसद है इस वायरस को अधिक फैलने से रोकना। पिछले 15 मई को महामारी के लिए औपचारिक घोषणा की गई। युगांडा में इबोला वायरस के बुंदीबुग्यो वेरिएंट के साथ जुड़े 7 मामलों की पुष्टि हुई है। अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि केवल इबोला से निपटने वाली टीमों को ही सरहद पार करने की अनुमति होगी, वो भी कुछ सख्त सैनिटरी शर्तों पर। सैनिटरी अधिकारियों के मुताबिक अभी के लिए वायरस के इस वेरियंट के खिलाफ कोई भी निश्चित टीका या इलाज नहीं है। स्थिति के चलते विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय सैनिटरी चेतावनी जारी की गई। महामारी के 12वें दिन पर 900 से अधिक संदिग्ध मामले पाए गए। पहले से ही 220 लोगों की मौत दर्ज की जा चुकी है। अधिकारियों के अनुसार मृतकों की संख्या बढ़ सकती है।
2: बढ़ते हैं अब हम मौसम के हाल की ओर।

आम हालत, पूर्व से आने वाले बादल हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगी। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, रात के समय और कल सुबह बादल घिर आएंगे और रह रहकर वर्षा होगी, विशेषकर देश के पूर्वी, उत्तर और सेंट्रल प्लाटू वाले इलाकों में। कभी कभार बारिश तेज भी हो सकती है। ऊंचाइयों पर कोहरे छाएंगे। दोपहर बाद में पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में बादल विकसित होंगे और रह रहकर वर्षा होगी। अन्य इलाकों में आसमान में बादल घिरे रहेंगे। हवा पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी और कल धीरे धीरे हवा कमजोर पड़ने लगेगी। समुद्र प्रवाह रेखा के पार सामान्य रहेगा तथा कल सुबह धीरे धीरे समुद्र की स्थिति खराब होने लगेगी और दक्षिण की ओर से 2 मीटर 50 सेंटीमीटर के ज्वार उठने लगेंगे। खुले समुद्र में सुबह के समय कल न निकलने की सलाह दी जाती है। आज सूर्यास्त शाम 5:38 पर और कल सुबह सूर्योदय 6:37 पर।

0: इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का सहयोग मिला, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। कंसल पर हमारे सहयोगी डोमिनिक है, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं और सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, बढ़ते हैं अब हम शोक समाचारों की ओर।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। राय रोड लाफ्लोरा में इकहत्तर साल की 71 ईयर्स ओल्ड के श्री बिसुंदत किस्तो मोहन जिन्हें धर्म किस्तो के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 9:30 बजे उनके बेटे कमल किस्तो मोहन के घर लाफ्लोरा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांव बुआ की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9:30 AM। रॉय रोड प्लैन दी रोश में 62 साल के 62 ईयर्स ओल्ड के श्री प्रभाकर बेचू जिन्हें लेखवा के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनकी पत्नी श्रीमती पद्मिनी बच्चू के घर प्लैंदिरोश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। रामनाथ लेन ब्रिजेवेजिया में श्री जगन्नाथ रामनाथ जिन्हें अख्तिया रोशन के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनकी पत्नी श्रीमती श्यामा रामनाथ के घर ब्रिजेवेजिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोंजे की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। अवनी ए आई फिलाओ पाई में 91 साल की 91 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती वेलम्बाले एलम्मा जिन्हें ममाम्बा के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल 1 बजे उनके घर फिलाओ पाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। थोडोडूस रोड ब्रह्मस्थान में 44 साल के 44 ईयर्स ओल्ड के श्री महेन सुब्रन जिन्हें अनूप के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 2:30 बजे उनके पिता श्री लक्ष्मी प्रसाद सुब्रन के घर ब्रह्मस्थान से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशोंक शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 2:30 PM। कोलाबू तेरूज में 88 साल के 88 ईयर्स ओल्ड के श्री लक्ष्मण मोहाबीर जिन्हें भाई लक्ष्मण के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी कल 1 बजे उनके बेटे महेंद्र मोहाबीर के घर कोलाबू तेरूज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही ब्रिलिश की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
2: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।

नहीं सो। जब बजकर 34 मिनट आ गए हम यहाँ पर और एम फ्री रेडियो मनोरंजन पर। हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग, और मैं हूँ देविना आपका साथ देने के लिए अभी से लेकर 7 बजे तक नई सोच प्रोग्राम में। प्रेरणा, उम्मीद और पॉजिटिव ऊर्जा से भरा कार्यक्रम नई सोच लेकर कुछ ऐसे विचार जो जीवन की राह को आसान बनाए, मन को हौसला दे और सपनों को नई उड़ान दे। दोस्तों, बड़ी मंजिलें हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती हैं। एक छोटा सा एफोर्ट, एक छोटा सा प्रयास, एक छोटी सी उम्मीद और एक छोटी सी पॉजिटिव सोच इंसान की पूरी दुनिया बदल सकती है, है ना? तो इस आइए आज की इस खूबसूरत शाम में बात करते हैं छोटी शुरुआत बड़ी सफलता। जो व्यक्ति धीरे धीरे चलकर भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है, वह उस व्यक्ति से कहीं आगे निकल जाता है जो केवल सोचता रह जाता है। और ऐसे में हम कहते हैं, जिंदगी छोटी है, क्या करें क्या ना करें, बस वो कीजिए जो आपका मन कहने को करता कहता है। क्योंकि मन जो कहता है ना, अक्सर वो हमेशा सही होता है, मगर कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो मन कहता है मगर वो बातें अच्छी नहीं होती। बस आप पर निर्भर होता है कि आप ये जानें कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, क्या करें, ये करें या वो करें, ऐसा करें वैसा करें। जिंदगी 2 दिन की है, 2 दिनों में हम क्या क्या करें। जगजीत सिंह साहब साथ में चिट्टा सिंह, इस ब्यूटीफुल गाने को आप एंजॉय कीजिए नई सीच प्रोग्राम में, नई सोच देविना के संग।

0: RM3 Radio.
1: नहीं सो। जहां दोस्तों हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, अच्छा समय, अच्छे हालात, ज़्यादा पैसे। लेकिन सच्चाई यह है कि सफल लोग कभी सही समय का इंतज़ार नहीं करते, वे शुरुआत कर देते हैं चाहे हालात कैसे भी हो। वैसे एक बीज जब मिट्टी में दबता है ना, तो अंधेरे में भी खुद पर भरोसा रखता है। उसे पता होता है कि एक न एक दिन वही छोटा सा बीज विशाल वृक्ष बनेगा। ठीक वैसे ही आपकी छोटी मेहनत, आपकी छोटी सी कोशिश, आपकी छोटी सी एफर्ट, आपकी छोटी जो आप कोशिश करेंगे ना, एक दिन आपकी सबसे बड़ी पहचान बन सकती है। वैसे कहते हैं, सपने वो नहीं जो सोते वक्त आते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। और बीते वक्त में अगर कोई बुरा वक्त आया हो तो गोली मारिए और नई शुरुआत की ओर आगे बढ़ें। तो ये गाना आप सबों के लिए, RM3 रेडियो मनोरंजन पर, नई सोच, दिवना के संग।

0: RM3 Radio.
1: जहाँ दोस्तों कई लोग अपनी ज़िंदगी इसलिए बदल नहीं पाते, वे बदलने से डरते हैं क्योंकि वे शुरुआत करने से डरते हैं। उन्हें लगता है अगर मैं हार गया तो, लेकिन दोस्तों कभी यह भी सोचिए अगर आप जीत गए तो, क्या पता हार में भी जीत हो। हर सफल इंसान कभी ना कभी असफल ज़रूर हुआ है, हम सभी हुए हैं, लेकिन उसने रुकना नहीं सीखा। याद रखिए, हारना बुरा नहीं, हार मान लेना बुरा होता है मेरे दोस्त।

तो बस यही कहेंगे, जिंदगी में कभी खुद को कमजोर मत समझिए, क्योंकि एक छोटा सा दीपक भी पूरे अंधेरे को रोशन कर सकता है। बस खुद पर भरोसा रखिए, हर दिन थोड़ा आगे बढ़िए और याद रखिए, नई सोच ही नई राह बनाती है। चलिए इसी खूबसूरत संदेश के साथ हम इस कार्यक्रम को समाप्त करने वाले हैं इस अगले गाने के साथ, और हमारे और आपकी मुलाकात होगी 7 बजे के बाद दिलों की आवाज़ प्रोग्राम लेकर। बस हमारा साथ देते रहे, जिंदगी में डरिए मत, आगे बढ़ते चलिए।

0: दिलों की आवाज,
1: जहाँ फिर से हमारा नमस्कार स्वीकार कीजिए, प्रणाम, गुड इवनिंग आप सभी को और एक प्यारा सा शुभ संध्या। मैं हूँ दिविना, आपके हम सफर और अगले दो घंटों तक आपके

0: की धड़कनों के साथ रहने वाली आपकी आरजे और एमफ्री रेडियो मनोरंजन पर हार्दिक स्वागत करते हैं आप सभी का यहां पर बेहद खास बेहद दिलकश और सुरों से सजे कार्यक्रम दिलों की आवाज में जहां हर गीत किसी की याद बनकर आता है किसी की मोहब्बत की कहानी सुनाता है और कभी दिल को मुस्कुराने तो कभी आंखों को नम कर जाता है। दोस्तों आज की सुहानी शाम में हम लेकर आए हैं 80s 90s और 2000 के वो गाने वो नगमे जो आज भी दिल की धड़कनों में बसते हैं। तो तैयार हो जाइए कुछ पुराने एहसासों को फिर से जीने के लिए कुछ अधूरी बातों को गीतों में सुनने के लिए और कुछ प्यारी यादों के सफ़र पर निकलने के लिए। बस प्यार का नशा कभी उतरने वाला नहीं है, नशा ये प्यार का नशा है। अगर आपके पास प्यार है तो आप कितने लकी हैं ये आप जान सकते हैं अगर आप भी प्यार करते हो। तो बस ये पहला गाना आप सबों के नाम और आपको बता देते हैं कि यह जो प्रोग्राम है चलने वाला है 9 बजे तक और अगर आपको कोई डेडिकेशन करना है तो मैसेज भेज सकते हैं ऑन 5250-6200-5206200 या फिर हमसे बातें करना चाहते हैं तो 4028070 पर। फिल्म मन का बेहद ही खूबसूरत गाना आप सबों के नाम उदित नारायण साहब की आवाज़ों में आपके लिए।
1: नशा

0: दिलों की आवाज, की आवाज, की आवाज।
1: जाराटे के साथ बजकर 16 मिनट हुए हैं। फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का, वार्म वेलकम करते हैं यहाँ पर दिलों की आवाज प्रोग्राम में। दीवीना है आज की रात आप सबों के साथ 9 बजे तक। सो अगर आप लोग डिनर के लिए बैठे हुए हैं तो बन अपेची शुभाहार, और जितने लोग सफर में रहकर हमें सुन रहे हैं तो बिग हेलो टू यू। एंड क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं आपको, बी केयरफुल, टेक केयर। और जितने लोग बस अभी डिनर के बाद बैठे हुए हैं, कुछ इधर उधर का काम कर रहे हैं, आयोनिंग कर रहे हैं क्योंकि कल काम पर जाना है, नौकरी पर जाना है, साथ में बच्चों के जो कपड़े हैं इस्त्री करना है, या फिर कल के लंच के लिए तैयारी कर रहे हैं और साथ में हमें सुन रहे हैं, तो हार्दिक स्वागत है और दिल से आप सबको धन्यवाद। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, ऑलवेज और एम फ्री रेडियो मनोरंजन के साथ। अभी आपने सुना नशा, ये प्यार का नशा है, ये सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं। कभी किसी की मुस्कान याद दिला देते हैं तो कभी किसी आखिरी मुलाकात, और हमें याद आ रहा है आमिर खान साहब साथ में थी ब्यूटीफुल मनीषा कोइराला, फिल्म था मन्ना। वैसे सच कहते हैं जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो मुकम्मल ना होकर भी दिल के सबसे करीब होते हैं, और आज का एक खूबसूरत थॉट हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। कुछ आवाजें कानों से नहीं सीधे दिल से सुनी जाती हैं, तो बस हमारा और आपका जो है संगीत के साथ, दिलों के साथ रिश्ता है, ऐसे ही कायम रहे। और बस अगला गाना जो है दिल क्या करे, अलका याग्निक की आवाज़ में, प्यारी सी आवाज़ में। और ये अगला गाना जाएगा ललिता जी के लिए, ठेवले से हैं, अभी अभी फ़ोन किया है। सो ये गाना जाएगा सुदेवी के लिए, देवीना के लिए, दादी प्रभावती, हाँ जी ज्ञानी, छोटी दीदी, हरीश भैया, आत्माराम भैया, सुखलाल मौसी, हमारे लिए भी थैंक यू ललिता जी, और साथ में जो है सभी लिसनर्स के लिए, प्यारे के लिए चार पल कम नहीं थे, कभी तुम नहीं थे, कभी हम नहीं थे। बस इस गाने को एंजॉय कीजिए दिलों की आवाज़ प्रोग्राम के अंतर्गत।

देखते देखते सारे सात बज चुके हैं राटे के, और आप सभी की मैसेजेस के लिए, आपके कॉल्स के लिए, आपके प्यारी प्यारी बातों के लिए दिल से शुक्रिया मेरे दोस्त। बाय द वे, आप सभी दोस्तों को कहेंगे जितने लोग मना रहे हैं ईद उल अधा, आप सभी को ईद उल अधा मुबारक हो। आपकी मुरादें जो हैं वो मुकम्मल रहें, और साथ में जितने आपने दुआएं मांगी हैं सभी जो हैं अल्लाह ताला आप सबों की दुआओं को कबूल करें। आपकी जो आप मनोकामना है दिल में, आपके परिवार के लिए, सभी के लिए शुभ हो, अच्छा हो, बस यही है हमारे दिल से कामना। और आप लोग प्यार भरे संदेश भेज रहे हैं, फरमाइशें भेज रहे हैं इस महफिल में, आप इस महफिल को और भी खास बना रहे हैं। दिनों की आवाज़ प्रोग्राम है दीविना के संग। तो भाई अबू हैं जो इन्होंने उन्हें कॉल किया है, और भाई अबू कह रहे हैं उनकी जो फेस्टिवल है आज, जो पूजा है, जो दुआ की उन्होंने मांगी है, सब कुछ अच्छा से गुजरा बस परिवार के साथ, और वे अगला गाना मांग रहे हैं। वैसे हमने कहा था ना कि यहाँ पर 80s 90s वाले गाने जो ऊपर के गाने हैं, मगर आज आपने मनाया ईद उल अधा, सो एक फेवर नहीं है, बस आपके दिल को खुश कर रहे हैं भाई अबू। सो फिल्म अस्सी नगली का गाना आप सुनना चाहते हैं, तेरा मेरा प्यार अमर, क्योंकि ये गाना भाई अबू के लिए बहुत खास है, किसी की याद आ रही है, कोई खास है। और ये गाना जो है जाएगा फॉर आफेज असलम, आयाज, जयान, जहीर, रहीज, आपी और उनकी वाइफ जो है, और सभी जो हमारी जो MBC टीम है, थैंक यू सो मच, सभी लिसनर्स हैं। सो बस एक हम ये गाना पुराना वाला गाना बजा रहे हैं आपके लिए खास बस, तो नहीं तो यहाँ पर काफ़ी गाने, अच्छे अच्छे गाने हैं लिस्ट में, हम बजा सकते हैं आपके लिए। सो भाई अबू बस आपके लिए फिर से ईद उल अधा मुबारक हो, और सभी लिसनर्स के लिए ये गाना देवानंद साहब की याद में, और आप लोग इस गाने को एंजॉय कीजिए। इसके बाद ये जो अगला गाना होगा आप सभी के नाम होगा, बस एंजॉय इट ऑन RM Free रेडियो मनोरंजन।

जिस ब्यूटीफुल गाना जो है, ब्यूटीफुल सॉन्ग, स्पेशली बॉम्बू की प्यारी सी ज्योति के लिए. हेलो ज्योति जी, आपसे बात करके अच्छा लगा. जस्ट टू रिमाइंड मी कि हम मिले थे कभी, सो नाइस टू नो. एंड पति तनवीर के लिए स्पेशली, साथ में उनके जो भाई हैं, सभी गिरधारी परिवार और बुडेसा परिवार के लिए, दिस इज़ फॉर यू.

कुछ होने लगा होने देना प्यारा सा गाना from the movie Army. एक जमाने में ये गाना कितना फेमस हुआ करता था आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं इसीलिए कर आए हैं आज की रात आप सबको दिल के को खुश करने के लिए वैसे सो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं दिलों की आवाज़ आज की रात है देविना आपके संग 9 बजे तक और यहाँ पर बढ़ते हैं एक मैसेज की ओर प्यारा सा मैसेज आया है प्रणाम मेरी बहना प्रणाम जी ट्रियोले से हैं लिसनिंग टू योर ब्यूटीफुल सिलेक्शन थैंक यू फिल्म है प्यार ही प्यार इसका फिल्म का गाना वे सुनना चाहते हैं और गाना है कि तेरे ही चेहरे पे प्यार आया हाँ जी फॉर रेडियो मनोरंजन टीम थैंक यू सो मच और बीता निशार सूरज शर्मा सजदा फ्रॉम ट्रियोली तो आपके नाम ये करने वाले हैं ये गाना और ये गाना कितना जैसे कहते हैं ना मदमस्त गाना है आप भी गुनगुनाइए हमारे साथ एंड ऑलवेज बी कनेक्टेड टू आरएम फ्री रेडियो मनोरंजन

0: RM3 Radio.
1: चौरानवे पंचानवे दशमलव छः 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।

0: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
4: Yes, ladies and gentlemen, ho chala hai raati ke 8 baje.
5: दिलों की आवाज
6: की आवाज
5: की आवाज
4: Yes, ladies and gentlemen, आप सभी का हम फिर से स्वागत करते हैं यहाँ पर. अब आखिरी घंटा है दिलों की आवाज़ प्रोग्राम में और बहुत से जो हमारे लिसनर्स है कह रहे हैं ओ सो नाइस, आज की रात हम आपका साथ दे रहे हैं. वैसे हम नहीं आते हैं हर बार दिलों की आवाज़ प्रोग्राम में, मगर आज मौका मिला है तो हम आ गए आप सबों का साथ देने के लिए. और हमें खुशी मिली कि आप लोग हमेशा की तरह हमसे जुड़ने के लिए भी करार होते हैं. थैंक यू सो मच टू बी माई फ्रेंड, हमारे दिलदार के बनने के लिए, हमारे हमसफ़र बनने के लिए, हमसे प्यार बाँटने के लिए आप हैं तो हम हैं. सो लव यू ऑल, आई लव यू ऑल. और ये जो गाना आपने सुना अभी वो था फ्रॉम द मूवी अवतार. अब हम आपको बताते हैं, मौका मिला तो हम आ गए और मौका मिलेगा तो हम बता देंगे कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि हम आपका गाना तो बजाएंगे ही. और ऐसे में ये जो अगला गाना है ना, ये बाबू अनाटवा जी हैं कटोबोन से, हमेशा साथ देते रहते हैं, अभी तक शॉप में हैं. सो मौका मिलेगा ये है फ्रॉम द मूवी दिलवाले. और बाबू जी ये गाना अपने बेटे विजेश के लिए डेडिकेट कर रहे हैं. साथ में है बेटी भावना, बहू पूजा और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं. और ख़ास तौर पर हम कैसे भूले जो हैं बीवी जो हैं उनकी वाइफ उषा जी. साथ में है पूरी फैमिली के लिए, हमारी पूरी टीम के लिए थैंक यू. और वे कह रहे हैं सभी मॉरिशन जो हमसे जुड़े रहते हैं और एम रेडियो मनोरंजन के साथ लिसनर्स हैं, और साथ में सभी जो हमारे भाई बहन जो मना रहे हैं ईद उल अधा, उनको कह रहे हैं मुबारक हो. और ये गाना उदित नारायण साहब की आवाज़ में है, फिल्म है दिलवाले, 90s का बहुत ही फेमस सा गाना है. साथ में आवाज़ होंगी स्वीट स्वीट सी अलका याग्निक की. और आपकी मैसेजेस हम पढ़ रहे हैं बारी बारी से. सो डेडिकेशंस आप सबों के लिए, अभी के लिए ये गाना आप सबों के लिए. और साथ में वेलकम टू दिलों की आवाज़ ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन.

जहाँ रात्रि के 8:13 हुए हैं वैसे कहते हैं जिंदगी बहुत तेजी से बदल रही है लेकिन कुछ चीजें कभी नहीं बदलती जैसी दोस्ती और प्यार और जैसे पुराने गीतों की मिठास और सच्चे रिश्तों की गर्माहट वैसे कभी कभी एक पुराना गीत हमें उन लोगों से फिर मिला देता है जो अब सिर्फ यादों में रहते हैं जैसे कॉलेज के दोस्त बचपन के दोस्त हमारे जो कजिन्स थे सभी लोग इधर उधर हो चुके हैं शादी हो चुकी हैं कुछ लोग पढ़ाई के लिए विदेश गए हैं और कुछ लोग नए घर बना कर चले गए हैं मगर जो कुछ ऐसे गाने हैं ना जो हमें उनकी याद दिलाता है और साथ में हम उन दिनों को याद करते हैं जब हम छोटे थे बचपन में थे और हम कितने खुश हुआ करते थे

वैसे कहते हैं वक्त गुजर जाता है, लोग बदल जाते हैं, लेकिन कुछ गीत हमेशा दिल में बसे रह जाते हैं। वैसे ये अगला गाना जो है पंकज चुड़ा साहब की आवाज़ में, फिल्म है जय विक्रांत, और ये है नमस्ते देवीना जी, नमस्ते अनिता जी, और फिकों फ्लाक का आपने मैसेज भेजा और साथ में हमसे बातें भी की, थैंक यू सो मच। हम ठीक हैं और वेरी स्वीट सॉन्ग्स हमेशा की तरह, थैंक यू। अभी के लिए सभी फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए, हमारे रेडियो मनोरंजन टीम के लिए और सभी लिसनर्स के लिए फ्रॉम द मूवी जय विक्रांत, रिश्ता तेरा मेरा बस हमारा और आपका रिश्ता ऐसा ही बने रहे। आरएम फ्री रेडियो मनोरंजन पर।

ईद उल अधा की ढेर सारी मुबारक हैं आप सभी को। बस ये गाना जाएगा फिनिक्स की रहाना जी के लिए, साथ में सभी जो लिसनर्स हैं मना रहे हैं ईद उल अधा। फोंजुसाक की उमा जी की ओर से सभी को ईद उल अधा मुबारक, स्पेशली कठबून की जो है हाँ जी, तो नुरेजा और हसनू फैमिली, साथ में है नजरून शरीफा नोवा फैमिली और पिंदे पपाई और बुबासें की कुलीगान फैमिली, और सभी को ईद उल अधा मुबारक हो।

आप सभी की झोली भर जाए, बस यही है दुआ हमारी। अब जैसे कि आप जानते हैं अभी से ही शुरुआत हो चुकी है माटी दिवस की तैयारी में। सो बस जैसे कहते हैं ना हमेशा कि एक दिन काफ़ी नहीं होता है माँ को सेलिब्रेट करने के लिए। माँ की ममता इतनी बड़ी होती है ना कि जितना हम सेलिब्रेट करें उतना कम है। मगर एक ऐसा मौका आता है, एक ऐसा दिन आता है हर साल जब हम माँ को बता सके, हम समय निकाल सके अपनी माँ से मिलने के लिए, अपनी माँ के लिए कुछ करने के लिए, कुछ प्रिपेयर करने के लिए।

ये जैसे ये गिफ्ट है उनको लिए काफ़ी नहीं है, बस एक गिफ्ट जो है ये ट्रेडिशन होता है, मगर उनके लिए अच्छा सा खाना बना लीजिए, उनको घुमाने ले चलिए, उनको पिक्चर दिखाने ले चलिए, या फिर ऐसे ही उनके साथ बैठिए ना, उनके साथ टीवी देखिए, उनका जो फेवरेट गाना है उनको सुनाइए, बस माँ को क्या चाहिए, बस बच्चों का प्यार। और रविवार को हम मना रहे हैं मातृ दिवस, मदर्स डे, और ऐसे में ऐसे आज ही से अभी से ही कुछ दिनों से ही लोग सेलिब्रेट करने लग चुके हैं, विशेज़ भेजने लग चुके हैं, और आज की रात भी हम कैसे माँ पर गाना न चलाए, मगर यहाँ पर तो हमें चलाना ही है। हो चुका है 8:30 और आधे घंटे में हमारा प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा। अभी के लिए हम चलाएंगे लाडला मूवी का बेहद ही प्यारा सा गाना, एक्चुअली ये मेरा फेवरेट भी है, तो उदित नारायण साहब साथ में ज्योत्सना हर्दीकर, और ये जो गाना है ना एक्चुअली हाँ मैसेज आया है छोटी जी का पोलाउजे से, और ये गाना आपके लिए छोटी जी, आपके बच्चों के लिए, ललिता जी के लिए, हरीश भैया, आत्माराम भैया, तो आपका जो बेटा है स्वस्थ हो जाए, बस ये है हमारी दुआ। साथ में है नंदा जी और हाँ जी नंदा जी, पुनीता परिवार के लिए, साथ में गणेश परिवार के लिए, और उनके 4 बच्चे जो हैं उनके लिए, ऑल्सो पॉइंट लास्को से सीता जी ने हमें फ़ोन किया और कह रही हैं माता कौशल्या के लिए, बाबा जी के लिए, साथ में बड़ी माँ हैं, छोटी माँ हैं, सभी माएँ जो हैं साथ में, राधे परिवार, सुहाती परिवार, रामभोजन परिवार, बस माँ का प्यार सबको मिले, माँ है या ना हो मगर उनको हमेशा याद कीजिएगा, क्योंकि वे माँ थी, अब आज आप माँ हैं, कल हो का बच्चे हो माँ बनेंगे तब उनको पता चलेगा कि ममता क्या है ना, तो उनका आशीर्वाद बनी रहे, आप सबों का आशीर्वाद भी बनी रहे हम सब पर। सो पूरे जो हमारे और एमफी लिसनर्स हैं, पूरे टीम हैं, आपको एडवांस में कह रहे हैं मातृ दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी मदर्स डे अभी से ही, और सभी मम्मीज के लिए हम भेज रहे हैं बहुत सारा प्यार, आप डिनर तैयार कर रही है, बच्चों की देखभाल कर रही है, अपनी देखभाल, पति की देखभाल, और साथ में अगर आप अकेले भी हैं तो बस आगे बढ़ते चले, आप बहुत ही बलवान हैं, शक्तिशाली हैं, और हमेशा माता रानी आप सबों का साथ दें, आशीर्वाद दें, बस यही है हमारी कामना। ये गाना आप सबों के लिए।

0: RM3 Radio.
1: रात्रि के 8:42 हैं यहाँ पर। हाँ जी, तू है मेरे लिए, मैं हूँ तेरे लिए। वैसे मोहब्बत में थोड़ा इमोशन, थोड़ा दर्द और थोड़ा शरारत भी ज़रूरी है मेरे दोस्त। किसी ने खूब कहा है, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। हाँ जी, और दिल हो, हम किसी भी उम्र में हो, बस दिल में हमेशा प्यार बनी रहे हमेशा। और दिल हो बचपन का, इवन इफ़ यू आर बचपन का। और सच में दिल अगर मुस्कुराता रहे तो ज़िंदगी खुद ब खुद खूबसूरत लगने लगती है। ये हमें याद दिलाता है हमारे जो गोल्डन एक्टर थे देवानंद साहब, कभी कहते थे आई एम द ओल्ड यंग मैन, यानी कि हम बूढ़े हो रहे हैं मगर दिल जवान होना चाहिए। और दिल जवान हो तो प्यार मोहब्बत तो क्या चीज़ है, वो बस ही जाएगा। और कह दो एक बार सजना, मृत्युदंड मूवी का बहुत ही खूबसूरत सा गाना हम सुनते हैं एक साथ, उदित नारायण साहब साथ में अलका याग्निक। और आप सुन रहे हैं RM Free रेडियो, मनोरंजन पर दिलों की आवाज़ प्रोग्राम, देवीना के संग।

आठ बजकर 50 मिनट तो बस हमारे आपकी मुलाकात तो बस खत्म होने वाली है और जैसे कहते हैं धीरे धीरे आज की महफिल अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रही है, लेकिन संगीत का ये कारवां यूं ही चलता रहेगा हमेशा हमेशा और एम फ्री रेडियो मनोरंजन पर। अगर आज का कोई भी गीत आपके चेहरे पर मुस्कान ले आया हो या किसी अपने की याद दिला दिया हो तो समझिए हमारा साथ सफल हुआ और आपने साथ दिया तो बस दिल से शुक्रिया। और बस ऐसे ही जाते जाते ये कहना चाहते हैं कि ज़िंदगी एक सुंदर गीत है, ज़िंदगी एक सुंदर गाना है, इसे प्यार मुस्कान और अच्छे एहसासों के साथ गुनगुनाते रहिए। वैसे इसी प्यार इसी अपनापन और मधुर संगीत के साथ अब हम आपसे इजाज़त लेंगे और आशा है कि आप सब लोग खुश होंगे और आपकी जो रात्रि है सफल होगी, आपकी रात्रि शुभ होगी, आपको अच्छी नींद आएगी। और बस हम तो चले हमारे घर और फिर से मिलने वाले हैं सैटरडे को तो सुहाना सफ़र प्रोग्राम के दौरान मिलेंगे और साथ में आपकी पसंद प्रोग्राम भी हम लेकर आएंगे। फुल ऑन वीकेंड आपके साथ हम बिताने वाले हैं तो बस अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए आर एम फ्री रेडियो मनोरंजन और मैं हूँ देविना, आपसे देती हूँ इजाज़त। लट्स ऑफ लव आप सबों के लिए, लव यू ऑल, बाय बाय, शुभ रात्रि।

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ MBC टीवी प्रोग्राम्स की झलकियाँ।
2: रेवा देख, तेरे लिए मैंने खास बनवाया है और ये मेरे लिए, ताकि मैं तुझसे हमेशा जुड़ी रहूँ।
3: सेम,
2: एग्जैक्टली सेम।
3: किसी दिन इस खून का बदला लूंगी तुझसे।
2: मैं उसे अपने घर लेके जा रही हूँ। बदला क्या लेगी? बदले में जान मांग ले, दे दूंगी।
4: ले चले डोलियों।
1: रविवार 31 मई को MBC 3 पर दोपहर के 12 बजे हिंदी फीचर फिल्म फिलहाल 2002 की ये मूवी तबू और सुष्मिता सेन पर फिल्माई गई फिलहाल।
5: तेरा दिमाग खराब हो गया? परसों ही माँ को तू खुद यहाँ से ले गया था।
6: मामा नहीं है भैया, माँ सुबह 5 बजे घर से निकल गई थी।
5: माँ सुबह से गायब है और तुझे अब फोन करने की फुर्सत मिली है।
7: अजीब रिश्ता है उसका अपनी माँ से, अगर उन्हें कुछ हो गया ना कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा वो।
8: सोनिया, मेरे अंदर एक ऐसा जख्म है जिसे आज तक मैंने तुमसे छुपा के रखा। मेरी माँ की जिंदगी का एक ऐसा पहलू है जिसे मुझे खुद समझने में इतना वक्त।
1: शनिवार 30 मई को MBC 3 पर रात के 9 बजे हिंदी फीचर फिल्म जख्म 1998 की ये मूवी अजय देवगन और पूजा भट्ट पर फिल्माई गई जख्म।

0: भोजपुरी की धमाल, भोजपुरी तड़का, आज की रात किरण संगे।
1: आज की रात 28 मई बीफे की रात 9:04 होलबा और आप सबको के बहुत बहुत स्वागत बा। हम किरण आपके नमन करत है, हमार नमस्ते स्वीकार करा ये उम्मीद के साथ कि आज के ये दिन आप सबके बहुत अच्छा से बीतल, भले ही सांझ से ठंडा करे के शुरू कर देले बा, लेकिन हम ये आशा रखत है कि ये जोन गीत चली अभी से 11 बजे तक, एकर से आपके मन में आपके दिल में गर्माहट पैदा हो जाए और आज रात आप अच्छा नींद सुतबा और बहुत ज़ोर शोर से तैयारी चलता मातृ दिवस के। तो थोड़ा घड़ी में माँ लोग के नाम भी सुंदर सुंदर गीत चलावब जा, तब तक आपके फ़ोन के इंतज़ार बा। पहला गीत कुणाल हिरीलाल के आवाज़ में हमर दोस्त।

और जैसे सब कोई एक ही समय में बंद कर बा आजकल और उहा अपन माँ के सबसे जो अच्छा तोहफा रही उ देवे के कहे कि हर एगो लड़का के माँ ओकर ये सबसे विशेष है सबसे खास है और ये बड़ा दिन मनावल जाता दिमाग के और जितना फोन आवा था सब कोई माँ के नाम ही गीत करा था वजह बहुत बहुत धन्यवाद और माँ के नाम भी गीत अभी चलते रही अभी जो गीत चली विनोद शिवदत्त के आवाज़ में बाप दादा की बोली भोजपुरी भाषा विनोद शिवदत्त के जितना भी चहेता जितना भी चहेती हवा जा आप सब कोई के नाम ये अगला गीत और ये बखत हमने के सुनीता जी भी सुना थवन खोंगोप से वो भी बोला थवन कि मातृदिवस एगो ऐसन परब है जेके मना

करे खातिर सब कोई उत्सुक रहेला, लेकिन जब आपके माँ नहीं रहेला, माँ समान बहिन लोग भी नहीं रहेलन सा, तो काफ़ी खटकेला ये बात। और ऐसन में जोन अपन से बड़ा कोई भी रही, सबसे बड़ा बहिन ना सही, लेकिन अपन से जोन एक दुगो उनकर बड़ा बहिन हवन जा, और जैसे कि बीना और अमृता, उन लोग के नाम सुनीता जी ये गीत करत हवन, आप घोंगोप से हवा। और विनोद सिद्धत के ये गीत तयोले के ललिता जी भी ये गीत के फरमाइश करत हवन। ललिता जी ये गीत अपन सब बहन लोग के नाम करत हवन, सुदेवी, ज्ञानी, कितने बहन हवन उनकर, भाई लोग भी हवन जा, जैसे कि आत्माराम भैया, हरीश भैया, उनकर सुखलाल मौसी, माला राम जावन, उनकर लिस्ट हमेशा काफ़ी लंबा रहेला। तो जितना कोई भी ललिता जी के रिश्तेदार हवा जा, उनकर सगा हवा जा, संबंधी हवा जा, आप सब कोई के शुभकामना। और ललिता जी भी मातृ दिवस के शुभकामना सब कोई के प्रस्तुत करत हवन। तो चला उनकर फरमाइश पर विनोद सिद्धत के आवाज़ में।

धोती पोती पगड़ी ई गीत के फरमाइश रात के जब सुनबा त खास तौर पर ई भाई अबू के फरमाइश रहेला जे वाकवा से हवन और भाई अबू हमेशा के तरह सब कोई के अपन प्यार अपन शुभकामना देवत हवन।

और भाई अब्बू के साथ साथ जितना कोई भी आज बकरीद मनावा था वजह आप सब कोई के बहुत बहुत शुभकामना। और भाई अबू ईगीत अबू अफेज असलम अयाज जयर जहीरा रईस काला चोटी और अपन जिगरी दोस्त आपी और उनकर बीवी के नाम करत हवन। और जितना कोई भी ई बखत आप बोलत हवा एमबीसी में काम करत हवा जा एमबीसी के पूरा टीम के नाम ई गीत

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ MBC टीवी प्रोग्राम्स की झलकियाँ।
2: हेवा देख, तेरे लिए मैंने खास बनवाया है और ये मेरे लिए, ताकि मैं तुझसे हमेशा जुड़ी रहूँ।
3: सेम,
2: एग्जैक्टली सेम।
3: किसी दिन इस खून का बदला लूंगी तुझसे।
2: मैं उसे अपने घर लेके जा रही हूँ। बदला क्या लेगी? बदले में जान मांग ले, दे दूंगी।
4: ले चले डोलियों।
1: रविवार 31 मई को MBC 3 पर दोपहर के 12 बजे हिंदी फीचर फिल्म फिलहाल। 2002 की ये मूवी तबू और सुष्मिता सेन पर फिल्माई गई फिलहाल। भोजपुरी तड़का किरण संगे

रात के 9:30 होलबा और विजय राव के आवाज में मां की सेवा इगीत सुने चाहत हवन बेलिया से आत्माराम जी। आत्माराम जी इगीत अपन चार गो बड़ा बहिन के नाम करत हवन।

जे माँ के सेवा करेला उ मुक्ति पावेला ब्रह्मा विष्णु भी यही बोलेलन इ गीत आत्माराम जी अपन चार गो बहिन के नाम करत हवन प्रभावती ललिता सुदेवी और साथ में छोटी भी हवन त आप सब बहिन लोग के जे लोग माँ समान हव जा आत्माराम जी की ओर से बहुत बहुत शुभकामना मातृ दिवस के अवसर पर

और माँ के समर्पित शुभकामना आज के रात रुके होला नहीं बा आज सब कोई माँ पर ही गाना मांगत हवा जा और माँ के बहुत शुभकामना प्रस्तुत करत हवा जा पहला तो हवन शीला जे अभी फ्रांस में हवन आप सब माँ लोग के शुभकामना प्रकट करत हवा और मातृ दिवस पर ही आप अपन बेटी के हियाँ विदेश से जात हवा वापस अपन देश और फिर मौदालबिया से मेरा भाई दर्मिया हवन आप पूरा पाइडिया और पूरा दर्मिया परिवार के नाम इगीत करत हवा साथ में अपन बेटी और अपन दामाद के नाम भी उधर हमने के ये बखत सुनत हवन कौचे मिरितिया से प्रोविडेंस कौचे मिरितिया से राजेश और पूरा बिहारी फैमिली तब पूरा बिहारी परिवार के नाम राजेश के ओर से जे प्रोविडेंस कौचे मिरितिया के हवन सब मालों के बहुत बहुत शुभकामना

आज बिफे 28 मई के जेकर भी घर में एगो नवा मेहमान के जन्म होलबा आप सब कोई के बहुत बहुत शुभकामना। ई ललना के गीत आप सब कोई के नाम और खाली आज ही नहीं जेकर घर में आजकल नवा मेहमान के स्वागत होता ललना चलता नहान होता आप सब कोई के बहुत बहुत शुभकामना। लक्ष्मण बिगाई लक्ष्मी के आवाज़ में इस सुंदर ललना आप सब कोई के नाम।

रात के 10 बजे में अभी लगभग 15 मिनट कमती बा और हमनी के साथ रही रात के 11 बजे तक. ये वक्त आप अपन मनपसंद प्रोग्राम सुना था हुआ भोजपुरी तर का जो उनकी रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस पर चला था. और ये प्रोग्राम में जैसे जाने ला आपके फरमाइश के बल पर हमने के प्लेलिस्ट फिर से हम सरियाईला. और अगला जो गीत चली एक बार फिर माँ बाप पर माँ बाप के मोल गीता गजाधर की आवाज़ में ये गीत सुने चाहता वन मौदालबिया से शीला जी और अपन पूरा परिवार के नाम आप ये गीत कर था हुआ बेटा विक्रम और विशाल बहू रेशमा और किनीता नाती हर्षी कुशाल नातिन तन्वी और पूरा परमेश्वर परिवार के नाम साथ में आप सब माँ लोग के एक बार फिर मातृ दिवस के बहुत बहुत शुभकामना.

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर आरएम 3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: Bhojpuri Tadka, Kiran Sanghi.

माँ बाप, अभी आप सुना था महेश विश्वजीत के आवाज़ में माँ पर गाना। और जैसे सब कोई अपन अपन माँ के और सब माँ के शुभकामना प्रकट कर रहा था वजह, तो हमने संगे एक और मैसेज पा अनीता जी हवन फ्लिक ऑफ फ्लैग से। आप भी अपन ओर से जितना भी टीम इबखत एमबीसी में काम कर रहा था और जितना कोई अभी ये कार्यक्रम सुना था वजह, आप सब कोई के मातृ दिवस के बहुत बहुत शुभकामना प्रकट कर रहा था वन। और इनकर संगे संगे वाकुआ के सुदेवी जी भी हवन, आप भी हमने के एगो व्हाट्सएप मैसेज भेज ले हवा और बोला था कि ये अगला गीत आपके दीदी ललिता और उनकर पूरा परिवार के नाम, आत्माराम भैया मालेगा के पूरा रमरतन परिवार के नाम और जितना कोई भी ई बखत ये कार्यक्रम सुनत हवा जा, आप सब कोई के नाम ख़ास तौर पर मातृ दिवस के बहुत बहुत शुभकामना। देखते देखते रात के 10 बजे तक और अभी से रात के 11 बजे तक पूरा एक घंटा के सफ़र हमने संगे बा और आपके फ़ोन कॉल्स खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। तो चला ई माँ पर गीत के आनंद संगे उठाई जा।

Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station. जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ. भोजपुरी तड़का किरण संगे

इबखत रात के ठीक 10:01 होलबा और जितना कोई भी हमने के सुनत हवा आप सब कोई के ये जो रात्रि बा अच्छा से गुजरी ऐसा शुभकामना के साथ कार्यक्रम के आगे बढ़ावा थे जा आप सुनत हवा रेजू मनोरंजन और रेजू मॉरिशस पर भोजपुरी तड़का। और इबखत अगर आप रास्ता पर हवा सफर पर निकलल हवा तो आप खातिर एगो सलाह बा रतन हरि जी जोन देवत हवन आपके चाहिए अपन गाड़ी ठीक से परख के तभी घर से निकले के चाहिए अपन संगे लाइसेंस रखे के फिटनेस के ख्याल रखा गाड़ी के हर एगो जोन पार्ट बा उ ठीक से चलता ई बात के ख्याल रख के ही घर से निकला नहीं तो बीच सीमा में पुलिस जे आपके रोक दे तो बहुत परेशानी हो जाएगी।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: भोजपुरी तड़का किरण संगे MBC टीवी प्रोग्राम्स की झलकियाँ।
4: हेवा देख, तेरे लिए मैंने खास बनवाया है और ये मेरे लिए, ताकि मैं तुझसे हमेशा जुड़ी रहूं।
5: सेम,
4: एग्जैक्टली सेम।
5: किसी दिन इस खून का बदला लूंगी तुझसे।
4: मैं उसे अपने घर लेके जा रही हूँ। बदला क्या लेगी, बदले में जान मांग ले, दे दूंगी।
6: ले चले डोलियों।
0: रविवार 31 मई को MBC 3 पर दोपहर के 12 बजे हिंदी फीचर फिल्म फिलहाल 2002 की ये मूवी तबू और सुष्मिता सेन पर फिल्माई गई फिलहाल।

किशोर ठाकुर की आवाज में माँ पर ई गीत सुने चाह थावन बुआशेरी से कल्याणी जी। और कल्याणी जी, आप ई गीत अबर की मुनोवा गीत आराधा की सुन और मानती मनबोध के नाम करा था वह। साथ में अभी अभी आप अपन शादी के 50वां सालगिरह मनेला, तो कल्याणी जी आपके और आपके पति के आपके शादी के इस गोल्डन जुबिली 50 बरिस के बहुत बहुत शुभकामना। और ये गीत पितों के अमृता गणेश जी के नाम, उनकर पूरा परिवार गणेश परिवार के। और रोजिल से हमने की सुना था वन साजिद जे हमेशा सरोवर के नाम गीत करेलन, तो सरोवर जे विदेश से हमने के सुनेलन कनाडा में हवन, उनकरा ये माँ के गीत मातृ दिवस के अवसर पर। और साजिद जी, सब माँ लोग के मातृ दिवस के शुभकामना।

कोनो दिन दाल खाके कोनो दिन पानी पीके ये गीत निर्मला फौदर के आवाज़ में आप सब माँ के नाम जे लोग आधा पेट खाके अपन मन मार के अपन लड़का लोग के बड़ा कर ले हवा जा

राधा नाचेला कृष्णा बजावे बांसुरिया ई गीत के मांग करले हवन राधा नुवेल फ्रांस से और आप अपन नातिन के नाम ई गीत करत हवा वर्षा के जिनकर जन्मदिन बा और बहुत बहुत बधाई वर्षा के माता पिता और वर्षा के मामू वर्षा के नाना नानी और पूरा प्यारतो परिवार के ओर से और जितना भी आप लोग के सगे संबंधी हवन जा वर्षा के जन्मदिन के ढेरों शुभकामना प्रकट करत हवन और

0: तेरा दिमाग खराब हो गया?
1: परसों ही माँ को तू खुद यहाँ से ले गया था।
2: मामा नहीं है भैया, माँ सुबह 5 बजे घर से निकल गई थी।
1: माँ सुबह से गायब है और तुझे अब फोन करने की फुर्सत मिली है।
3: अजीब रिश्ता है उसका अपनी माँ से, अगर उन्हें कुछ हो गया ना कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा।
4: सोनिया, मेरे अंदर एक ऐसा जख्म है जिसे आज तक मैंने तुमसे छुपा के रखा। मेरी माँ की जिंदगी का एक ऐसा पहलू है जिसे मुझे खुद समझने में इतना वक्त।
5: शनिवार 30 मई को MBC 3 पर रात के 9 बजे हिंदी फीचर फिल्म जख्म 1998 की ये मूवी अजय देवगन और पूजा भट्ट पर फिल्माई गई। जख्म

दुनिया बाद चारों तरफ गोल और ये गोल दुनिया में भेटाए में कयो कोनो कसर नहीं छुटेला कभी भी कोई भी कहूं पर भी सकी भेटा जाए और खास तौर पर अभी जब मातृ दिवस आवता तो सब कोई अपन माँ से मिली ऊ चाहे कहीं भी रही चाहे कोनो भी माध्यम रही जैसे बोलल जाता दुनिया गोल बा आजकल चाहे आप आमने सामने मिलबे या नहीं इतना ले साधन हो गल बा कि आप कोनो भी बखत सकबा अपन सगे संबंधी से फ़ोन पर वीडियो कॉल पर बात करे तो आप सब कोई के ये जोन बड़ा दिन आवा था दिमास के दिन मातृ दिवस के दिन आप एक बहुत बहुत शुभकामना आप सब कोई के अपन परिवार के साथ अपनों के साथ अपन सगे संबंधी के साथ जे भी आपके माँ तुल्य बा माँ समान बा माँ के बराबर बा या जेकर पर भी आपके माँ के आस्था बा आप सब कोई के मातृ दिवस के बहुत बहुत शुभकामना और बोलल जरा माँ के कितने रूप रहेला अगर आप माँ बन के ऊ चाहे कोई के भी जीवन में

खुशहाली आना था वह, कोई के जीवन में सकब्जा बोले रोशनी आना था वह, उम्मीद आना था वह, तो आपके मातृ दिवस के बहुत बहुत शुभकामना। बोलल जरा माँ जन्म से नहीं कर्म से होवेला, तो जितना कोई कर्म से माँ होवा जा आपके सच्चत नमन। मातृ दिवस के शुभकामना के साथ और ई रात्रि के शुभकामना के साथ हम आपसे आज्ञा चाहब रात के 10:47 होल बा, काल हमनी फजर के मिलब जा हमारी धरोहर में, और नहीं तो हमनी के मुलाकात फिर से होई, भेंट फिर से होई लेंदी के भोजपुरी तड़का में। कार्यक्रम के सुनते रहिए, धन्यवाद, नमस्ते।

0: संगे। जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: RM3 रेडियो।

सुनहरे पल सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ हम फिर से आ गए हैं आप लोगों का साथ देने के लिए ऑन रेडियो मॉरिशस इन योर सुनहरे पल। गुड इवनिंग जी, नमस्कार और गिनिशा का प्रणाम। रात की इस हसीन पल में दिल को दीजिए म्यूजिक का सुकून। सुनहरे पल लेकर आए हैं पुराने बॉलीवुड के अमर गीत सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर आप लोगों के लिए। तो बस आप आराम से बैठ जाइए, इन पुराने गीतों के साथ यादों में खो जाने के लिए तैयार हो जाइए मेरे दोस्त।

देखा जाए तो कुछ गाने कभी पुराने नहीं होते हैं, वो सिर्फ और ज्यादा दिल के करीब हो जाते हैं। बिजी दिन के बाद अब वक्त है थोड़ा रिलैक्स करने का। ओल्ड बॉलीवुड गाने के साथ बिताइए एक सुकून भरी रात सिर्फ सुनहरे पर में। रेडियो मॉरिशस पर लेकर आए हैं बहुत ही प्यारे प्यारे गाने हमारे सारे म्यूजिक लवर्स के नाम।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: रात और पुराने गीत, व्हाट अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। सुनहरे पल में आज फिर सजेगी यादों और सुरों की महफिल। दिल को छू लेने वाले गीत, यादों से भरी रात और म्यूजिक का सुकून, यही है आपका सुनहरे पल का असली एहसास।
2: सुनो और गौर से सुनो। अरे पहले तालियां तो बजाओ। गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात।

हर गीत एक कहानी, हर सुर एक याद, आइए खो जाते हैं पुराने बॉलीवुड के सुनहरे दौर में। बिल्कुल दोस्तों, दिन भर की भागदौड़ के बाद अब वक्त है खुद को थोड़ा सा सुकून देने का। एंड टू ऑल दोस्ट हू आर ड्राइविंग राइट नाउ, हम तो बस इतना कहेंगे कि अरे मेरी जान, जरा गाड़ी आराम से चलाना और रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, क्योंकि गिनीशा लेकर आए हैं आप लोगों के लिए सुनहरे पल में अगला नगमा खासकर।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सुनहरे पल लेकर आए हैं बॉलीवुड के पुराने वो नगमे जो सिर्फ कानों में नहीं सीधा दिल में उतर जाते हैं। तो लाइट से थोड़ी सी डिम कर लीजिए, चाय या कॉफी का कप साथ लीजिए और एंजॉय कीजिए एक यादों भरी म्यूजिकल रात सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर। तो चलिए, अगर आप पूरा दिन थके हुए हो काम कर करके, फिलहाल के लिए हम आपके दिल को राहत देने आए हैं ऑन रेडियो मॉरिशस।

तो चलिए जी, फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर गिनिशा टू से गुडबाय टू यू। हम फिर आएंगे एक और खूबसूरत शो में जिसका नाम है सुनहरे पल। इन पलों को हम और भी खूबसूरत बनाएंगे और खोज करेंगे और लेकर आएंगे

हिंदुस्तान की फरमाइश बिल्लू मुन्नी और शम्स की रामपुर मेरठ और इटावा से, संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर इरशाद कामिल के। पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना, कैसा ये इश्क है

आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो

0: वाले दिल तुमने तो सर झुका लिया
1: NBC रेडियो हर पल आपके साथ।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।